आई है और हमारे लिए एक ऐसा संदेशा लाई है कि सूरज ने अंगड़ाई ली है और कुदरत में ऐसा रंग घुल गया है कि उस रंग में हमें भी रंगने का संदेश देती है भोर सुहानी, तो हम क्यों ना उसके रंग में रंगे। लबों पर हमें हंसी लेकर, आंखों में नए ख्वाब सजाकर, इस भोर सुहानी का खुलकर मुस्कुराकर स्वागत करना है और धन्यवाद देना है कि आज उम्मीदों के साथ हमें कदम बढ़ाने को एक बार फिर से भोर सुहानी हमारे साथ आई है, कदम से कदम मिलाकर। तो क्यों ना इस भोर सुहानी को मिलकर सब गाते हुए दिन की शुरुआत करें।

भाई सूरज तो रोज उगता है, लेकिन भोर सुहानी सिर्फ उनके लिए होती है जो उठकर नई उम्मीदों के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं। जी हाँ, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब भी मन थोड़ा उदास हो, गहरी सांस लें और खुद से कहें, आप हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। फिर देखिए, ये प्रकृति और ये मौसम भी किस तरीके से आपके साथ साथ गाता है और झूमता है।

फूल, रंग, धूप और मुस्कान, हमेशा याद रखिए, आप स्वयं में ही एक उत्सव हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में आनंद और रस बना रहना चाहिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई 2026। सुबह के 5:53:33 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको आज के खास कार्यक्रमों की बारे में जानकारी दे दें। 6:10 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आएंगी शीतल। 6:44 पर श्री रामचरित मानस गान में आज आप सुनेंगे बालकांड और बालकांड का भाग सुनेंगे 112। 6:55 पर समाचार होंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में। 7:10 पर कार्यक्रम होगा गोल्ड सुप्रभात, जिसमें आपके साथ होंगी फिर से एक बार शीतल। 8:45 पर आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल्ली के कार्यक्रम। 9:00 से हिंदी में और अंग्रेजी में आप सुन पाएंगे समाचार।

9:10 से म्यूजिकल दिल्लगी लेकर आपके लिए आएंगे विजय सिंह। 9:30 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम वतन का राग, जिसमें आपके साथ होंगे विजय सिंह।

कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में आपको फिर से बता दें, याद दिला दें आपको आज के कुछ खास कार्यक्रमों की। 6:10 पर आपके लिए भक्ति संगीत कार्यक्रम होगा अर्पण, जिसे लेकर आएंगे शीतल। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान और उसमें आप सुनेंगे बालकांड और बालकांड का भाग 112। 6:55 पर समाचार होंगे, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात, जिसमें आपके साथ फिर से होंगी शीतल। 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली कार्यक्रम होगा। 9:00 से सिंधी में और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। 9:10 से म्यूजिकल दिल्ली लेकर आपके लिए आएंगे विजय सिंह। 6:00 अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर

मन की तरंग प्रभु के संग। जब सुबह की पहली किरण हमारे आंगन को छूती है तो दिल से बस एक ही दुआ निकलती है, दाता तेरा शुक्राना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी प्यारे श्रोताओं का आपके सबसे खास और रूहानी ठिकाने पर, जहां सुर मिलते हैं सीधे ईश्वर से। मैं शीतल हूं आपके साथ। 6:12 और 24 सेकंड हुए हैं। आज की इस खूबसूरत सुबह में हम और आप मिलकर अपनी व्यस्त जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं। चलिए अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं और उसमें भर लेते हैं प्रभु की असीम कृपा, सकारात्मकता और अपार शांति। चाहे हम अपने काम पर निकल रहे हों, रसोई में सुबह की चाय बना रहे हों या बस बैठे हों यूं ही फुर्सत में इस मौसम का आनंद लेने के लिए, अगले कुछ क्षणों तक हम डूब जाएंगे मन को सुकून देने वाले इस खूबसूरत से माहौल में। आपका स्वागत करने के लिए और इस पूरे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए FM गोल्ड, जो कि 100.1 MHz पर आपके साथ जुड़ा होता है, ये वो तार है जो आपको और हमें जोड़ता है।

जीवन में आने वाला पतझड़ हमारे लिए एक नई उम्मीद, एक नई किरण जो है लेकर आता है। और वो नई किरण ऐसी है कि जब तक जीवन में पतझड़ आने के बाद पुराने पत्ते ना टूटें, तब तक नए पत्ते भला कैसे आएंगे। ये जीवन अनमोल है, हर एक क्षण, हर एक पल अनेक चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन हमें इंतज़ार करना है इस जीवन में खुश रहने का। हर प्रयास इस तरफ होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और का दिल ना दुखे और हम भी खुश रहें। अगर पतझड़ नहीं आया तो नए पत्ते नहीं आएंगे। ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्ष के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो ऐसे में प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अपने हर वक्त को शांति से उनके ध्यान में बिताना चाहिए।

6:26 और 55 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। यह है अर्पण और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं शीतल। जीवन में हम अक्सर अपनी खुशियों की तलाश बाहर करते हैं, जबकि जो असली खुशी है, जो हमारी खुशियों का आधार है, वो हमारे भीतर बसा हुआ है। हमें बहुत कुछ नहीं करना, हमें बस अपने बाहर जाते ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ना है। जो स्थायी और परम शांति हमारे अंदर है, जब हम उससे मुलाकात करते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना, अपना सर्वस्व उनके हाथों में सौंप देना कि जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे रखिए, मुझे ऐसा रहना सिखा दीजिए जैसा आप चाहते हैं कि मैं रहूं।

हमारा जीवन हमारे अपने अनुभवों पर आधारित होता है, लेकिन बहुत बार हम अपने जीवन में दूसरों की दी हुई सलाह और उनके मन में हमारे प्रति बने विचारों को लेकर भी हम अपने इस जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा समुद्र में जाता है और लहरों के साथ खेलता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन इसी बीच उसकी एक चप्पल समुद्र में बह जाती है। वो बाहर आता है और समुद्र के तट पर रेत पर लिखता है कि समुद्र चोर है, उसने मेरी चप्पल चुरा ली है। वहीं एक और व्यक्ति बैठा समुद्र के किनारे रो रहा होता है। वो कहता है कि मैं और मेरा भाई समुद्र में नहाने के लिए आए थे और इस समुद्र ने मेरे भाई को डुबो दिया। वो समुद्र के तट पर लिखता है कि ये समुद्र एक हत्यारा है। इसके बाद मछुआरे जो समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो आए और उन्होंने देखा कि आज उनके पास बहुत सी मछलियां हैं। उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया कि समुद्र की वजह से आज उसे इतनी सारी मछलियां मिली जिससे आज उसके परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छा होने वाला है। और वो उस तट पर लिख देता है कि समुद्र का हृदय बहुत बड़ा है और मैं इसके प्रति आभारी हूँ। एक और व्यक्ति आता है जो चाहता है कि समुद्र से उसे अनमोल मोती मिल जाएं। वो ढूंढता है, खोजता है और उसे बहुत से अनमोल मोती मिलते हैं। उसके बाद वो बाहर आता है और खुशी खुशी समुद्र के तट पर अपने भाव लिखता है कि समुद्र जैसा खूबसूरत विशाल हृदय कोई भी नहीं है। ये सारी चीजें समुद्र के तट पर लिखी हुई हैं और समुद्र की लहर आती है और उन सारी बातों को समान तरीके से मिटाकर चली जाती है। पर क्योंकि हम समुद्र नहीं बन पाते, हम साधारण मानव हैं,

तो हम क्या करते हैं, हम उन रेत पर लिखी हुई लाइनों के आधार पर खुद को जज करने लग जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमसे पाएंगे वो हमारे बारे में सोचेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो हैं जो सामने वाला सोच रहा है। हम क्या हैं ये तो हमें खुद से पता लगाना होगा, खुद को जानने के लिए अपने भीतर जाना होगा, और ऐसे में जो भी संसार के विचार हमारे बारे में हैं हमें उन्हें धोकर, बिल्कुल उन पर पानी फेर कर अपने जीवन को अपनी तरह से जीना होगा। जब हम ऐसा कर पाएंगे तब हम इस जीवन को सफल भी कर पाएंगे, और जिस उद्देश्य के लिए हमें ये जीवन मिला है उस उद्देश्य की प्राप्ति भी हम सभी को हो पाएगी।

बीता हुआ कल एक गुजरी हुई कहानी है, आने वाला कल एक रहस्य है, लेकिन आज का दिन ईश्वर का दिया हुआ है और एक सुंदर उपहार है। न जाने हम इसे उपहार मानते भी हैं या नहीं, लेकिन जीवन एक बहुत ही खूबसूरत उपहार है। इसे पछतावे में नहीं, हमें प्रेम में बिताना है। जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हे को, जिसे हम कहते हैं वर्तमान, यही वो है जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं या किसी की खुशियों का कारण बन सकते हैं। जीवन इसी तरह से चलता है, हमें इसे स्वीकार करते हुए मुस्कुरा के जीना है। छह बजकर 44 मिनट और 12 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और ये वक्त है अब रामचरितमानस से पाठ का, आइए सुनते हैं।

अयोध्या से आई बारात की चहल पहल जनकपुर में चहों ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु, अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि, नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। ठीक 6:55 पर आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत, आपसे होगी मुलाकात 7:10 पर गोल्ड सुप्रभात में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000-2,000 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति।

0: प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः चतुःपञ्चाशत्सहस्र युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्द क्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयंत्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक संजालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य दशदिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य विंशतिदिनांकाद् अगस्तमासस्य त्रयोदशदिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य विंशतिदिनांकात् संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया। और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी, चलो इस ज़िंदगी को यूं ही खूबसूरती से जीने देते हैं। चलो बिखरने देते हैं आज उन पुराने यादों की धूल को, हवाओं को रास्ता देते हैं दिल को छूने के हर फूल को। जो खो गया वो एक पन्ना था, पूरी किताब अभी बाकी है। नई शुरुआत के लिए बस चेहरे की एक छोटी सी मुस्कान ही काफ़ी है। 7:11 और 23 सेकंड हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। यह है गोल्ड सुप्रभात, जिसमें आज मैं शीतल करती हूँ आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल ये प्यारी सी सुबह। जी हाँ, जो न कभी आई थी न कभी आएगी, आज की वो सुबह जो बहुत ख़ास है। पता नहीं आज आपकी लॉटरी लगने वाली है या नहीं, लेकिन आपको मालूम है या नहीं कि लॉटरी तो लग गई। जैसे ही आपने आंखें खोली और आपको पता चला कि सवेरा हो गया, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये कि आज का दिन फिर हमें रंग भरने के लिए मिल गया। तो चलिए रंग भरते हैं इसमें, प्यार के, खूबसूरती के, मोहब्बत के एहसासातों से इसको सजाते हैं, दया के, करुणा के। और दिन की शुरुआत में अगर आप चाहते हैं कि प्यार भरी मुस्कुराहट सबके चेहरों पर बनी रहे, तो कोशिश कीजिए एक दो लोगों से मिलाइए।

जी हाँ, अगर आप किसी की तरफ ऐसे ही खींचे चले जा रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी में वो तलाश पूरी हो गई है जहाँ आप जाकर रो सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं, बेखौफ हंस सकते हैं, कुछ भी बात जिनके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें ख्याल करना होगा कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि आज का दिन बाहर जाया जाए, थोड़ा सा घूमा जाए, तो मौसम की नज़र थोड़ी सी तिरछी है आपकी तरफ, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज का जो अधिकतम तापमान है वो 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है। साथ ही न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। और दिल्ली के मौसम की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई हिस्सों में थोड़ी बारिश होने के भी आसार हैं, और हो सकता है कि थोड़ी सी गरज बरस के साथ थोड़ी थोड़ी बौछारें आएँ, आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन घर के बाहर अगर जा रहे हैं तो छाता और रेन कोट लेके जाना ना भूलिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आपको ये रखना है याद कि अपने दिन को बहुत खूबसूरती के साथ बिताना है।

स्वस्थ तन शांत मन, यही तो है ज़िंदगी का असली धन। और हम मुड़ते हैं जीवन में अपने स्वास्थ्य की तरफ तब जब हम कुछ खो चुके होते हैं, तो खोने से पहले ही उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो ये अपने आप में ख़ास बात होगी। 7:20 और 13 सेकेंड हुए हैं। हम यूं तो अपने जीवन को जिए जा रहे हैं और कई बार ऐसा लगता है कि इतने सारे लम्हे निकल गए, पता नहीं उनमें क्या हुआ, पता नहीं हमने उनमें क्या किया। तो फिर ध्यान रखना है हमें कि जीवन का एक भी लम्हा अगर निकल रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने ये लम्हा किस चीज़ पर लगाया, किस काम में बिताया। और ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें, एक्सरसाइजेस करें। और ऐसे में हम आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं और बहुत सी महिलाएं हैं जिनका हाथ का, गर्दन का बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहने का काम होता है, जिसकी वजह से गर्दन में और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। इसे कहा जाता है स्कंध चक्र। और इस योगा को, इस आसन को करने से तनाव से भी मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ एकदम से जो स्टिफनेस है, जो अकड़ापन है हमारे शरीर में, उसमें भी राहत मिलती है। तो जो लोग इस वक्त कुर्सी पर या सोफे पर बैठे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल एक जादुई स्ट्रेच होने वाला है। तो सबसे पहले करना क्या है, अपनी रीढ़ की हड्डी को यानी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखना है, यानी अपने हाथों को लीजिए और अपने कंधों पर रख लीजिए। अपनी कोहनियों को आगे की तरफ छूते हुए गोल घुमाइए। एक बार क्लॉकवाइज हम इसको करेंगे, सांस लेते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से घुमाते हुए नीचे लाएं। इसे 3 बार आप क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप पहले क्लॉकवाइज

करना चाहते हैं या बाद में एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। अगर हम कंप्यूटर पर काम करने वाले हैं या फिर रसोई में लगातार खड़े होकर काम करने वाले हैं, तो जो हमारा कंधों और गर्दन का दर्द है ना, हर रोज नियमित रूप से 1 मिनट के अभ्यास से ये दर्द छूमंतर होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम सिर्फ आपको रेडियो पर बता रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप कैसे कर रहे हैं। तो जब भी आप योग का अभ्यास करें तो ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास कोई ना कोई विशेषज्ञ होना जरूरी है।

कितनी खूबसूरत बात है ना। और इसी ही खूबसूरत बात के साथ मुझे याद आया संडे यानी फुर्सत का दिन। जी हाँ, आज के दिन हम बहुत से काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब हम सबके लिए कुछ कुछ कुछ कुछ कर रहे होते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपने लिए भी कुछ किया जाए। ज़्यादा नहीं, खामोशी के साथ अपने साथ बैठ कर चाय पी जाए, आसमान को देखते हुए और खुद के बारे में सोचते हुए कि आज मैं यहाँ हूँ तो क्या क्या मैंने किया, कैसे किया, क्या मैं वो सब कर पाई जो मैं करना चाहती थी, या फिर आप अपने किसी पसंदीदा शौक को आज पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई भी हॉबी हो, हफ्ते भर की व्यस्तता की वजह से आप वो ना कर पाए हों, जैसे डायरी लिखना, पुरानी कविताएं पढ़ना, अपने पसंद का म्यूज़िक सुनना, अपने पौधों की देखभाल करना, तो ऐसे में ज़रूरी है कि मी टाइम यानी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए।

0: जब चाहे फिसल जाए बल्ला, ऐसे तो हमें देखा न करो।
1: भाई इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, देखने तो देना चाहिए। और ऐसे में जरूरी है कि आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि और क्या क्या जरूरी काम है, क्योंकि 7:29 और 25 सेकंड हो चले हैं। गोल्ड सुप्रभात को यहीं पर विराम देने का वक्त है। आप सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे, और गोल्ड सुप्रभात से मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।

0: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। और आज के अंक में हम आपको देंगे हमेशा की तरह देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे आज, और जानी मानी शख्सियतों को हम याद करेंगे। मौसम का भी हाल जानेंगे आज, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार प्रमोद।
1: नमस्कार फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 megahertz and the entire Akashwani network. We bring to you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we give in the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 5th of July.
0: जी, और आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्रमोद
1: जी
0: उड़ान योजना की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिससे भारत के नागरिक उड्डयन अवसंरचना और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।

0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना की शुरुआत भारत की क्षेत्रीय संपर्क के अगले अध्याय की शुरुआत होगी। श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती प्रदान करेगी और उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना सच होगा।
1: That's right. The government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1,875 rupees per quintal to 2,125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts.
0: वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest.
0: वहीं 35 ट्रैक्टर और 6 यूटिलिटी गाड़ियां एग्री एक्सपो में सौंपी गई हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नागालैंड की लगभग 70% आबादी खेती से जुड़ी हुई है, जिससे कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। उन्होंने कहा कि राज्य को उपजाऊ जमीन का वरदान मिला है। उन्होंने किसानों को आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए अपने खेतों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो बहुत ही एक अच्छी पहल है किसानों के लिए।
1: जी फरहत, एब्सोल्युटली। एंड एक और अच्छी खबर है गोवा से, जो किचन वेस्ट है उसको न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बनाया जा रहा है जस्ट इन 2 डेज। या सो इमेजिन इफ यस्टरडेज किचन वेस्ट कुड बिकम न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट इन जस्ट 2 डेज। गोवा इज नाउ एम्ब्रेसिंग एग्जैक्टली दैट आइडिया विद अ न्यू रैपिड कंपोस्टिंग इनिशिएटिव दैट प्रॉमिसेस क्लीनर विलेजेस, ग्रीनर टाउन्स एंड अ हेल्दियर एनवायरनमेंट।
2: Goa is set to transform the way biodegradable waste is managed. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has announced that Nisargarun rapid composting units will be introduced in phases across all municipalities and village panchayats. The initiative follows the successful installation of a composting unit at a material recovery facility in Bicholi. Using a specially developed microbial culture, segregated wet waste is converted into odor-free organic compost within just 24 to 48 hours. The technology reduces transportation costs, fuel consumption, methane emissions, and pollution by processing waste closer to where it is generated. The compost produced can be used in farming, horticulture, and home gardens, while recyclable dry waste remains clean and more valuable. Training programs like demonstrations and public awareness campaigns will support the initiative, paving the way for a cleaner, greener, and more sustainable Goa. For Aaj Savere, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
0: अब बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा।
1: In the FIFA World Cup, France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute after VAR awarded France a spot kick. फ्रांस विल नाउ फेस मोरक्को इन द क्वार्टर फाइनल्स। फरहत, आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है?
0: जी थोड़ा बहुत।
1: आपके हस्बैंड को होगा शायद?
0: जी जी बिल्कुल, वो दिन रात जो है फीफा ही लगा रह रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं महिला T20 विश्व कप की। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर

0: फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
1: फरद, वी हैव अ मस्ट अनाउंसमेंट। एज पार्ट ऑफ आवर सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, वी ब्रिंग यू अ कॉन्वर्सेशन विद देवेंद्र सुरा, हु हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स ट्री प्लांटेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। तो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today morning at 10:30 AM. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
0: और प्रमोद, आपको बता दें कि पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, जिससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में भी बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य और मध्य अटलांटिक तट पर लू की चेतावनी जारी की गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया कि उच्च आर्द्रता के स्तर से बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और विभाग ने आगे भी इसकी चेतावनी जारी रखी है।
1: जी, बहुत डरावनी बात है ये, जब इतने टेम्परेचर्स इतने बढ़ते हैं।
0: यहाँ पर जब तापमान 42 डिग्री हो जाता है तब हम लोगों की हालत जो है बहुत खस्ता हो जाती है। तो ऐसे में वहां पर क्या हाल हो रहा होगा लोगों का, वो सोचने वाली बात है। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का। तो प्रमोद, चेन्नई में सबसे पहले क्या है खास?
1: जी, मेरे पास दो खबरें हैं चेन्नई से। अ टू डे इंडियन इंट्रालोक्यूटर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी कन्वेंशन 2026 बिगैन इन चेन्नई यस्टरडे। मोर देन 2,000 आई डॉक्टर्स, सर्जन्स, रिसर्चर्स एंड विजन एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर टेकिंग पार्ट। Organized by IIRSI, the event has over 250 speakers, 500 scientific sessions and 9 wet lab training programs. It focuses on the latest advances in cataract, refractive surgery, cornea, retina and myopia, along with live surgical demonstrations. Governor Arlekar said, India has become a global center for medical innovation, with Tamil Nadu playing a key role in healthcare and medical education. Moving on to the second story, Farhad, Chennai Mathematical Institute has signed an MOU with Think Math Foundation to offer certificate courses for school mathematics teachers. The initiative aims to help teachers use innovative teaching methods and improve students' math skills. CMI Director Madhavan Mukund said the institute also plans to develop a resource center at its new Siruseri campus to train more teachers in modern teaching practices. Farhad, this was the news from Chennai. What do you have for us from Delhi, Mumbai and Kolkata?
0: जी, सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली से कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, समय SIR का काम बहुत तेजी से चल रहा है। BLO आपके घर पर आ रहे हैं और फॉर्म दे रहे हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि अगर फॉर्म आपके पास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलतियां हो रही हैं फॉर्म में, और दो फॉर्म आपको दिए गए हैं, एक BLO को आपको वापस लौटाना होगा और एक फॉर्म जो होगा वो आपके पास होगा, तो उसकी फोटोकॉपी करवा के जरूर रख लें, क्योंकि उसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम है तो उसमें अलग इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और अगर नहीं है तो आपको पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इसीलिए फोटोकॉपी करवा के पहले आप वो भर लीजिए, क्योंकि
1: अच्छा,
0: उसके बाद जी बिल्कुल, क्योंकि ये गलती मैं कर चुकी हूँ इसी वजह से मैं सजेशन दिया। तो इसमें जो है 1,45,00,000 मतदाताओं में से 32% से ज्यादा लोगों को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भरे गए प्रपत्रों में से सिर्फ 1% से ज्यादा को ही डिजिटाइज किया गया है। तो ये सब BLO के साथ हम यही कहना चाहेंगे, कोऑपरेट कीजिए और पूरी पूरी सही इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए। और पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य होने के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय के अनुसार अब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग समय को बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं दिल्ली नगर निगम के लिए समय पहले ही जैसा है, जो सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।
1: फरहत, मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, एंड वहाँ पे थोड़ा सा एक न्यूज़ है जो थोड़ा सा शॉकिंग है। चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बहुत बाढ़ है, बट कर्नाटका गवर्नमेंट इज डूइंग सम गुड स्टफ।

0: जी
1: उसके बारे में एक न्यूज है. कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर हैज डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स टू स्पीड अप ड्राउट रिलीफ मेजर्स इन चित्रदुर्ग. ही सेड द स्टेट हैज अ रिलीफ फंड ऑफ 32,000 करोड़ रुपीज एंड स्ट्रेस्ड द नीड टू प्रोवाइड फॉडर सीड किट्स drinking water and quick electricity connections to new bore wells. He also instructed officials not to supply drinking water to sugar factories during the drought, expressing concern over the lack of water for preparing midday meals in Hiriyur. He asked officials to hold weekly review meetings and ensure timely implementation of relief measures. Kitne dukh ki baat hai ki bachon ke midday meals ke liye tak bhi pani nahi hai wahan pe. लोगों ने बहुत ज्यादा पानी वेस्ट किया है.
0: बिल्कुल, ये तो हम हमेशा अपील करते हैं लोगों से कि पानी, एक एक बूंद जो है पानी की, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए बचाइए ताकि ऐसे समय में वो काम आ सके.
1: हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पानी है उनको उस चीज की अहमियत नहीं पता नहीं. हाँ, एग्जैक्टली.
0: और अब आइए मुंबई का रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य के सहकारी बैंकों ने कई कॉरपोरेट बैंकों से बेहतर प्रदर्शन किया है. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कल मुंबई में आयोजित सहकार गौरव पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य में 2,00,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं जो इसे देश का सबसे बड़ा सहकारी नेटवर्क बनाती हैं. वहीं महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भड़ाने ने किसानों से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि ये योजना प्राकृतिक आपदाओं, सूखे, बेमौसम बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.
1: Union Minister for Coal and Mines G. Kishan Reddy has asked Singareni Collieries Company Limited, SCCL, to prepare a 10 to 15 year plan to meet South India's growing energy demands. During a review meeting at Singareni Bhavan yesterday, he urged the company to participate in commercial coal block auctions, improve efficiency, reduce production costs and explore coal gasification projects, starting with one in Ramagundam to support fertilizer industries.
0: और प्रमोद, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की गई है. कोलकाता की हम बात कर रहे हैं. बीएसएनएल ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक भारत नेट परियोजना शुरू की है. मुख्य महाप्रबंधक गजाला फैसल ने बताया कि इस परियोजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से किफायती हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी. राज्य में लक्षित 3,340 ग्राम पंचायतों में 2,600 से अधिक में काम पूरा हो चुका है. तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल,
1: बहुत अच्छी पहल है.
0: तो श्रोताओं, महानगरों की खबरों की बात तो हमने कर ली, अब आइए मौसम का रुख कर लेते हैं. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. तो बारिश तो हो रही है लेकिन खुलकर बारिश नहीं हो रही है. तो आज लेकिन बारिश फिर से जो है महसूस की जाएगी, यानी मौसम विभाग ने आंधी के साथ बारिश का अनुमान लगाया है. न्यूनतम तापमान में जो है गिरावट आ सकती है, 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की भावना है. न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कोलकाता में भी हल्की बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो प्रमोद, ये तो थे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल.
1: जी, मैं आपको ले जाऊंगा चेन्नई.
0: जी,
1: Chennai is likely to witness a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 28 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius. फरत, ये मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि हर जगह गर्मी बढ़ रही है.
0: बहुत
1: अभी मैं केरला में था एंड वहाँ पे जो बारिश होनी चाहिए नॉर्मली वो नहीं हो रही है,
0: नहीं हो रही
1: बहुत
0: है.
1: कम हो रही है.
0: अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है. लोग कहते थे कि जहाँ पे हरियाली होती है तो वहाँ पे बारिश का जो दौर है वो ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार मेरा भी जो है बिहार की तरफ जाना हुआ तो वहाँ भी बारिश एकदम नहीं थी, एकदम गर्मी से बुरा हाल था.
1: Bengaluru's forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees Celsius, while the maximum may reach 32 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 23 degrees Celsius to 29 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 5 जुलाई 2026, तो 1687 में क्या हुआ था आज के दिन?
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। आइजैक न्यूटन

0: groundbreaking scientific treatise, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, commonly known as the Principia, was published by the Royal Society in England, fundamentally altering human understanding of physics and mathematics. मुझे mathematics में बहुत interest है.
1: अच्छा. तो ये मेरे बहुत maths के paper जब होता तब पेट में दर्द शुरू हो जाता था.
0: मेरे 99 out of 100 आए थे maths में.
1: जी. और अब आगे बढ़ते हैं 1954 की बात कर लेते हैं. बीबीसी ने टेलीविजन इतिहास में पहली बार अपने दैनिक टीवी समाचार बुलेटिन का सीधा प्रसारण शुरू किया था.
0: वाओ. 1954 में ही 1954 हाइलाइटिंग द डॉन ऑफ मॉडर्न रॉक एंड रोल म्यूजिक हिस्ट्री एल्विस प्रेस्ली रिकॉर्डेड हिज लेजेंडरी फर्स्ट कमर्शियल हिट सिंगल दैट्स ऑल राइट एट सन रिकॉर्ड्स इन मेम्फिस टेनेसी. इट वॉज कॉल्ड दैट्स ऑल राइट.
1: 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने संविधान के 26वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया, जिसके तहत मतदान करने की कानूनी आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया.
0: On the 5th of July 1975, Arthur Ashe made global sports history by becoming the first black man to win the prestigious Wimbledon singles title, defeating Jimmy Connors.
1: 1994 में अमरीकी व्यवसायी जेफ बेजोस ने वाशिंगटन के बेलव्यू में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में अमेज़न की स्थापना की, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना.
0: जी.
1: और अब आइए इतिहास में तो हमने बात कर ली, कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं. तो आज जन्मदिन है भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का. इन्होंने बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता और इससे पहले 2016 में ब्राजील में खेले गए रियो ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक भी हासिल किया.
0: And starting with the birth anniversaries or birthdays, today is the birthday of a famous Malayalam film actor, Mamu Koya. He was an Indian actor known for his work predominantly in Malayalam films. He mostly appeared in comic roles. His unique usage of the Kozhikode dialect and style marked his presence in the industry. बहुत amazing बात है. ये मोहम्मद कोया करके हमारे actor है. And he was working in a timber factory. एंड उस टिम्बर फैक्ट्री में एक डायरेक्टर गए अपना कुछ वुडन वर्क करवाने के लिए. तो जिस तरह से वो मामू को या बात कर रहे थे उनसे इंप्रेस होकर उन्होंने उनको अपने एक फिल्म में ले लिया. एंड फ्रॉम देयर हिज करियर स्टार्टेड. एंड दैट फिल्म वॉज दूरे दूरे उरु कूडु कूटुम, रिटन बाय श्रीनिवासन. एंड इन दैट फिल्म ही प्लेड एन अरबिक टीचर टीचिंग पर्शियन. एंड इनिशियली द कैरेक्टर वॉज ओनली सपोज टू बी फॉर 2 to 3 सीन्स, बट ही डिड इट सो वेल दैट द डायरेक्टर पुट अ होल चंक of about 20 minutes of his acting in the film. And Mamu Koya, of course, later on went on to become a very famous actor. And he acted in many films like Gandhinagar Second Street and Nadodi Kattu and San Manasuruvalka Samadhanam, Rariram. And he got a state award. In fact, he got the first state award for the film Nadodi Kattu. And wahin se gana sun lete.
1: Ji.

0: और अब आइए याद कर लेते हैं प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक बीरेंद्रनाथ सरकार को। 30 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के बैनर तले बीएन सरकार ने प्रारंभ दो मुख्य फिल्मों का निर्माण किया। कला के क्षेत्र में बीएन सरकार के योगदान को देखते हुए उन्हें 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वो दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लिया। भारतीय सिनेमा के विकास में उनके जैसे महान व्यक्ति और मजबूत नींव डालने निर्माता का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: Today is also the birthday of Zayed Khan, who was born on the 5th of July 1980. He's an Indian former actor and producer who worked in Hindi films. He's the son of Bollywood actor Sanjay Khan. He's received a Filmfare Award nomination. After graduating in business management at the Montgomery College and Film Institute at the London Film Academy, he made his acting debut in 2003 in the film Churaliya Hai Tumne. His other films include Shabd, Das, Rocky the Rebel, Yuvraj, Raj, Blue and Anjana Anjani. But I'm sure Farhat, आपने 2004 में मैं हूँ ना देखा होगा।
0: हाँ, बिल्कुल देखी थी। उसके गाने famous भी थे, उसके गाने भी काफी लोकप्रिय रहे।
1: Exactly. तो उसी का एक गाना सुन लेते हैं।
0: जी।

0: भारतीय तैराक सचिन नाग के, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। नई दिल्ली में 1951 के पहले एशियाई खेलों में सचिन नाग ने जब तैराकी में 100 मीटर फ्रीस्टाइल का स्वर्ण पदक जीता तो खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके गले में स्वर्ण हार डाला था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एशियाई खेलों में किसी भारतीय तैराक को इसके बाद आज तक स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव हासिल नहीं हुआ।
1: जी, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजा लाला दीनदयाल, who was born in 1844 and died on the 5th of July 1905. He was famously known as Raja Deendayal. His career began in the mid-1870s as a commissioned photographer. Eventually, he set up studios in Indore, Mumbai and Hyderabad. He became the court photographer to the 6th Nizam of Hyderabad, Mehboob Ali Khan. Asif Jah the 6th, who awarded him the title Raja Bahadur Musawwar Jung Bahadur, and was appointed as the photographer to the Viceroy of India in 1885. The Lala Deendayal Studios collection of 2,857 glass plate negatives was brought by the Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi, in 1989. Farhat, मैं भी एक photographer हूँ, तो मेरे लिए बहुत interesting है राजा दीनदयाल के जो पुराने portraits हैं. 1800s ke, 1890s ke, they are so amazing. And this exhibition was held in Indira Gandhi National Center for Arts, and I had gone to see it. Main dekhne gaya tha. It's absolutely amazing. And 1875 mein aap socho us samay ke pictures. Today it is the largest repository of his work. A large collection of his work, including celebrated images of the 1870s famine, are with the Peabody Azox Museum in the US.
0: और आज जाने माने पार्श्व गायक जावेद अली का भी जन्मदिन है। युवाओं में इनका काफी क्रेज देखने को मिलता है। उनकी आवाज सूफी गानों के लिए हो या फिर रोमांटिक गाने या फिर क्लासिकल, सभी तरह के गानों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे भी उनके बहुत सारे गाने बहुत पसंद हैं। इसके अलावा जोधा अकबर का एक गाना था जश्न-ए-बहारा, ये मुझे काफी, जी बिल्कुल, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: और श्रोताओं, आज हिंदी के जाने माने रचनाकार असगर वजाहत का भी जन्मदिन है। इन्होंने नाटक, कथा, उपन्यास, यात्रा, वृतांत और अनुवाद के क्षेत्र में अनेक रचनाएं की। ये दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कई टेलीविजन फिल्म लेखन और निर्देशन भी किया, जिसमें वृत्तचित्रें भी शामिल थीं। और इनका एक नाटक काफी लोकप्रिय रहा, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं।
1: अच्छा, उन्होंने लिखा था वो?
0: जी, इन्होंने लिखा था और इस पर कई सारे जो है नाटक वो किए गए हैं।
1: मैंने इनका प्ले तो देखा है श्रीराम सेंटर में, बट आई डिडंट नो कि इन्होंने लिखा था।
0: जी जी, इन्होंने ही लिखा था। और इसके अलावा भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह का आज जो है उन्होंने अलविदा कहा था। शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार के निर्माता ये रहे। इन्होंने बिहार विभूति के रूप में जाना जाता है और स्वाधीनता आंदोलन के योद्धा भी थे। स्वाधीनता के बाद राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण के कार्यों में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। अनुग्रह बाबू ने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो था आज के कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों के बारे में जानकारी। तो इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आज के इस कार्यक्रम को आप किसी वजह से नहीं सुन पाए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को दोबारा सुन सकते हैं। www.newsonair.gov.in यह है हमारी वेबसाइट। तो जरूर से लॉग इन करें और जितने भी कार्यक्रम आकाशवाणी के हैं वो आप यहां पर सुन सकते हैं।
1: That's right. Stay tuned for coming up next, समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
5: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुख

0: से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान, और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: Udan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui hai. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Mr. Modi highlighted that the architecture and interior of the new terminal are trending on social media.
3: Jodhpur mein naye airport terminal ka udghatan kiya gaya hai aur main social media mein dekh raha tha ki naye terminal ka architecture interior ye social media mein chhaya hua hai. Charon taraf Rajasthani Rajasthan dikh raha hai. साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu also said that the launch of the Viksit Ulan scheme will mark the

0: Colombia has passed Ghana 1-0 to secure a place in the round of 16. They will now face Switzerland for a spot in the quarterfinals. With Vikas Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester yesterday. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
2: Thank you, Saira. Papers have widely noted Prime Minister Modi's visit to Gujarat and Rajasthan, where he inaugurated path-breaking developmental projects, while the new EV policy in the state capital has also gained traction. Hindustan Times writes, India overcame crisis on refining prowess. We'll keep building, says Prime Minister. The Hindu notes, Modi inaugurates semiconductor facility in Gujarat. The Sunday Express headlines, new EV policy empowers middle class. Delhi transforming has chosen a new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs, City Court cites Supreme Court order, denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Ira Majid. The two had fallen in love over Snapchat. A month after he crossed LOC for love, 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
4: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
3: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
4: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था,

0: ये नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
1: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनाद में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनाद में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निज़ाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
0: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
0: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजामे तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेशगी तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा ज़खीरा काफ़ी है और इस वक्त ज़खीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्कगीर सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपये फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि

0: जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे, उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है जो मजबूत इक्तसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और उमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। उमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्का दर्जे हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुआ को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 70वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
4: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी छह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दूरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सालो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे बने जहां हम कम बोलें, हमारे हुनर उनकी आवाज ज्यादा लोग सुने। 8:46 और 20 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरू हो चुकी है म्यूजिकल दिल्ली। उड़ान ऐसी हो कि आसमान भी छोटा पड़ जाए, कदम ऐसे हो कि जमीन पर निशान छोड़ जाएं। जीने को तो हर कोई जी लेता है यहाँ पर, जिंदगी ऐसी जिए कि औरों के लिए मिसाल बन जाएं। और मिसाल बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को पुरसकून होकर जिएं, पूरी तरह से जिएं। पर क्या हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हम ये पहचान पाते हैं? और ऐसे में हमें ज़रूरत है कि इस ज़िंदगी में जितने तोहफे हमें मिल रहे हैं, जो ख़ास चीज़ें हमें मिल रही हैं, उन सबको हमें एक्सेप्ट करते हुए चलना है। और इससे खूबसूरत सी ज़िंदगी में किसी का साथ लेना है, किसी का साथ निभाना है। मैं शीतल करती हूँ आप सभी का स्वागत म्यूज़िकल दिल्लगी में, क्योंकि इस प्यारी सी सुबह में इससे ज़्यादा खूबसूरत जो गीत मैंने अभी ढूंढा है हो नहीं सकता। और धर्मपुत्र फिल्म का ये गीत है, थोड़ा सा अलग है, दिल के नज़दीक है। सुनिए और बताइए कि कैसा लगा।

0: मचल गए।
1: जी हाँ, हो सकता है कभी कभी सामने वाला आपको बहुत बार मनाता है, इतना नाराज हो जाए कि फिर वो आपसे बात ही ना करे, आपको मनाने ही ना आए। तो आप अपने थोड़े से एक्शंस पर ध्यान दीजिए, और इन एक्शंस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो आजकल हो चुकी है हर रिश्ते के बीच में, जो आ चुका है वो है हमारा फ़ोन। हमारा फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, टीवी भी है, क्योंकि टीवी में भी आज हमें सब कुछ मिल रहा है। तो क्यों ना आज संडे के दिन एक ख़ास चीज़ की जाए, आज अपनों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई जाएं और फ़ोन से थोड़ी सी दूरी की जाए। हफ्ते भर हम स्क्रीन का, मैसेजेस का और कॉल्स का काम करते रहते हैं, उनसे घिरे रहते हैं। तो आज के दिन हम दोपहर से लेकर शाम तक, या फिर जिस वक्त हमें पता है कि भाई इस वक्त हमें फ़ोन का काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, तो हम अपने फ़ोन को साइलेंट करके दूर रखते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय सामने बैठे लोगों से बात करें, यह दिमाग को देखिए गज़ब का सुकून देने वाला है। तो आज हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, आज हम पुरानी यादों में चलते हैं,

सबसे खराब लगता है कि अगर कोई हमारा इंतजार कर रहा है और हम इस बात की परवाह किए बगैर अपने काम किए जा रहे हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं, तो जरूरत है कि हम ये देखें कि अगर कोई हमारा इंतजार कर रहा है तो हमें उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जब हम गोल्ड सुप्रभात में मौसम की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि भाई आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके का रहने वाला है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, घर के बाहर निकल के काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। तो क्या हम ऐसे लोगों की छोटी छोटी मदद करके उनके लिए इन परिस्थितियों को आसान बना सकते हैं? जी हाँ, हम आसान बना सकते हैं। किसी का एक छोटा सा काम, एक छोटी सी चीज़ किसी के लिए बहुत बड़ा जो है वो सहायता के रूप में साबित हो सकती है। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम देखें कि अगर हमारे आसपास कोई फल बेच रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, और अगर हम उनको पानी पिला सकते हैं या फिर उनकी किसी तरह से मदद करते हैं कर सकते हैं, किसी को हम छाता दे सकते हैं, अगर कोई गुस्से में है तो उसकी बात सुन सकते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें पैसा नहीं लगता पर हम फिर भी उन लोगों को अपना प्यार, अपनी दया दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ ज़रूरी है कि हम अपनी सोसाइटी, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो है भूमिका को अच्छे से निभाएं, ट्रैफिक लाइट्स का पालन करें। और ये ऐसी चीज़ें आप कहेंगे भाई ये क्या बताया जा रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें मालूम तो होती है लेकिन रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। और ज़रूरत तो और भी बहुत कुछ है। ज़रूरत क्या है? बहुत प्यारे से संगीत की ज़रूरत है। और किशोर कुमार की आवाज़ में जो अगला गीत है बड़ा प्यारा सा है, सुनते हैं।

ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं और इस वक्त फ़िलहाल ज़रूरत है मुझे आपसे अलविदा कहने की, क्योंकि वक्त हो चला है ख़बरों का। तो आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार सुनिएगा ठीक 9:10 पर म्यूज़िकल दिल्ली के दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत हो जाएगा प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो फ़िलहाल मुझे शीतल को यहाँ पर म्यूज़िकल दिल्ली को यहीं पर विराम देने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के इलाकों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो से विजय कहता है नमस्ते आप सभी को। म्यूजिकल दिल लगी में पहली बात, हेलमेट और सीट बेल्ट का हमेशा करें इस्तेमाल या कहें उपयोग, क्योंकि सुरक्षित सफर का यही है सही योग। सुबह सुबह कविता और जानकारी भी, दोनों चीजें एक साथ। म्यूजिकल दिल्लगी और दीगर कार्यक्रमों में हम आपसे बातें करते हैं, आपके काम की, आपकी खुशी हमारा सरोकार है दोस्तों। इन बातों के साथ हम पेश करते हैं कुछ गीत जो हमारे मन की गहराइयों में जीते जागते हैं, हमारी जिंदगी के सफर में हमारे साथ चलते हैं। जब कोई हमारे पास नहीं होता ना दोस्तों, तो ये गीत होते हैं, ये गीत हमें दिखाते हैं राह, हंसते मुस्कुराते हुए, कभी रुलाते हुए, कभी हमें अपने साथ नचाते हुए। इन गीतों को लिखने वालों, इन्हें संगीत के सांचे में ढालने वालों, इन्हें गाने वालों ने अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से जी दोस्तों कि उनका काम उनका रहा ही नहीं, हम सबका हो गया। इन गीतों में ऐसा लगता है जैसे हमारे ही दिल की आवाज़ हो, हमारी ही बात कर रहे हों। यही बात हम आपसे और आपको हमसे और तमाम कायनात से जोड़ती है। हमारे सुनने वालों के लिए बहुत ही मोहब्बत और इज्जत के साथ, प्यार और सम्मान के साथ हम ये बातें और गीत पेश करते हैं आपके लिए। वैसे आज शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि है और सावन आने में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन ये गाना जो अभी हम सुनने वाले हैं मुझे बहुत खींच रहा है। सुनते हैं रफी साहब और सुमन कल्याणपुर को। सावन बीतने की बात है इस गाने में, लेकिन इसके बहाने जो बातें दूसरी कही गई हैं वो सभी मौसमों में अच्छी लगती हैं दोस्तों। गाना बहुत लोकप्रिय है और इसकी शास्त्रीयता और भी अच्छी लगती है, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। रफ़ी साहब ने तो ये दुनिया

1980 की 31 जुलाई को ही छोड़ दी थी। 31 मई 2026 को, यानी कुछ ही दिन पहले, सुमन कल्याणपुर भी इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गई थी। उन दोनों की याद को समर्पित ये गाना, आइए म्यूजिकल दिल्लगी में इसी से शुरुआत करते हैं।

है ना शानदार गाना। हाँ, कितना प्यारा लगता है। और इसको सुनने के अलावा इसे देखना भी अपने आप में कमाल है, क्योंकि गाने का जो ट्रीटमेंट है वो कॉमिक है। बहुत प्यारा लगता है। रफ़ी साहब की आवाज़, महमूद साहब जो गा रहे हैं, वैसे तो फिल्म में गुरुदत्त और हैं, लेकिन जो ये गाना है, ये आप ज़रा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी जो ट्रीटमेंट है गाने का, वो इसको गंभीर गाना है और कॉमिक दृश्य है ना, विरह गीत है और पूरी संजीदगी और शास्त्रीय बारीकियों के साथ गाया गया है, लेकिन उसमें फिल्मांकन जो है वो थोड़ा सा कॉमिक है। तो इसलिए ये अपने आप में, ऋषिकेश मुखर्जी जो इसके डायरेक्टर थे फिल्म के, सांझ और सवेरा के, उनका कमाल है। गुरुदत्त और मीना कुमारी जैसे संवेदनशील कलाकारों को लेकर बनी ये फिल्म, लेकिन इसमें ये पुट महमूद और शुभा खोटे का भी कमाल का बनता है। खैर साहब, इस गाने के बारे में बहुत सी बातें हो गई, दूसरी बात हम कहेंगे आपसे, गति सीमा का रखें ध्यान और ना करें जल्दबाजी दोस्तों, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। ये तो हम

भी जानते हैं, फिर भी जाने क्या हो जाता है उस मोमेंट कि छोटी छोटी गलियों को भी हम हाईवे समझ लेते हैं, फार्मूला वन चलाने लगते हैं। थोड़ा ध्यान से आराम से पैदल चलने वालों का भी एक सम्मान हमें करना है और अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। हम मनोरंजन के साथ साथ जानकारियां भी लेकर आते हैं आपके लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, भारत सरकार की ये एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान प्रदान करना है। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 की सीधी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे अब इस स्कीम को अब मार्च 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए अलग से ₹12,000, मनरेगा के तहत मजदूरी और उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक डेटा और आवास प्लस सर्वे के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। गाना सुनिए अब, है ना, बहुत प्यारा गाना एक आ रहा है। दरअसल ये गाना क्रिएटिविटी का एक, वैसे तो हर गाना क्रिएटिविटी का नमूना होता है, लेकिन इस गाने में खास बात है, इसकी कुछ बारीकी है। वो बारीकी क्या है शायद अभी सुनने में पता चले, नहीं तो आप इसका वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें बाद में करेंगे, गाना पहले सुनते हैं। रफ़ी साहब ने लता जी के साथ ये बहुत खूबसूरत गाना गाया और इतना ही खूबसूरत फिल्मांकन है इसका हुआ है जितेंद्र और हेमा मालिनी की शानदार जोड़ी के साथ।

0: हाँ, ये सुनते हुए पता तो इतना नहीं लगा, मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन जब मैंने ये गाना, इसका वीडियो गाना देखा था, अरे कमाल, इसमें क्रिएटिविटी एक खास किस्म की थी। जैसे ये गाना ज़्यादातर कार के अंदर शूट हुआ है और इसमें खिड़कियाँ बंद हैं, लेकिन एक शॉट ऐसा है कि जो जब कार के अंदर शॉट्स लिए गए हैं तो गाना सामान्य आवाज़ में बजता है, लेकिन जब बाहर से शॉट लिया जाता है तो आवाज़ कम हो जाती है गाने की, जैसे आवाज़ दूर से आ रही हो। एक शॉट में तो हेमा जी जब कार का दरवाज़ा खोलती हैं तो अचानक से आवाज़ बढ़ जाती है, और फिर वो दरवाज़ा बंद करती हैं तो फिर कम हो जाती हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा लगता है। वारिस फिल्म का है, 1969 में आई थी ये फिल्म। आरडी का म्यूज़िक है और राजेंद्र कृष्ण ने ये गाना लिखा है, और जितेंद्र और हेमा की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी बनती है इस गाने में। बाकी बातें बाद में, एड भी तो चलानी है मुझे एक।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
0: टाइम ही नहीं बचा है, अगला गाना आपको सुनवा दूं जल्दी से, और ज़्यादा बातें ना करूं। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन को कहें ना, जिंदगी है अनमोल, इसे सुरक्षित ही रखना। तो दोस्तों, विजय सिंह इस गाने के साथ थोड़ी सी देर के लिए इजाज़त ले रहा है, वैसे ज़्यादा देर के लिए ले रहा है। लेकिन आप ये गाना सुनिए, फेवरेट गाना है, बहुत बजता है गोल्ड पर, और इसे जितनी बार सुने तो दिल अच्छा ही महसूस करता है। तो इसके बाद हम सुनेंगे वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन

में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व

वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमनसिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

जी, वतन का राग हमने सुना और अब थोड़ी देर में हम सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर सुनेंगे हम अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद होगा विश्व दर्पण, फिर वर्ल्ड न्यूज़ और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम सुनेंगे बहुत प्रेरणादायी इंटरव्यू प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में। तो आप हमारे साथ रहिए और अभी हम सुनने जा रहे हैं समाचार। तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की प्रशंसा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप, बिजली आपूर्ति प्रभावित। और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जकार्ता में इंडिया क्लब के अध्यक्ष सिद्धार्थ टपाड़िया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे।
1: पूरे इंडोनेशिया में, ना केवल जकार्ता में, एक उत्साह की लहर दौड़ रही है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं इंडोनेशिया, तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 200 वॉलंटियर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी से आ रहे हैं अपना कल्चर डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। इसके अलावा जकार्ता से बाहर से बहुत सारे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेडान हो, बाली हो, सुराबाया हो या समारांग हो।
0: इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देश और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 जुलाई तक की इस यात्रा में डॉक्टर जयशंकर विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श

0: करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार कल से तेहरान में शुरू हो गए। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेडिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने कहा है कि देश में भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हैं। लगभग 16,000 लोग बेघर हुए हैं। देश में एक सदी से भी अधिक समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान अब भी जारी है। इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के शोक की घोषणा करते हुए कहा कि विनाशकारी भूकंप से हुई जान माल की हानि से पूरा देश सदमे में है। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिससे राजधानी कराकस में कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के झटके वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। पूर्वी अमरीका में भीषण लू का प्रकोप जारी है, इससे बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण फीफा फुटबॉल विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमरीकी मौसम विभाग ने कहा है कि बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 44 डिग्री और वाशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। इसी पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माली की सेना ने कहा है कि विद्रोहियों ने उत्तरी इलाकों के गांव और सिवारे कस्बों को निशाना बनाया है। एक विद्रोही गुट के उत्तरी इलाके के एक कस्बे पर कब्जा करने के लिए नए हमले का ऐलान करने के बाद यह बयान आया है। आजाद लिबरेशन फ्रंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादी एनिफिस कस्बे को निशाना बना रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में पैराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले टेक्सास में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 की शानदार जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट की बात करें तो मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर ही 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब बात टेनिस की। लंदन में विंबल

0: टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना राय बकीना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वेटेक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में रूस के रोमन सफियोलिन से मुकाबला होगा। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर का सामना जापान के शिंतारो मोजुकचुकी से होगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
3: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए जी। और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
3: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
4: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ,
3: अच्छा,
4: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
3: तो ये कब शुरुआत की आपने?
4: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले। और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया, प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
3: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
4: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
3: अच्छा,
4: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
3: जी,
4: छोटे

0: बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे, वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब GK के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है, तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने

0: नहीं है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
1: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूं जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं। समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
0: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
1: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
0: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
1: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा हुआ विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी, और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे, वो उनका एक गांव था, और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना, और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं, बहने, युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में, 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले, और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले, और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
0: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
1: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है, या किसी तालाब के पास है, या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था, हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
0: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
1: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है, और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय

0: है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे, या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाएं, तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे, तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन
1: बहुत
0: आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है, और पंचायती या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें, और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, तो मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहनें, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूं विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं, आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की, वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर की या हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें, तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है, या नीम का पेड़ है, या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है, तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर

0: भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है, लेकिन समाज की बात करें लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूं अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में चार सदस्य है तो चार पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती है, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहां देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थे, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े

0: बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़े और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast@airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ।

समझ चलोगे आत्मलोके रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्मलोके रूठ के

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। मैं हूँ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और मेरे साथ है आपकी जानी पहचानी मनपसंद इंदु पांडे।
1: मैं भी आज आपके साथ हूँ और मैं भी सबको कहना चाहती हूँ बहुत बहुत नमस्कार और सबका स्वागत है।
0: और एक विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है, उनके बारे में भी तो बताओ।
1: बिल्कुल रश्मि जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम दोनों सोचिए कि एक स्पेशल गेस्ट लेकर के आए हैं अपने स्टूडियो में, जिनका नाम है गरिमा अवतार, जो एक ऐसे फील्ड से आती हैं जिसके लिए माना जाता है कि वो पुरुषों का ही क्षेत्र है, कार रैली। वो बहुत सारी रैली में कार ड्राइव करती हैं और एक रेसर की तरह जानी जाती हैं। तो गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी गोल्ड के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। आपने जैसे बोला, मैं एक्सट्रीम रैली में हूँ एंड जब मुझे मेरे फादर ड्राइविंग सिखा रहे थे, मैं छोटी थी, तो उनके मन में भी कभी विचार नहीं आया था, कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि ये कोई करियर ऑप्शन भी हो सकता है। मोटर स्पोर्ट में, एक छोटे शहर से हूँ मैं, बरेली से हूँ, तो कभी नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था इसके बारे में। लेकिन इस फील्ड में आना और इसमें करियर बनाना, ये मेरे लिए एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस की तरह था। हम जैसे बहुत बार प्लान्स बनाते हैं और कभी हमारे प्लान्स अगर पूरे नहीं हो तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान हमारे लिए बड़े प्लान्स बनाता है जो हमारी सोच के बाहर है। मुझे बचपन से एक्चुअली गाड़ियों का बहुत शौक था। मेरे फादर हमको बहुत इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और उनका बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहा है, तो हमेशा उन्होंने बोला है कि खेलो, इंडिपेंडेंट बनो, तरक्की करो। खूब सारे उन्होंने मेरे मन में ख्वाब डाले थे, आईएएस ऑफिसर बनो, आईपीएस ऑफिसर बनो,
0: अपने पैरों पर खड़े हो,
2: अपने पैरों पर खड़े हो। मुझे अभी भी वो एक छोटा सा दृश्य याद है, जब पापा के पास एक लेटर आया था फ्रॉम सम एम्बेसडर ऑफ द कंट्री एंड उसमें वहां पे अशोक का चक्र, वो जैसे मना, इतना वो देख के इतने प्राउड फील कर रहे थे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम एम्बेसडर बनो किसी कंट्री का, आईएफएस ऑफिसर बनो
0: जी।
2: तो मन में उन्होंने बहुत ख्वाब डाले थे।
0: लेकिन हम तो कहेंगे कि आप भी एक प्रकार के दूत हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए, एक प्रेरणा स्रोत है, जो कि आपने इस तरह का काम चुना जिसमें कि कल्पना करना मुश्किल होता है। भाई गाड़ियां तो बहुत सारी महिलाएं चलाती हैं, इंदु भी गाड़ी चलाकर आती है, हम लोग भी गाड़ी चलाकर आते हैं, पर उसको कार रैली में उतरना, एक रेसिंग करना, भाई वो तो वाकई मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। इंदु तुम बताओ।
1: नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो गरिमा, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे कार रेसिंग में अपना करियर बनाना है, तो वो मोमेंट कैसा था? अपने आप से स्ट्रगल या जिसको भी बताया आपने
2: जी,
1: और ये फील्ड है जहाँ आदमी लोग ज्यादा हैं,
2: राइट,
1: तो वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: ये मैंने प्लान नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में कभी जाऊंगी और इसमें मेरा कुछ तरक्की होगी या कुछ मेरा मुकाम बनेगा। मैं एक फुल टाइम जॉब में थी, फुल टाइम जॉब के साथ साथ मेरा एक्चुअली रैलिंग वॉज अ वीकेंड पैशन, मतलब मैं वीकेंड्स में अपना काम वाम खत्म करके पूरा रैलीज में चले जाती थी, लेकिन मेरा फुल टाइम जॉब था तो मेरी अर्निंग एंड ऑल पूरी वहां से आती थी, बिकॉज मोटर स्पोर्ट एक्चुअली एक एक्सपेंसिव

0: सपोर्ट है. पहले वो बहुत रिकग्नाइज नहीं था गवर्नमेंट से, अभी वो रिकग्नाइज हो गया है. उसको अपना जो दर्जा मिलना चाहिए वो मिल चुका है. उस समय मोटर स्पोर्ट में जाना कोई ऐसा करियर ऑप्शन नहीं था.
1: मतलब आप शौकिया कर देती थी?
0: मैं मेरा मोर ऑफ अ पैशन था, मतलब पैशन फॉर ड्राइविंग, पैशन फॉर कार्स. मैंने 9 साल एक्चुअली मेरे जॉब में काम किया है फुल टाइम, एंड उसके बाद देन रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है. आई वाज लकी कि मैं रैलिंग में शुरू में आई वाज पिक्ड अप बाय महिंद्रा एडवेंचर रैली टीम. सो दैट वाज एक किक स्टार्ट था मेरे करियर के लिए. एंड ग्रेजुअली फिर मैंने अपने आप को खूब ट्रेनिंग दी, और उसके बाद मैं एक्सट्रीम रैलिंग में आ गई. तो एक्सट्रीम रैलिंग इज ऑल अबाउट फास्ट ड्राइविंग, यू नो, आप द फास्टेस्ट विंस वाला. जैसे दो तरह की रैलिंग होती है, एक होती है TSD रैलिंग, विच इज टाइम स्पीड डिस्टेंस फॉर्मेट रैली, जो रेगुलरिटी रैली रहती है जिसमें एवरेज स्पीड 60 km/h रहती है, मतलब उससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते. इट्स ऑल अबाउट नेविगेशन, उसमें एक्यूरेसी ऑफ टाइम रहता है, मतलब आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, टाइम के बाद पहुंचेंगे तो पेनल्टी, सेकंड्स की पेनल्टी लगती है. हाँ हाँ,
1: अच्छा, मतलब बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इसमें आप ड्राइविंग करते हैं.
0: बिल्कुल, वो नेविगेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है. लेकिन दूसरी एक फॉर्मेट रैली होती है जो एक्सट्रीम रैलिंग होती है, उसमें फास्टेस्ट विंस है, उसमें मतलब एनक्लोज ट्रैक्स होते हैं. रेगुलरिटी रैली जो मैंने बताया, TSD रैली, तो रोड्स पे भी होती है क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा नहीं होती है, यू टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग. लेकिन ये जो एक्सट्रीम रैलिंग होती है एनक्लोज ट्रैक्स पे होती है. देन आई गॉट इनटू एक्सट्रीम रैलिंग.
1: इसमें स्पीड कितनी रहती है एक्सट्रीम रैलिंग में?
0: सो फास्टेस्ट, मतलब यू नो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो ट्रैक्स रहते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के ट्रैक्स रहते हैं. ग्रेवल ट्रैक्स भी रहते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर, तो टमैक है, ग्रेवल है, सैंड होता है, डेजर्ट स्टॉर्म रैली जैसे होती है वो सैंड ड्यून्स भी होती है. माउंटेन्स में हम ड्राइव करते हैं तो माउंटेन्स में तो हेयरपिन कर्व्स भी होते हैं, ऊपर चढ़ाई होती है, नीचे उतरे, मतलब कैसे टेढ़े मेढ़े रस्ते होते हैं, पत्थर भी होते हैं खूब सारे, तो हर तरह के ट्रैक कंडीशंस. कंट्री साइड होता है तो मतलब यू नो, यू हैव टू ड्राइव थोड़ा ध्यान से कि भाई आजू बाजू पेड़ भी हैं, आपको दिख रहे हैं, यू नो सब. इसको रैलिंग बोलते हैं. रैलिंग डिफर करती है सर्किट रेसिंग से. सर्किट रेसिंग होता है जो F1 रेसिंग होती है, वो सर्किट रेसिंग होती है जहाँ पे एक ही ट्रैक के लैप्स लेते रहते हैं आप.
1: ज्यादातर फिल्मों में हम वही रैली देखते आए हैं ना.
0: हाँ, एंड उसमें एक साथ बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं, मतलब आप अगर सर्किट रेसिंग में देते. एक्सट्रीम रैलिंग में गाड़ी एक एक करके जाती है, मतलब आपके 20 seconds या 30 seconds या समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन रैली फॉर्मेट, 10 seconds के डिफरेंस में एक दूसरी गाड़ी जाती है. एंड देन आप दूसरे को टाइम मेकअप करके उसको ओवरटेक करके देन यू नो आप करते, बट बेसिकली फास्टेस्ट विंस वाला है.

0: जब आपका चुनाव हो गया
1: जी
0: उस एडवेंचर स्पोर्ट में,
1: हाँ
0: तो आपकी शुरुआत फिर आगे कैसे बढ़ी और आपने किस प्रकार से इसमें करियर सोच लिया कि अब ये करियर मेरा होने वाला है, मैं ऐसे करियर को मैंने चुन लिया है, या हम कहे करियर ने आपको चुना कि
1: जी, जी,
0: अब
1: जी.
0: मैं पूरा समय कार रेसिंग को दूंगी, रैलिंग को दूंगी?
1: जैसे मैंने बताया, मोटर स्पोर्ट इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इसमें इतने इजिली स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली एक्सट्रीम रैलिंग में, बिकॉज इतने बड़े बड़े लंबे लंबे 250 किलोमीटर के ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे मीडिया कवरेज इतना अमेजिंग नहीं हो पाता है. जैसे सर्किट रेसिंग में आप एक ट्रैक को आसानी से कवर कर सकते हैं. मर्सिडीज बेंज का लक्स ड्राइव प्रोग्राम होता है, तो उसमें आई वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल ड्राइवर चोजन बाय मर्सिडीज बेंज, तो वहां पे बहुत साल मैंने एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर ड्राइव किया. फिर उसके बाद ग्रेजुअली मैं सोशल मीडिया पे आई एंड कॉन्टेंट बनाने लगी, कॉन्टेंट क्रिएटर बन गई. उसके बाद मैं जर्नलिस्ट टाइप, मतलब यू नो, मेरे को इनवाइट्स आने लगे फॉर मीडिया लॉन्चेस, मैं वहां पे जाके उनका कॉन्टेंट बनाने लग गई एज ए जर्नलिस्ट. एंड बेसिकली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं लग्जरी एंड हाई परफॉर्मेंस कार्स का ही कॉन्टेंट बनाती थी एंड उनका ब्रांड एसोसिएशन होता था, मीडिया लॉन्चेस के लिए मैं इन्वाइट करती थी. मैंने अभी ग्रेजुअली, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मैंने मास कार्स के लिए का भी कॉन्टेंट बनाना चालू कर दिया है. एक मेरा पॉडकास्ट है जहाँ पे एथलीट्स जो हैं, जो अर्जुन अवॉर्डीज, वर्ल्ड चैंपियंस, ओलंपियंस, उनको इंटरव्यू करती हूँ. एंड दिस पॉडकास्ट इज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन, एंड बेसिकली इट्स अबाउट कवरिंग जो एथलीट्स हैं उनकी जर्नी को कवर करने के लिए.
2: तो गरिमा, जैसे आपने बोला कि एक्सट्रीम कार रैली करती हैं,
1: हाँ जी,
2: तो अमूमन जो आम इंसान होता है जब वो गाड़ी में बैठता है, तो हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हमारी कुछ पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब ड्राइव करते हैं तो हावी होती हैं, और तब हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है. तो वो क्या प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है?
1: नहीं नहीं नहीं,

0: उसमें तो बल्कि उल्टा होता है. यहाँ पे जब आप गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के जब हेलमेट पहनते हैं तो आप एक जोन में जाते हैं, मतलब ऐसे मेडिटेटिव जोन में जाते हैं जब अपने आप को एकदम काम रखना होता है, नो थॉट्स. आप गाड़ी और उससे पूरा मर्ज हो जाते हैं, आप उसी जोन में रहते हैं. उस समय सिर्फ गाड़ी ड्राइविंग और रेसिंग के अलावा कुछ और थॉट्स नहीं होते हैं. आपको इनफैक्ट गियर्स चेंज करते हो तो एकदम एग्रेशन में नहीं करना है. आप एग्रेशन में करेंगे गियरबॉक्स हाथ में आ जाएगा आपके. तो आपको एकदम कामली जितना आप फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा आपका, आप क्योंकि वो हमारे बाजू में बैठ के नेविगेटर हमको कॉन्स्टेंटली नोट्स बताते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि डायरेक्शंस बताते हैं. हमारे साथ एक्सट्रीम रनिंग में एक नेविगेटर भी होता है क्योंकि हम इतने हाई स्पीड्स पे गाड़ी चलाते हैं, तो वो साथ में हमको ये बताते हैं कि अरे आपको 50 मीटर्स के बाद, 100 मीटर्स के बाद 90 डिग्री टर्न है, इसके बाद उनका जैसे टर्मिनोलॉजी है जो भी है, मैं आपको एक लेमैन टर्म में बता रही हूँ कि वो बोलेंगे एक बहुत बड़ा डिप आने वाला है, कॉशन, धीरे करिए, एंड यू नो लाइक दैट 100 मीटर्स के बाद यू टर्न आने वाला है. तो इतने हम हाई स्पीड में चला रहे हैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से उनके हमको डायरेक्शन सुनने पड़ते हैं और अपनी गाड़ी को उसी हिसाब से मॉनिटर करना पड़ता है. एक इंटरनेशनल रैली चैंपियनशिप में ग्रेवल ट्रैक में एकदम स्ट्रेट रोड था एंड उसके बाद एक ग्रेवल ट्रैक में थोड़ा सा वो फिसलने वाला जैसे होता है एंड एकदम शार्प टर्न था. तो शार्प टर्न में मेरी गाड़ी पलट गई, पूरा टर्टल हो गई एंड एकदम फिनिश लाइन से मतलब आई थिंक 200 मीटर पहले गाड़ी टर्न हो गई एंड मेरे जो नेविगेटर थे मतलब वो भी दुखी हो गए कि हम, क्योंकि हम जब कोई रैली में आते हैं तो उसके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं, इतने पैसा खर्च करते हैं और महीनों से तैयारी होती है. और हर एक रैली में ऐसा भी नहीं है कि हमको कोई अवार्ड मिलता है. अगर हमने रैली फिनिश नहीं करी, जैसे डिड नॉट फिनिश, DNF हो जाता है, तो उसका कोई हमको ट्रॉफी भी नहीं मिलती है. पहले रैली को फिनिश करें तब थोड़ा एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाता है, कभी कभी सर्टिफिकेट मिल जाता है. लेकिन अगर हमारा कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया गाड़ी के साथ या कुछ प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी पलट गई, तो फिर वो हम फिनिश नहीं करते तो पूरी मेहनत बेकार. तो लेकिन ये हम पैशन है, हम फॉलो करते हैं. तो
1: पर जब गाड़ी पलट गई तो पहला जो सवाल दिमाग में आया कि आप को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी उस समय?
0: अभी क्या होता है कि हम जो ये कार्स में जाते हैं तो ये बड़ी सेफ कार्स होती हैं, इनकी पूरी स्क्रूटनी होती है. दीज कार्स आर रैली प्रिपेयर्ड कार्स, तभी ये स्पोर्ट एक्सपेंसिव है. गाड़ी में पूरा रोल केज लगा हुआ होता है कि गाड़ी पलट गई तो दबे नहीं गाड़ी.
1: अच्छा.
0: सीट बेल्ट, 5 पॉइंटर सीट बेल्ट होती है. हमारा सूट होता है जो फायर प्रूफ सूट होता है, वो हमको पहनना होता है. सारे इनर्स विनर्स सब FIA अप्रूव्ड होते हैं. हेलमेट FIA अप्रूव्ड होता है, शूज FIA अप्रूव्ड होता है. तो गाड़ी के अंदर की सीट्स अलग, बकेट सीट्स कहते हैं, स्टेयरिंग व्हील भी अलग होता है. तो अंदर बहुत मॉडिफिकेशंस करे होते हैं गाड़ी के अंदर, तो बहुत सेफ होती है गाड़ी. इग्निशन भी हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं इमिजिएटली, मतलब वो जो कट ऑफ कर सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल्स को बाय जस्ट वन स्विच. इस टाइप का कोई अगर कुछ इमरजेंसी ऐसे होती है. तो जब मेरी ये गाड़ी पलटी तो ऑब्वियसली हम विंडो से बाहर निकल के आ गए, मैं और मेरे नेविगेटर. हम सेफ थे बट उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे हम बस फिनिश लाइन से पहले ही एकदम गाड़ी पलट गई. बट बहुत ही ना मेरे मन में एक ऐसा है कि नहीं नहीं, हार मानना है, कुछ करना है. जैसे कंट्री साइड में होती है रैलीज तो वहां पे थोड़े से अंदर की तरफ थोड़े फार्मर्स दिखे, थोड़े वर्कर्स थे, तो हमने उनको बुलाया. तो गाड़ी को एक्चुअली रोड के एकदम पास में ही पलटी थी, तो उसको रोड के ऊपर वापस से उसको लेके आ गए. गाड़ी को मैंने बैठ के इग्निशन ऑन किया तो स्टार्ट हो गई गाड़ी और हमने एक्चुअली उस रैली को फिनिश
1: किया
0: एंड वी वन इन दैट कैटेगरी.
1: क्या बात है. देखिए जब जीत होती है ना तो फिर जश्न भी होना चाहिए.

0: ड्राइविंग सेफ्टी के बारे में थोड़ा जरूर बताएं।
1: जरूर,
0: एक महिला जब गाड़ी चलाती है तो उसको कई बार हिचक होती है, मैं चला पाऊंगी गाड़ी तो, लेकिन हाँ। जब वो निकलती है तो क्या सोच के शुरुआत करे और किस प्रकार से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे, इसके बारे में जरूर बताएं।
1: पहले तो मैं जो एक मन की जो
0: हिचक है
1: उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाइए। कोई भी महिला किसी पुरुष से कम नहीं है किसी भी स्तर पे। जस्ट बिकॉज हमको आदत नहीं है, हमने शुरू से बचपन से गाड़ी नहीं चलाई है, तो हमको थोड़ा सा, हम जैसे बहुत एज के बाद गाड़ी चलाना सीखते हैं तो इसलिए हिचक पैदा होती है क्योंकि हमको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। जितना हमने प्रैक्टिस किया उतना ही हम अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। बॉयज क्यों इतने अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से चलाना चालू कर देते हैं, वो अपने आप ही सीख लेते हैं, उनको शौक होता है। तो ये शौक मेरे को बचपन से, मतलब पापा ने सिखा दिया तो मैं गाड़ी लेके, मेरे को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई थी, इसलिए फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। सेफ्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि एक तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीछे सीट पे भी अगर आप बैठे हैं गाड़ी के पीछे, तो ये हमारा आदत नहीं है, हम पीछे सीट पे नहीं पहनते हैं सीट बेल्ट, लेकिन वो भी बहुत पहनना जरूरी है। एयर बैग्स भी काम नहीं करते हैं अगर आपने सीट बेल्ट पीछे पहनी नहीं है। अगर अपनी सेफ्टी पूरी चाहिए तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ
0: ये आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर पीछे लोग बैठे हैं और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो आगे के भी एयर बैग्स रुक जाते हैं क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तो वो आगे वाले पैसेंजर्स तो सेफ रहेंगे अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है, तो पीछे वाले पैसेंजर्स, क्योंकि आजकल एयर बैग्स हर जगह रहते हैं ना
0: जी,
1: तो पीछे वाले, मतलब अगर एयर बैग खुला और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपको इंजरी हो सकती है
0: जी।
1: तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है एयर बैग काम भी नहीं करे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो। उसके अलावा मैं बोलूंगी कि मोबाइल का यूज ड्राइव करते समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये भी बहुत जरूरी है कि जो यंग बच्चे हैं, मतलब युवा के लिए ये मैं जरूर मैसेज देना चाहूंगी कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाइए। बिना ड्राइवर्स लाइसेंस के तो बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाइए, ड्राइविंग लाइसेंस में चलाइए, अपने रूल्स फॉलो करिए। अगर आपको शौक है स्पीड का, आपको तेज गाड़ी एक्सपीरियंस करना है, तो आप उसको, उसमें मोटर स्पोर्ट के छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए। स्पीड ड्राइविंग हैज टू बी ऑन द ट्रैक, ऑन अ रेस ट्रैक, नेवर ऑन अ रोड। एक रोड सेफ्टी अभियान हुआ था अमृतसर से कन्याकुमारी, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड होम मिनिस्ट्री एंड फिक्की की तरफ से था। 6 गाड़ियां थी, ऑल वुमेन ड्राइवर्स, और आई वाज लीडिंग द ड्राइव। ये मैसेज फैलाना था कि भाई टू ड्राइव सेफ, ड्राइव अंडर कंट्रोल स्पीड्स, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आपको जब भी थोड़ी, मतलब आप थक जाते हैं, नींद आने लगती है, तो आप प्लीज रुक जाइए, कप कॉफी पीजिए, तब चलाइए।
0: गरिमा क्यों ना अब एक और गीत सुन लिया जाए इस मौके पर।

हम ये भी जानते हैं कि गरिमा बहुत अच्छा गाती भी है, मतलब कार चलाने के साथ साथ गुनगुनाती भी है, गाती भी है और बहुत अच्छे से सीखा

0: हुआ है इंदु, क्या ये बात सही है जो मैं कह रही हूँ?
1: बिल्कुल सच है, लेकिन दोनों चीजें कितनी उल्टी है ना। अक्सर हम लोग तो गाना सुनते हुए गाड़ी चलाते हैं और ये गाना गाते हुए गाड़ी चलाते हैं। ऐसा होता है।
0: तो ये पक्ष भी उजागर होना चाहिए ना। तो अपने थोड़ा गीत संगीत के बारे में बताएं।
2: म्यूजिक हैज बीन माई फर्स्ट लव एक्चुअली, लेकिन म्यूजिक मेरे लिए हमेशा एक स्पिरिचुअल जर्नी रहा है। मैंने ट्रेनिंग ली है इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक में एंड अभी भी मतलब सीखती रहती हूँ मैं। एक्चुअली ये भी गिफ्ट मुझे मेरे फादर से मिला है। पापा बहुत स्पिरिचुअल थे। मुझे ऐसे मेमोरीज हैं जब वो बहुत घंटों तक बैठ के ध्यान करते थे और उनके साथ एक हारमोनियम छोटा सा रहता था, वो सा और पा लगा के बहुत सा पा का भी रियाज करते थे। एंड मैं उनके साथ बहुत बार बैठ जाती थी। मुझे तो बहुत लाइक जैसे आई वाज अ बिग फैन ऑफ माय डैड, तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था।
1: तो दोनों चीजों की प्रैक्टिस, कार चलाने की और संगीत की प्रैक्टिस अभी तक चल रही है?
2: अभी तो मैं रैली ड्राइविंग, तो कॉम्पिटिटिव ड्राइविंग नहीं कर रही हूँ। मैं अभी ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ। मेरी ड्रिफ्टिंग की मैंने ट्रेनिंग ली है। एक ड्रिफ्ट कार तैयार करी है अपने लिए, C200 है, मैनुअल कार है। आपको ड्रिफ्टिंग के बारे में थोड़ा आइडिया है?
1: मैं तो रश्मि की शक्ल देख रही हूँ।
2: सो ड्रिफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ ड्राइविंग साइडवेज। इसमें ना थोड़ा एडवांस ड्राइविंग टेक्निक्स लगते हैं और
0: कुछ ऐसा है कि दो पहियों पर गाड़ी चलाना, टेढ़ा करके गाड़ी चलाना, जिसके लिए हम हमेशा मना करते हैं अपने बच्चों को भी की ध्यान से।
2: वो स्टंट ड्राइविंग होती है। मैंने तो नहीं सीखा है वो, लेकिन वो बहुत लोग स्किलफुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में वो भी स्टंट ड्राइविंग पॉसिबल है। ये ड्रिफ्टिंग में क्या होता है कि आपका जो बैक ऑफ द कार होता है, मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो डेलिब्रेटली कार को अनस्टेबल करके स्टेबलाइज करते हैं। डोनट्स अगर आपने देखा है, डोनट्स हम बनाते हैं। तो रैलिंग तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन ड्रिफ्टिंग आई हैव स्टार्टेड डूइंग। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एक्सपीडिशंस में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है कभी?
0: सो फिलहाल तो ये कल्पना का जो सफर है उसमें हम आपके साथ ड्राइवर के पीछे बैठे हुए हैं, हम साथ बैठे हुए हैं ना, बस ये कल्पना में सफर किया है।
2: अरे वाह। सो जैसे एक्सपीडिशंस होती हैं, कार एक्सपीडिशंस, तो मैंने एक ऑर्गेनाइज करी थी ऑल वुमेन्स कार एक्सपीडिशन, वेयर एक ग्रुप ऑफ वुमेन, लाइक हम 11 लेडीज थी, हम स्पीति गए और दिस एक्सपीडिशन वॉज ओनली फॉर फीमेल कार ड्राइवर्स। तो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। स्पीति की रोड्स, दे आर सपोज टू बी द वर्ल्ड्स टफेस्ट रोड्स एक्चुअली, एंड रिस्की भी रहती हैं थोड़ी, बट दीज लेडीज वर फ्रॉम ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स। ऐसे दे वर नॉट एक्सपर्ट ड्राइवर्स, वो हाउस वाइफ्स भी थी, थोड़ी सी कोई एक दो एल्डरली लेडीज भी थी, और काफी लेडीज ने तो हाईवे पे भी नहीं चलाया हुआ है, बट हमने थोड़ा उनको ट्रेन करते हुए हमने एक्सपेडिशन किया था। बड़ा सक्सेसफुल रहा था और ये लाइफ टाइम की हमारी फ्रेंड्स बन गई हैं अभी।
0: Wow. मुझे लगता है बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो प्रेरणा ले रही होंगी, बहुत उनको अच्छा लग रहा होगा कि हम भी ये कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं। क्या कहती हो तुम?
1: बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि इनको सुन के जब हम दोनों इतने उत्साहित हो रहे हैं, तो जो बाहर हमने सुन रहे होंगे तो वो भी शायद कुछ लोग तो ऐसे भी सोच रहे होंगे कि चलो इसमें हम करियर क्यों ना बनाएं। तो उनके लिए कुछ है आपके पास मैसेज कि क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मोटर स्पोर्ट में करियर बना सकते हैं आप अगर बचपन से शुरू से ट्रेनिंग लें और स्टार्ट करें, कोई अच्छी रेसिंग टीम के साथ में जुड़ जाएं और स्पॉन्सरशिप अगर आपको अच्छी मिल जाए तो आप जरूर करियर बना सकते हैं। रेसिंग के अलावा मतलब और भी बहुत कार से रिलेटेड चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, जो मैं जैसे ऑटो जर्नलिज्म, आप लिख सकते हैं गाड़ियों के रिव्यूज, लिख सकते हैं आप, वीडियोज बना सकते हैं, कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस के लिए त्याग बहुत जरूरी है। मन में अगर आपके सच्चाई है, दृढ़ता है, आत्मविश्वास है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। काफी बार हमको पता होता है हमको क्या चाहिए, लेकिन हम अपने आप को सोचते हैं कि हम वी आर नॉट गुड इनफ, या फिर हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम दूसरों के लिए चीयर लीडर्स बन जाते हैं। हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं कि हम कैसे अचीव करें, बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को चांस दें, आप जरूर सफलता के ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि गिव अप नहीं करें।
1: रश्मि ऐसी कितनी अच्छी बात है ना, इन्होंने एक लाइन बोली मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दूसरों के लिए चीयरलीडर्स होते हैं, अपने लिए नहीं होते।
0: हाँ।
1: ये सच में बहुत बड़ी बात है।
0: ऐसा नहीं होना चाहिए,
1: ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। हमें अपने आप को एनकरेज करते रहना चाहिए।
2: हाँ।
1: और आज आपको देख के ना मतलब सच में एकदम पावर हाउस जैसी फीलिंग आ रही है।
0: बहुत हिम्मत से आ गई, मतलब लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और महिलाएं तो कितनी सारी चीजें साथ साथ कर रही होती है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही एक संदेश जो हमें आज मिला है, मन तो कर रहा है गरिमा आपसे बात करते रहे करते रहे, लेकिन घड़ी हमें कह रही है कि समय हो चुका है, इंदु और हमें

0: आना है, दूसरे कार्यक्रम करने वालों को भी आना है, तो हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल गोल्ड के लिए समय निकालने के लिए.
1: थैंक यू सो मच.
2: हाँ बिल्कुल, और इस यात्रा यहीं पे हम लोग रुकते हैं.
0: फिलहाल जो रैली है वो अभी रोक दी जाएगी.
1: जरूर जरूर. मैं एक दो लाइंस बोल के जरूर एंड करना चाहूंगी. वो मेरी फेवरेट लाइंस है. तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा. तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा. तेरे सामने आसमान और भी है, इन सितारों के आगे जहान और भी है, अभी तेरे इम्तिहान और भी है.
0: क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर. तो परवाज है काम हमारा. महिलाएं जो है जब अपने पंखों में हवा भरती है तो भाई कहीं भी उड़ सकती है. आकाश बहुत बड़ा है
1: जी.
0: तो इस आकाश में उड़े, विचरे, अपने कल्पनाओं में रंग भरे और ये सोचे कि हम जिंदगी की हर मुश्किल को सॉल्व कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकते हैं. मन में हिम्मत होनी चाहिए. तो जैसा कि गरिमा ने कहा कि परवाज है काम तेरा, यही काम है हमारा. और इसी के साथ हम समेटते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान. हम बता दें आज हमारे साथ इंदु और मेरे साथ स्टूडियो में थी गरिमा अवतार, कार रैली ड्राइवर.
2: नमस्कार.
0: नमस्कार.
1: नमस्कार.
3: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

12:11 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आप ही के अपने उस कार्यक्रम में जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जो आता है केवल और केवल रविवार, यानी कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। और आज आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार दोस्तों। आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं वो एक रोमांटिक हिंदी ड्रामा फिल्म है। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम है हम जोली। हम जोली फिल्म का निर्माण किया प्रसन्न कपूर ने तिरुपति पिक्चर्स बैनर के तहत और निर्देशन किया TR रमन्ना ने। फिल्म में जितेंद्र, लीना चंद्रवरकर और महमूद मुख्य भूमिकाओं में रहे। इसका संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। फिल्म की कहानी लिखी पंडित मुखराम शर्मा और रामायण तिवारी ने और इसके बाद इसका एडिटर थे इस फिल्म के MS मनी। छायांकन यानी कैमरा पक्षवार संभाला MA रहमान ने और यह फिल्म म्यूजिकल फिल्म रही और लोगों ने इस फिल्म को बेहद बेहद पसंद किया। फिल्म में जितेंद्र ने भूमिका निभाई राजेश की। रानी बाला के किरदार में थी लीना चंद्रवरकर। प्राण थे गोपाल दास के रोल में। शशिकला थी श्यामा के किरदार में। महमूद ने एक नहीं दो नहीं बल्कि ट्रिपल रोल निभाया इस फिल्म में, शिवराम, बलराम और परशुराम, यानी दादा, पिता और पोता तीनों किरदार निभाए महमूद ने और सबका दिल भी जीता। शोभा के किरदार में थी अरुणा ईरानी, शोभा यानी राजेश की बहन, और रूपा के पिता का किरदार निभाया था नाजिर हुसैन ने। मनमोहन का किरदार निभाया मनमोहन ने ही। इसके अलावा छोटे छोटे किरदारों में थे CS दुबे, DK सप्रू, पूर्णिमा, गीता बैंकर और मुमताज थी गेस्ट अपीरियंस में। फिल्म की कहानी शुरू होती है गांव से, गांव ऐसा जहां पर श्यामा रहती है। श्यामा जो गोपाल दास से बेहद प्यार करती है और गोपाल दास भी श्यामा को चाहता है, लेकिन गोपाल दास दरअसल एक लालची किस्म का इंसान है। चाहता है कि रातों रात वो कुछ ऐसा हो जाए कि वो अमीर बन जाए और इसीलिए वो श्यामा को सब्ज बाग दिखाता रहता है कि हम जल्दी ही शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बंबई जाना होगा और खूब सारा पैसा कमाना होगा, उसके बाद मैं आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसे ही एक रोज वो एक शादी में जाता है जहां पर रूपा नाम की दुल्हन सजी सवरी बैठी है मंडप पर, लेकिन दूल्हा जैसे ही उसका चेहरा देखता है शादी से इनकार कर देता है क्योंकि रूपा थोड़ी सी सांवले रंग की है और उसको चाहिए गोरी दुल्हन, तो लिहाजा ये शादी तोड़ दी जाती है। रूपा के पिता को सदमा सा लगता है और उसी वक्त गोपाल दास मौके की नजाकत को भांपते हुए कि एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, क्यों ना इसे फांस लिया जाए, दाना डाला जाए, और भरी महफिल में कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ थामने के लिए तैयार हूं, एक अच्छे खानदान से हूं, पढ़ा लिखा नौजवान हूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अब डूबते को तो आखिर तिनके का सहारा होता है दोस्तों। रूपा के पिता खुशी खुशी रूपा की सहमति के बाद गोपाल दास के हाथ में उसका हाथ दे देते हैं। उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे गोपाल दास की दरअसल मंशा है क्या। दिन बीतते हैं, रूपा के पिता इस दुनिया से अलविदा कह जाते हैं और उसके बाद अत्याचारों का सिलसिला शुरू।

होता है रूपा पर गोपालदास का। इसी बीच रानी का जन्म हो जाता है। गोपालदास श्यामा को फिर भी सब्जबाग दिखाता रहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा। इसी रोज श्यामा जब तंग आ जाती है उसके वादों से और देखती है कि वो अपने वादे नहीं निभा रहा, तो उसको खत लिखती है कि मैं जल्दी ही शहर आ रही हूं, और अगर तुमने अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी ना की तो सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी कि तुमने मुझे किस तरह बरसों तक वरकलाया। गोपालदास सोचता है कि अब क्या करे, किसी तरह से अपनी धर्मपत्नी रूपा और अपनी बेटी को एक नाव में बिठाकर गांव भेजने की तैयारी करता है और कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन रूपा को नहीं पता कि इसके पीछे गोपालदास की मंशा आखिर क्या है। रास्ते में गोपालदास के आदमी रूपा और रानी को नदी में डुबोकर मारने की कोशिश करते हैं। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, रानी बच जाती है। और इधर गोपालदास ये समझता है कि दोनों मर गए हैं और वो श्यामा से शादी कर लेता है। लेकिन इसी बीच गांव का एक मछुआरा रानी को लेकर पहुंचता है गले में लॉकेट देखकर गोपाल के पास और कहता है ये आपकी बेटी है, डूब रही थी, मैंने इसे बचा लिया। गोपालदास अब करे तो करे क्या, वो उस आदमी को पैसे देता है और कहता है कि तुम इसकी परवरिश करो और मैं तुम्हें हर महीने पैसा देता रहूंगा, किसी को ये बात कहना नहीं। लेकिन खून तो आखिर खून ही है। एक समय ऐसा आता है कि गोपालदास को अपने किए का पछतावा भी होता है और वो रानी के प्रति अपने बाप का फर्ज निभाने के लिए उससे मिलता भी रहता है और उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए गोपालदास उसे डाल देता है एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर रानी बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद हर चीज में अव्वल, पढ़ाई में, खेलकूद में, और मानो कॉलेज की तो वो चहेती बन जाती है। और इस बीच गोपालदास अपनी बेटी से मिलने उसके कॉलेज भी पहुंचता है और वहां पर रानी अपनी सहेलियों के साथ छुट्टियां शुरू होने से पहले आखिरी दिन अपने कॉलेज का आनंद ले रही है।

बच्चे हाथ।

इन्हीं खेल कूद के साथ ही सभी लड़कियां कॉलेज को अलविदा कहने की तैयारी में हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। और रानी को इंतजार है अपने पिता यानी गोपाल दास का। और इसी बीच उसकी सबसे पक्की सहेली यानी शोभा का भाई आता है राजेश अपनी बहन को लेने के लिए, और कमरे में घुसता है शोभा के, और गलती से पीछे से देखकर वो रानी को शोभा समझ लेता है, उसके मजाक भी करता है। तब उसे पता चलता है कि दरअसल ये शोभा नहीं रानी है, और रानी उसे गुस्सा करती है। और इस बीच अभी दोनों की नोकझोंक चल ही रही होती है कि शोभा वहां आती है और बताती है कि ये मेरे भैया हैं और ये मेरी सबसे पक्की सहेली है। राजेश जो एकटक रानी को देखता ही जा रहा है, मानो पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठा। दोनों की आंखें चार होती हैं। शोभा इस बात को भांप लेती है, और इसी बीच रानी शोभा से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने स्टेशन नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे अपने पिता का इंतजार है, वो जल्दी ही यहां पर आने वाले हैं। राजेश और शोभा वहां से चले जाते हैं और गोपाल दास आते हैं रानी को लेने के लिए, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर नहीं रखूंगा, अलग रखूंगा। तब वो पूछती है ऐसा क्यों, अब तक मैं आपसे दूर थी, अब क्यों नहीं मैं आपके साथ रह सकती। तब गोपाल दास बोलते हैं कि तुम्हारी मां के देहांत के बाद मैंने दूसरा विवाह कर लिया था, और उसे यानी श्यामा को तुम्हारे बारे में मैंने अभी तक

बताया नहीं है। तुम चिंता ना करो, समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। तब एक अलग मकान में रानी के लिए इंतजाम करते हैं वो रहने का। रानी कहती है अपने पिता से कि मैं सारा दिन घर में बैठी बोर हो जाती हूं, मुझे अपने साथ रख लीजिए। तब गोपालदास कहते हैं वो तो अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस में मेरी कंपनी में बतौर सेक्रेटरी मेरी बनकर काम करो, लेकिन वहां किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। वहां तुम्हारा मैं बॉस हूंगा और तुम मेरी सेक्रेटरी। रानी इस बात को मान लेती है और वहां पर काम करने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकातें होती हैं उसी शहर में राजेश से। राजेश और रानी दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लग गए हैं, मानो प्यार का बीज अंकुरित होने लग गया है।

0: राजेश को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई हैं। रानी का प्यार पाने के बाद उसे लगता नहीं है कि हमारे बीच कोई आ भी पाएगा। क्यों? क्योंकि अमीरी गरीबी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राजेश के पिता भी इस शहर के एक जाने माने व्यापारी हैं, धनी इंसान हैं। लेकिन राजेश को ये नहीं पता कि उसकी बहन शोभा और उसके ऊपर एक पहाड़ सा टूटने वाला है, जो कि कभी दोनों बहन भाई ने सोचा भी नहीं था। वो होता यूं है कि घर में पहुंचते हैं दोनों बहन भाई तो वहां पर देखते हैं अपने पिता के साथ एक पंडित को बैठे हुए। शादी का चर्चा हो रही है, शादी की बात चल रही है। राजेश समझता है कि शोभा की शादी की बात हो रही है और शोभा समझती है कि राजेश के लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है। लेकिन दोनों पर मानो घड़ों पानी पड़ जाता है उस समय जब उसके पिता कहते हैं कि मैं अपनी शादी की सोच रहा हूं। पिता की शादी, और वो भी इस उम्र में। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी? जिस उम्र में इंसान को नाती पोतों के साथ खेलना चाहिए, उस उम्र में वो घोड़ी चढ़ने की बात कर रहा है। दोनों बहन भाई अपने पिता को समझाते हैं, लेकिन पिता जो हैं टस से मस नहीं होते अपने फैसले से, और कहते हैं कि तुम अगर मेरे फैसले में मेरे साथ नहीं हो तो इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हें बेदखल करता हूं अपनी जमीन जायदाद से। राजेश अपनी बहन का हाथ थाम कर निकल पड़ता है सड़कों पर। अब मुफलिसी का आलम है, बेरोजगार बेघर राजेश आखिर कहां जाए? तभी उसकी मुलाकात होती है शिवराम नाम के एक आदमी से। शिवराम बेहद दिलचस्प इंसान, बेहद मस्त मौला इंसान, दिल का बेहद साफ। राजेश के साथ दोस्ती होने के बाद शिवराम उसको नौकरी दिलाने में भरपूर मदद करता है। और एक बार फिर रानी से मुलाकात होती है और रानी उसे अपने पिता की कंपनी में ही नौकरी दिलवा देती है। शिवराम के घर में ही राजेश और शोभा बतौर किराएदार रहने लगते हैं। और इसी बीच धीरे धीरे नजदीकियां पनपती हैं शिवराम और शोभा के बीच में भी। और उधर रानी के दफ्तर में, यानी पिता के दफ्तर में जब राजेश काम कर रहा है, तो वहां पर मनमोहन नाम का एक आदमी है जो रिश्तेदार है गोपाल दास का, गांव का। लेकिन उसे राजेश फूटी आंख नहीं सुहाता, उसकी पूरी नजर है रानी पर। उसके जरिए वो गोपाल दास की तमाम जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। और इस बीच एक क्लब में मनमोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वहां पर जब पहुंचती है रानी राजेश शिवराम और शोभा के साथ, वहां पर मनमोहन अपने दोस्तों के साथ राजेश की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। उसे नीचा दिखाना है कि तुम मेरे मुलाजिम हो, मेरे नौकर हो, तुम यहां पर मेरे सामने बैठ नहीं सकते। बात बढ़ती है और तब खेल ही खेल में शिवराम और राजेश सिखाते हैं सबक मनमोहन और उसके दोस्तों को।
1: चल शुरू हो जा।
2: चल शुरू हो जा। 1 2

0: लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
1: फिर
0: 1 2
2: चल शुरू हो जा, चला मुक्का जमा थप्पड़ लगा टक्कर।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को

0: माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
0: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निःशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
0: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
0: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
0: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

12:42 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम वो जो एक फिल्म नजदीक आते जा रहे हैं, सुंदर सुखद भविष्य के सपने बुनने लग गए हैं।

0: फिर एक समय ऐसा भी आता है जब राजेश को शोभा और शिवराम की नजदीकों का पता चलता है। तब राजेश एक अच्छा भाई होने के नाते अपना फर्ज निभाता है और शोभा और शिवराम की शादी का प्रस्ताव शिवराम के पिता और दादा के सामने रखता है और साथ ही कहता है कि इन दोनों की शादी होते ही मैं इस घर से चला जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी बहन के घर में नहीं रहूंगा। शिवराम के पिता और दादा आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से विवाह होता है शिवराम और शोभा का। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शोभा शिवराम के ऊपर शक करने लगती है। हालांकि वो एक चुहलबाजी होती है, एक शरारत होती है, बाद में उसको एहसास होता है। दरअसल होता यह है कि शिवराम की एक पड़ोसन है लिली, जो अक्सर शिवराम से आगे पीछे कभी भी आते जाते शिवराम से मदद देती है अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करवाने के लिए, और शिवराम भी बिना किसी बुरी मंशा के उसकी मदद करता है। लेकिन शोभा को कहीं ना कहीं खटका लगता है कि शिवराम उससे दूरी बना रहा है और कहीं वो लिली के साथ प्रेम प्रसंग तो नहीं रच रहा। लिहाजा वो शिवराम के पिता और दादा दोनों से रोते हुए शिकायत करती है और यहां पर शिवराम अपनी सफाई दे रहा है। और दोस्तों यहां पे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक गीत फिल्माया गया है। महमूद ने ट्रिपल रोल इस गीत में अदा किया है और बखूबी अदा की है। पिता, पुत्र और पोते का किरदार तीनों निभाए हैं महमूद ने।
1: हरिओम हरिओम हरिओम।

और प्रेम का नाटक होता है। उस घर को बस राम बचाए।

तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो

0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो
0: यू, मैं क्या बोलूं जी?
2: यू टेल मी
1: आई डोंट नो
0: यू टेल मी, मैं क्या बोलूं जी?
2: ओ बाप
3: शिवराम और शोभा की गलतफहमियां तो दूर हो गई, घर में एक बार फिर खुशियां आ गई, लेकिन रानी की जिंदगी में जो गलतफहमी आई है उसका क्या? दरअसल मनमोहन जो है वो रानी के पिता के मन में राजेश के प्रति बेहद जहर भर देता है कि रानी उसको चाहती है और वो किसी भी लाए तरह से लायक नहीं है रानी के। लिहाजा रानी के पिता इल्तजा करते हैं राजेश से, विनती करते हैं कि वो रानी की जिंदगी से निकल जाए, क्योंकि श्यामा जो है दिन रात घर में कलेश कर रही है कि मनमोहन की शादी होगी तो रानी से होगी। पहले तो राजेश मानता नहीं, लेकिन जब हाथ जोड़कर गोपाल दास विनती करते हैं कि अगर तुम्हारा पिता तुम्हारे से इस तरह भीख मांगते तो तुम क्या कहते, तब राजेश दिल पर पत्थर रखकर रानी की जिंदगी से दूर होने की बात कहता है, वादा करता है, वचन देता है, लेकिन जाए तो जाए कैसे? तब अपने आप को अय्याश साबित करने के लिए, बेवफा साबित करने के लिए राजेश एक झूठा नाटक करता है। क्लब

इसके बाद मनमोहन स्वांग रचता है और मजबूर कर देता है गोपाल दास को और श्यामा को कि रानी के साथ उसकी सगाई हो और शादी हो। वो दिन भी आ जाता है, लेकिन इसी बीच गोपाल दास को एहसास होता है कि रानी की वो जिंदगी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज

0: 1:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज मधुर तरानों का कार्यक्रम दिल ढूंढता है। वो गीत जो कल भी सदाबहार थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसे ही चुनिंदा गीतों को लेकर हाजिर हूं मैं आशीष, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हसरत जयपुरी के लिखे उस गीत से जिसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। फिल्म है आंखों आंखों में।
1: आंखों आंखों में

दोस्तों अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है खेल खेल में, गायक कलाकार आशा भोसले और किशोर कुमार, एक बार फिर से संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार गुलशन बावरा।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधा रोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधा रोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधा रोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए। माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधा रोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधा रोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधा रोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

1:43 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज मधुर तरानों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम दिल ढूंढता है। और घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही कि हम और ज्यादा आपके साथ गुफ्तगू कर सके, लेकिन जाते जाते एक बेहतरीन यादगार गीत आपकी नजर करते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी। और दोस्तों, ये गीत है फिल्म घर से, गायक कलाकार लता मंगेशकर और गीतकार गुलजार। और जहां गुलजार की लेखनी हो वहां पर पंचम दा के सुरों का मिलना लाजमी सा हो जाता है। जी हां, संगीतकार आरडी वर्मन, फिल्म घर। आनंद दीजिए इस गीत का और आशीष को दीजिए इजाजत। और इस गीत के बाद आप सुनिएगा संस्कृत साप्ताहिकी।

0: आये सताम विभूतयः, अर्थात चंदन के पेड़ की जड़ों में सांप रहते हैं, उसके शिखर पर पक्षी बसेरा करते हैं, उसकी शाखाओं पर बंदर खेलते हैं और उसके फूलों पर भौरे मंडराते हैं। सचमुच चंदन का पेड़ कितना अद्भुत है, उसका हर हिस्सा दूसरों के काम आता है। ठीक इसी तरह सज्जन और अच्छे लोगों का जीवन भी सिर्फ दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है।
1: धन्यवादाः भवत्यै। इदानीं प्रसंग प्रभागस्य अवसरो विद्यते, अतः सुमधुरैः शब्दवारिभिः अवसरमिमं सार्थकयति कृष्णप्रसादोपाध्यायः।
2: एकश्लोकी

0: साधु सुमधुरं प्रस्तवनम्। अधुना भाषा ज्ञानं विना संस्कृते निगूढं तत्त्वं नैवाधिगन्तुं शक्यते इति कारणात् कैश्चिदनुवाद वाक्यैः भाषां शिक्षयति बहुभाषाविद् जतिन शर्मा।
1: प्रथमं वाक्यमस्ति, भारत जापानयोः संबंधः केवलं व्यापारिकः नास्ति, अपितु अयं सुदृढ सांस्कृतिक वैचारिक सेतुना बद्धः अस्ति। हिंदी भाषा में, भारत और जापान की दोस्ती सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर टिकी है। मैथिली भाषा में, भारत आ जापानक दोस्ती सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि गहीर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य पर टिकल आइच। द्वितीयं वाक्यमस्ति, भगवतः बुद्धस्य शांति संदेशः द्वयोः देशयोः हृदयं पुरातन कालादेव योजयति। हिंदी भाषा में, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और विचार दोनों देशों को सदियों से एक अटूट सूत्र में बांधते हैं। मैथिली भाषा में, भगवान बुद्ध का शिक्षा और विचार दोनों देश के सदियों से एकटा अटूट सूत्र में बांधित आबि रहल आइछ। तृतीयं वाक्यमस्ति, बुलेट ट्रेन परियोजना भारतस्य आधुनिकतायाः तथा च जापानस्य प्रविधि कौशलस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति। हिंदी भाषा में, बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की आधुनिकता और जापान के तकनीकी कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैथिली भाषा में, बुलेट ट्रेन परियोजना भारतक आधुनिकता और जापानक तकनीकी कौशलक उत्कृष्ट उदाहरण आइछ। चतुर्थम वाक्यमस्ति, सामुद्रिक सुरक्षायां तथा च हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांति स्थापनाय उभौ देशौ मिलित्वा कार्यं कुरुतः। हिंदी भाषा में, सामुद्रिक सुरक्षा में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए दोनों देश मिलकर कार्य करते हैं। मैथिली भाषा में, सामुद्रिक सुरक्षा आ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति का स्थापना लेल दोनों देश

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सरकार ने आबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने मगरबी एशिया महाजाराई में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजिबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरून मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई LNG अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। आबनाए हुरमुज के रास्ते LNG की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वजीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मस्कूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम MGNREGA की जगह विकसित भारत जी राम जी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि MGNREGA पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी राम जी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ

0: एक दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इक्तसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है, इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरैन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मजकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में

छत्तीसगढ़ की मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलसुबह 3:15 के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरसर आवाज, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

0: भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिरां कद्र खिदमात के एतराफ़ में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेकर और वजीर आला विष्णु देव साय ने भी तीजन बाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायात को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके ग्रां कद्र रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजन बाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गाँव गनियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को अवाम और मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और अज़्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। ख्वातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहार हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। और छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, This is Akashvani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following resumption of LNG shipments through Strait of Hormuz. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan releases 25,000 crore rupees assistance to states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act. Centre orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh Tijan Bai passes away. President, Vice President and Prime Minister express grief over her demise. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today. And in ICC Women's T20 World Cup Finals, England to face Australia.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का

0: रेड अलर्ट और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी

0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
1: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
5: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
6: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
4: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जीवन संबल आज प्रस्तुत है श्री टी एम शंकरन के तमिल नाटक ओरू पुल्लान कुजल तुणे यागीरात का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक जीवन संबल।

कि आप लोगों को मालूम है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री कन्नन जी को भारत सरकार की ओर से कर्नाटक संगीत का उच्चतम पुरस्कार मिला है। मुझसे पहले अनेक लोगों ने बधाई दे चुके हैं। तमिलनाडु कला रसिक जनों की ओर से और सभा सचिव होने के नाते मैं श्री कन्नन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभा में बैठे हुए सदस्यों को और सभा में जगह ना मिलने के कारण बाहर खड़े हुए रसिक जनों को धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूं।

0: नमस्कार कर्णन जी।
1: नमस्कार।
0: आज आपका बांसुरी वादन बहुत अच्छा और मधुर था, मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें।
1: धन्यवाद। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं?
0: मैं पत्रकार हूँ
1: जी।
0: नेत्रहीन होने पर भी आपको सरकार की ओर से सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ।
1: धन्यवाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पुरस्कार मुझे नहीं मिला।
0: तो फिर?
1: ये पुरस्कार जो बांसुरी मेरे हाथ में है उसको मिला है। यही मेरे लिए सचमुच जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
0: जी, आपका कहना?
1: जी हाँ, ये बांसुरी ही मेरी साथी है। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरे लिए यही सब कुछ है। मेरे जीवन का आधार है ये बांसुरी, और इसके जरिए बहती हुई हवा मेरी सांस।
0: जी, आपके कहने का मतलब कुछ अलग है।
1: जी हाँ, इस समुदाय में सभी लोग मुझे अनोखा मानते थे। समुदाय ही क्यों, घर में भी यही हालत थी।
0: ये बांसुरी कुछ कहती है, लगता है आपके मन में कुछ छुपा है।
1: सच है पत्रकार, आप उसे जानने पर ही मुझे ठीक से पहचान पाएंगे। आपके पास समय है?
0: अब मुझे पूरी फुर्सत है। आपके पांडित्य से तो सब भली भांति परिचित है, लेकिन मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहूंगा।
1: खुशी से। आप भी बैठिए ना।
0: जी हाँ,
1: ताकि आराम से बातें हो सके। मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी, और बड़ी माँ
2: अजी, सुनते हो? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं देता?
3: अब क्या हो गया मीनाक्षी? अच्छा कहो, पर धीरे से, क्या बात है?
2: धीरे से, हाय हाय, बातों की क्या कमी थोड़ी है?
3: अरे कौन सी कमी, सीधी बात पर आओ।
2: तुम्हारे लाडले बेटे कन्नन ने
3: हमारा पुत्र कहो मीनाक्षी।
2: हमारा कैसे, वो मेरी कोख से तो पैदा हुआ नहीं।
3: अरे तुम्हारी गोद न भरने के कारण ही तो मैंने दूसरी शादी भाग्यम से की थी। वो भाग्यवती थी जो कन्नन को जन्म देकर चल
2: बसी। हाँ, जो चल बसी वो भाग्यवती थी, मैं जीवित हूँ बदकिस्मत।
3: अरे क्यों अपने आप को कोसती है पगली, क्या बात है मीनाक्षी?
2: देखो मैं और सहन नहीं कर सकती इस कन्नन को। हाँ।
3: ऐसा मत कहो ऐसा, वो तो जन्म से ही अंधा है, हमें उससे अच्छी तरीके से।
2: अंधापन भगवान की देन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं।
3: भगवान ने उसे एक गुण भी तो दिया है।
2: गुण? कौन सा गुण?
3: अरे इतनी छोटी सी उम्र में वो कितनी अच्छी बांसुरी बजाता है मालूम है?
2: बांसुरी वो मेरे पास होती तो अंगीठी जलाने के काम आती।
3: अच्छा हुआ जो तुम्हारे पास नहीं है।
2: क्या कहा?
3: कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि वो तो...
2: देखो जी, तुम्हारे बेहद लाड प्यार से ही उसकी ऐसी हालत हुई है, निठल्ला कहीं का।
3: लगता है पिछले जन्म में तुम केकई हो।
2: क्या कहा तुमने?
3: नहीं नहीं, उसके पड़ोस में रह रही होगी।
2: इन फिजूल बातों से कुछ नहीं होगा, आज किसी ना किसी तरह फैसला होना ही चाहिए।
3: हाँ। क्या कहना चाहती हो मीनाक्षी?
2: मैं इस घर में वो रहेगा या मैं?
3: क्या कह रही हो तुम?
2: घर में रहकर अगर बर्तन वगैरह साफ करने, कपड़े धोने में मेरी मदद करे तो कितना अच्छा हो। भैंसे की तरह रिष्ट पिष्ट हो गया है, काम का ना काज का, ढाई सेरा नाच का, हमेशा उस बांस के टुकड़े को लिए

0: बांस का टुकड़ा तो उसका कल रोटी देगा नहीं।
1: अरे उसे बांसुरी से प्रेम है, ये तो ईश्वर की कृपा से उसे मिला हुआ एक वरदान है।
0: निठल्ले बैठकर खाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ये घर है कोई सराय नहीं है।
1: मीनाक्षी
0: देखो जी, आज तो फैसला होकर ही रहेगा। यदि ये लड़का बर्तन वगैरह साफ करके नेक नियति से यहाँ रहता है तो रहे, और अगर आपको बेटा चाहिए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ कह दे रही हूँ।
2: बड़ी माँ, बड़ी माँ।
0: हाँ
2: बात है कि
0: क्या है, कहाँ से आ रहे हो? दिन भर कहीं भटक कर सिर्फ खाने के लिए यहाँ आ जाते हो?
2: मैं तो बड़ी माँ, पिताजी।
1: क्या बात है बेटे?
2: पिताजी मैंने छत पर बांसुरी रखी थी, वो अब।
0: अरे रे रे रे, अब कभी बांसुरी का नाम लियो तो तेरी जीभ जला दूंगी, खबरदार।
1: मीनाक्षी अरे ऐसा मत कहो।
2: पिताजी मेरी बांसुरी गुम हो गई है, वो इधर नहीं है।
1: कहाँ रखी थी बेटे?
2: इधर ही, इधर एक छत है ना।
1: हाँ।
2: उसी पर।
1: हाँ हाँ।
2: इसमें रखी थी।
0: उसे मैंने ही दूसरी जगह पहुंचा दिया है।
1: किधर?
0: चूल्हे में, वो अब तक जलकर राख हो गई होगी।
2: ये तुमने क्या किया मेरी बांसुरी को? तुमने चूल्हे में
0: नहीं, अब चिल्लाओ तो चमड़ी उधेड़ दूंगी।
1: मीनाक्षी
0: अब बांसुरी की बात छोड़कर खाने के लिए आते हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं खाने के लिए जा रही हूँ।
2: हाँ। मेरी बांसुरी, मेरी बांसुरी। पिताजी।
1: हाँ बेटे।
2: मेरी बांसुरी की हालत देखिए क्या कर दिया है।
1: करना करना नहीं बेटे, रो नहीं बेटा, रो नहीं। अरे तुम्हारे लिए मैं एक और बांसुरी खरीद दूंगा।
2: सच? जरूर ला देंगे ना?
1: हाँ, जरूर ला कर दूंगा बेटे। कर्णन बेटे, कर्णन।
2: हाँ पिताजी।
1: बेटे अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत सताएगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि।
2: इसलिए क्या पिताजी?
1: कि मैं तुम्हें तुम्हें कहीं किसी अनाथ आश्रम में छोड़ने की सोच रहा हूँ।
2: पिताजी।
1: हाँ बेटे, ईश्वर मेरी सहायता करे।
2: हाँ पिताजी।
1: कर्णन।
2: पिताजी।
1: बेटे
3: मेरे पिता ने बड़ी माँ से छिपाकर मुझे एक बांसुरी खरीद दी। मेरे पिता का कोई दोष नहीं, क्योंकि उनकी कोई कमाई नहीं थी। बड़ी माँ अमीर खानदान की थी, उनके धन और दया से ही हमारा जीवन चलता था। जब मुझ पर अत्यंत प्यार दिखाने वाले मेरे पिताजी ने ही मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने का निश्चय कर लिया तो मुझसे वहां नहीं रुका गया। इसलिए उनको मन ही मन प्रणाम करके उसी रात किसी को बताए बिना मैंने घर छोड़ दिया।
4: फिर उस रात आप कहां गए?
3: अरे साहब, दिन क्या रात क्या, मेरे लिए दोनों ही एक हैं। अच्छा हुआ कि एक किसान उस समय बैलगाड़ी में आ रहा था। मुझे देखते ही गाड़ी रोककर उसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। मैंने उससे मदुरई जाने वाली गाड़ी में छोड़ने की प्रार्थना की और उसने मुझे गाड़ी में बिठा दिया। मदुरई पहुंचकर प्लेटफॉर्म पर आते ही कुछ नहीं सूझा, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए स्टेशन के बाहर आकर फुटपाथ पर खड़े होकर अपनी मन की शांति के लिए बांसुरी बजाने लगा।

0: देखिए ये लड़का कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है।
1: अरे साहब, जहाँ योग्यता होती है वहाँ गरीबी जरूर होती है,
2: पर ईश्वर बड़ा निर्दयी है।
1: ऐसा मत कहिए।
2: तो फिर क्या है, ईश्वर ने इस लड़के को इतनी अच्छी कला दी पर आंखें नहीं दी। कितना कठोर है।
0: क्या ये सच है?
2: हाँ, इस लड़के को गौर से देखिए, अंधा है।
0: ओह,
2: न जाने किसका बच्चा है जो इस तरह मदुरई में आकर प्लेटफॉर्म के बाहर बांसुरी बजा रहा है।
1: हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए।
0: लेकिन क्या करना चाहिए?
1: अगर हम में से हर एक इसे 10-10 पैसे दे तो इसका पेट भर जाएगा।
0: हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं।
2: जी हाँ, बेकार भिखारियों को दान देने से तो इसको देना बेहतर है, बेहतर है।
0: तो भी इतना बड़ा कलाकार भीख मांग रहा है, ये देखकर जी।
1: ये भीख मांगना नहीं है, उसके पास कला है। अच्छी तरह बांसुरी बजाता है, सुनने के बाद पैसा देंगे तो उसकी कला का सम्मान होगा, दान नहीं।
0: हाँ, ये ठीक है।
2: हाँ। आइए चलें, अपना काम भी तो देखें।
3: ये भाई
4: कौन कौन है?
3: घबराओ मत भाई।
4: आप हैं कौन?
3: डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक भिखारी।
4: तुम क्या कह रहे हो?
3: हाँ भाई, मैं गली गली घूमकर भीख मांगता हूँ, तुम एक ही जगह बैठकर भीख मांगते हो, यही तो फर्क है। अरे रोते क्यों हो भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जैसे अनाथों का मैं सहायक हूँ।
4: जी जी, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, बड़ी माँ है।
3: उनके होते हुए भी तुम अनाथ हो गए, सुनने से मुझे बहुत दुख होता है।
4: मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी बड़ी माँ ही।
3: अरे होने दो भाई, सबको भूलकर मेरे साथ चलो।
4: कहाँ? इस रात में?
3: हम जैसे लोगों के लिए यहाँ एक शीतल मंडप है, चलो वहां चलकर आराम करेंगे।
4: ऐसी बात है?
3: हाँ?
4: मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा, आप ही मेरे देव समान हैं, आप ही मेरे भगवान हैं।
3: तू जानता है, मगर भगवान ये नहीं जानते, मुझे भीख मांगने वाला भिखारी बना दिया।
4: अपने दुखों और कष्टों का कारण हम ही हैं, भगवान को क्यों दोष देते
3: भाई? तुम्हें अनुभव नहीं है, चलो चलो चलो, उसके बारे में हम पीछे सोचेंगे, उठो अब।
4: चलता हूँ।
3: अरे यहाँ देखो, लोग पैसे देकर गए हैं, कुल मिलाकर कोई 20 रुपए तो होंगे।
4: आप ही देख कर उठा लीजिए। आपने कहा ये भीख है, मगर ये भीख लोगों ने मुझे नहीं दी।
3: तो
4: ये बांसुरी है ना?
3: हाँ।
4: इसी को मिली है ये बांसुरी। इस बांसुरी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं।
3: सुनो भाई, इस बांसुरी को तुम अपने पास रख लो और ये सारे पैसे मेरे पास ही रहने दो। तुम्हें खाना खिलाने का, तुम्हारी रक्षा करने का भार अब मेरे ऊपर रहा, ठीक है ना?
4: ठीक है जी, आपको मरते दम तक नहीं भूलूंगा।
3: अरे भाई देर हो रही है, जल्दी करो, नहीं तो रैन बसेरे में जगह नहीं मिलेगी। चलो चलो,
4: चलिए
3: इधर से आओ, चलो।

0: ड्राइवर, गाड़ी रोको।
1: जी साहब।
0: देखो उस मंडप के बाहर एक लड़का बैठा रो रहा है। अरे भाई क्यों रो रहे हो?
2: अंधा हूं ना, सब मुझे धोखा देते हैं, सब धोखा देते हैं।
0: क्या तुम वही लड़के नहीं जो स्टेशन के बाहर बांसुरी बजाते हो?
2: जी हाँ मैं वही लड़का हूँ।
0: पर रो क्यों रहे हो, बात क्या है?
2: एक भिखारी मुझे ये कहकर रहा था कि वो मेरी देखभाल करेगा,
0: फिर
2: मेरी बांसुरी बजाने से मिले सब पैसों को वो रोज अपने पास रख लेता। ज्यादा रुपया इकट्ठा होने पर मुझे अकेला छोड़कर अचानक कहीं भाग गया।
0: अरे भाई ये दुनिया बहुत बुरी है, इस दुनिया में दूसरों को समझना बहुत ही मुश्किल है।
2: ये आप क्या कह रहे हैं, मुझ जैसे अंधे लोग किसी को कैसे समझ सकते हैं? मेरे लिए ये सब कैसे संभव है?
0: हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? इस बालक को वेणुगान की कला देकर आंखों की रोशनी ले ली।
2: आप कौन है?
0: तुम्हारी बांसुरी सुनने वालों में मैं भी एक हूँ।
2: जी
0: तुम्हारा परम रसिक हूँ।
2: इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कहिए, सच बताइए आप हैं कौन?
0: मैं भी एक बांसुरी वादक हूँ, मेरा नाम रामानुजम है।
2: आप बांसुरी वादक विद्वान रामानुजम हैं? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप विद्वान रामानुजम हैं। आप कहाँ और मैं?
0: तुम अपनी कला के बारे में जानते ही नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े विद्वान हो।
2: नहीं नहीं,
0: ये दुनिया मुझे पहचान चुकी है और तुम्हें अभी तक पहचानती नहीं। हम दोनों में बस यही फर्क है।
2: ये आप क्या कह रहे हैं, रेडियो में आपका बांसुरी वादन सुन सुनकर ही मैंने बांसुरी बजाना सीखा है। आप मेरे गुरु हैं, आपका वेणु गान ही।
0: सुनो
2: जी,
0: मैं तुमसे एक भीख मांगना चाहता हूँ, दोगे?
2: भीख? आप मुझसे मेरे पास है ही क्या?
0: मेरे पास है ही क्या, ऐसा कहने का मन तो तुम्हारे पास है ना? इससे बढ़कर इस संसार में और क्या बड़ी चीज है?
2: कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
0: तुमको अभी मेरे साथ चलना होगा।
2: जी।
0: और हमेशा मेरे साथ ही बांसुरी बजानी होगी। तुम्हारे पांव की रज मेरे दरवाजे पर रहे, यही मैं तुमसे मांगता हूं।
2: गुरुजी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे पांव क्यों छू रहे हो? उठो उठो उठो, आओ आओ मेरे साथ चलो।
1: हाँ जी,
0: मेरी गाड़ी में बैठकर चलो। आओ
1: जी
0: ड्राइवर, चलो।
1: जी साहब।

0: आप सब लोगों ने मेरा बांसुरी वादन मंत्रमुग्ध होकर सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। आज के बाद मैं इस बांसुरी का स्पर्श तक नहीं करूंगा।
1: बांसुरी का स्पर्श नहीं?
0: शांत, कृपया शांत हो जाएं, शांत। देखिए, मेरी उम्र अब ढल गई है, इसलिए इस संगीत की दुनिया से संन्यास लेना चाहता हूं। ये कन्नन है, कन्नन मेरा ही शिष्य है, आगे से यही बांसुरी बजाएगा। मुझ संतानहीन का ये कन्नन ही पुत्र है। मैं चाहता हूं कि संगीत की दुनिया कन्नन को स्वीकारे और सम्मानित करे। मेरी यही अंतिम इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे ये देखिए कौन आया है। हमारा बेटा कर्णन।
1: कहाँ है?
0: कर्णन राजा मेरे लाल।
2: बड़ी माँ, पिताजी, मैं आप दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
1: ठीक रहो, ठीक रहो।
2: मुझे आशीर्वाद दीजिए।
0: खुश रहो बेटे, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कम नहीं हुआ।
1: चिरंजीव रहो बेटा, चिरंजीव रहो, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। हाँ।
2: पिताजी, बड़ी माँ, क्या आप दोनों जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं आपको लेने आया हूँ। जी, आप लोग मेरे साथ चल कर रहिए।
1: कर्णन जी, बेटा वो
0: अजी इधर तो आइए।
2: क्या है?
0: आपको कुछ मालूम भी है
2: क्या?
0: मदुराई के बांसुरी वादक विद्वान रामानुजम का देहांत हो गया है।
1: हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा तो था।
0: आपको तो कुछ भी नहीं, उस विद्वान की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी सारी जायदाद हमारे बेटे कर्णन को मिली है।
1: हाँ। मीनाक्षी, तुमने जबरदस्ती कर्णन को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। और अब जायदाद की सुनते ही उससे संबंध जोड़कर तुम
0: क्यों पुरानी बातों को याद दिलाते हो? जो भी हो, वो बेटा तो हमारा ही कहलाएगा।
1: हाँ, हाँ, हाँ। वो तो है।
0: वो वहाँ अकेला नहीं रहना चाहता, तो हमें इसके लिए कुछ तो करना होगा ना। अब हमारा बेटा अकेला नहीं रहना चाहता, चलिए ना इसके साथ चलें। और एक काम और कीजिए, गांव में जो मेरा भाई चेलप्पा यूं ही फिरता रहता है ना, उसे भी आने को लिखिए। वो कर्णन के साथ रहकर इसका सहायक बन सकता है। और एक खास बात और, कर्णन की उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए शीघ्र ही एक अच्छी लड़की देखकर हमें इसका विवाह करना चाहिए।
2: नहीं बड़ी माँ, उसके लिए इतनी जल्दी क्यों?
0: चुप रहो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं एक सुंदर सी लड़की की खोज करूंगी। हाँ, क्यों जी?
1: ठीक है,
2: सुंदर लड़की।
0: हाँ,
2: मैं दृष्टिहीन सुंदरता के बारे में क्या जानता हूँ बड़ी माँ?
0: बस बस कुछ नहीं बोलो, हम जिस लड़की से विवाह करने को कहते हैं उससे शादी कर लेना, बस ठीक है ना जी?
1: बिल्कुल ठीक कहती हो।
2: ठीक है बड़ी माँ,

शांति शांति शांति, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम बोलती क्यों नहीं? मुझसे शर्म आती है। क्यों? मुझ दृष्टिहीन से विवाह करने के लिए तुम कैसे सहमत हो गई? शांति, मैंने बड़ी मां से कहा था कि मेरी होने वाली पत्नी को संगीत का ज्ञान होना चाहिए। शांति शांति, तुम चुप क्यों हो? मैं ही बोले जा रहा हूं। अरे तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं कितना आतुर हूं तुम सोच नहीं सकती। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं बांसुरी पर एक राग बजाऊंगा, तुम्हें बताना होगा कि वो कौन सा राग है। ठीक है? शांति शांति शांति, क्या तुम बोल नहीं सकती? रे भगवान, तूने मुझे अंधा बनाया और अब मेरे जीवन को क्यों अंधकार में

0: पर्ची बांसुरी वादन के पीछे इतना दर्द छुपा है?
1: उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। आपने पूछा तो पता नहीं क्यों आज।
0: उसके बाद क्या हुआ सर?
1: बड़ी माँ का भाई चेलप्पा शराबी था। वो एक दिन मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते पकड़ा गया। मेरी पत्नी ये सदमा सहन नहीं कर पाई। उसने गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। चेलप्पा को जेल हो गई। मैं जीवन से विरक्त होकर आत्महत्या करने वाला था कि उसी समय मुझे पता चला कि सरकार ने मुझे अवार्ड देने का निश्चय किया है। रेगिस्तान के कोने में कहीं हरियाली दिख पड़ी, सो मैंने निश्चय किया कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा उस दिन तक जीवित रहूंगा। संगीत कला के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा। जिस बांसुरी ने सदा मेरा साथ दिया है, मैं भी अंत समय तक इसका साथ दूंगा।
0: आपने दिल खोलकर इतनी देर तक मुझसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे?
1: जी नहीं, एकांत चाहूंगा ताकि थोड़ी देर अपनी इस बांसुरी के साथ।
0: जी, प्रणाम।

0: जीवन संबल। अभी आप श्री टी एम शंकरन के तमिल नाटक ओरू पुल्लान कुजल तुणे जागीरात का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और बांसुरी वादक त्यागराज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेंद्र वर्मा, तरुण बजाज, रजनीश कुमार शर्मा, योगेश कुमार जैन, एल एन भारद्वाज, अमर अहलूवालिया, बी एल टंडन, सूर्यकांत नागर, सतीश कुमार, अरुण कुमार और अरुणा कपूर। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
2: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार

0: व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। असम के गुवाहाटी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today released the first installment mother sanction of over 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of VBG Ramji with rural development ministers of all states and union territories. He said that the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days.
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे.
3: It took 3 years for MG Narega to be implemented across the country. But I am proud of all of you. Unlike MG Narega, the Viksit Bharat Ji Ramji Yojana was rolled out nationwide on its very first day. The scheme guarantees 125 days of employment instead of 100 days. If more than 7.5 lakh crore rupees is utilized effectively over 5 years,

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में।
4: जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से, समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने

0: मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे। कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली। तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के ये शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
1: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
0: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किए जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गाँव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गाँव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन, व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारी गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। उनमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं, हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्यधारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गाँव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन

0: बल की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के पानी सड़क सब गांव-गांव तक पहुंची। उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उनने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए। और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए। इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहां की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहां जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की। और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक है, पानी की टंकियां हैं। जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है, उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं, तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे से टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा
1: जी,
0: कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारे घर पे की छत 1000 फुट के भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव-गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके। फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उतने माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल
1: जी जी,
0: वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था।

0: वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में, तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों को आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। तो ये काम समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जन भागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7,000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7,000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा, ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

लीजिए सुनिए ये फिल्मी नगमा फिल्म धर्मकर्म से। स्वर है मुकेश और साथियों का, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम रेडियो किड्स।

ना रोने की वजह होती है ना हंसने का कोई बहाना, ऐसा होता है बचपन जो खुलकर है बिताना। बचपन के दिन बहुत सुहाने होते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था बस मुझे बड़ा नहीं होना, और बड़े होने के बाद भी लगता है वापस फिर से छोटी हो जाऊं। हाँ, बचपन में ये जरूर होता था कि बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन जो खेलने का मजा था वो अपना अलग था। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो भाई इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, ऐसे में अगर हम अपना बचपन भूल जाएं तो कैसे अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं। तो बचपन को याद रखना बहुत जरूरी है, बच्चों को प्यार देना बहुत जरूरी है, और

0: यही वजह है कि हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है रेडियो किड्स, जिसमें बच्चों की खिलखिलाती मुस्कान को आप सुन पाते हैं, उनकी प्यारी बातें सुनते हैं और कितने टैलेंटेड हैं ये बच्चे भाई ये भी जानने का मौका मिलता है। आज रेडियो किड्स में हमारे कौन कौन से बच्चे आए हैं, उनमें क्या क्या टैलेंट छिपा है ये आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये तो जान लीजिए आज आपके साथ है कौन। आज आपके साथ हूँ मैं सुरति, करूंगी आपके साथ ढेर सारी बातें और बहुत सारे बच्चों की प्यार भरी बातें आज आप तक पहुंचाऊंगी। इससे पहले कि हम जानें कि बच्चे हमारे जो आज आए हैं वो कितने टैलेंटेड हैं, उनमें क्या क्या टैलेंट छुपा है, एक वेलकम तो ले लें। तो हमारे प्यारे क्यूट बच्चे अब आपका स्वागत करने वाले हैं अपने स्टाइल में, तो विद दिस 1, 2 एंड 3
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: आहा, क्या बात है भाई, हमारे क्यूट बच्चों ने एक प्यारा सा स्वागत आपका किया है। अब ये तो जान लें कि आखिरकार ये क्यूट बच्चे हैं कौन कौन, तो मैं अब सारे बच्चों से कहूंगी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हमारे सुनने वाले जान सकें कि आज कौन कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आए हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले बच्चे छोटे वाले से। सबसे पहले हाँ जी, आपका क्या नाम है बेबी?
2: राजवीर।
0: कौन सी क्लास में हो?
2: वंशी।
0: और आपकी एज क्या है?
2: 5 years।
3: मेरा नाम वियान है, मैं 7 साल का हूँ और 3rd में हूँ।
4: मेरा नाम अथर्व है, मैं 12 साल का हूँ और मैं 7th में हूँ।
5: मेरा नाम सारांश है, मैं 14 साल का हूँ और 10वीं कक्षा में हूँ।
6: मेरा नाम अर्णव है, मैं 6th क्लास में हूँ और मैं 10 साल का हूँ।
7: मेरा नाम स्वर्णिम है, मैं कक्षा 8 में हूँ और मैं 13 साल की हूँ।
8: मेरा नाम क्षितिज है, मैं 14 साल का हूँ और 10वीं कक्षा में हूँ।
9: मेरा नाम अनन्या सिंह है, मैं अभी 14 साल की हूँ और मैं अभी 10th क्लास में हूँ।
0: ओके, क्या बात है, एक बार सारे बच्चे अपने लिए जोरदार ताली बजा दे, दिल खोल के तालियां।

0: सो हमारे प्यारे क्यूट बच्चों की प्यारी प्यारी आवाजें तो आपने सुन ली, लेकिन अब बारी आ गई है ये जानने की कि आखिरकार इनका फेवरेट टॉपिक क्या है, क्योंकि हर किसी का फेवरेट टॉपिक होता है। तो हम सबसे छोटे क्यूट राजवीर से शुरू करते हैं। राजवीर, आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक है?
1: कि छोटा ही रहना।
0: छोटा रहना, राजवीर को छोटे रहना बहुत पसंद है। अब राजवीर से हटकर हम बात करते हैं अथर्व से। अथर्व, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
2: बड़ा होकर फुटबॉलर बनना।
0: बड़ा होकर फुटबॉलर बनना, अमेजिंग। अथर्व को क्या पसंद है?
3: खेलना।
0: अथर्व को खेलना बहुत पसंद है। अब बात आ गई है आगे बढ़ने की, तो आगे हमारे साथ है सारांश।
4: मेरा फेवरेट टॉपिक है क्रिकेट खेलना और गिटार प्ले करना।
0: सारांश, आप क्रिकेट खेलते भी हो?
4: यस।
0: कितना खेल?
4: स्कूल की हॉलीडेज होती हैं तो उन दिन ज्यादा खेलता हूँ।
0: ओके, और आपने कहा गिटार प्ले करना आपको पसंद है।
4: Yes.
0: कितना टाइम डिवोट करते हो आप गिटार के लिए?
4: मैक्सिमम 1 to 2 hours इन अ डे।
0: ओह वाओ। क्षितिज की बारी आ गई है। क्षितिज, आपको क्या पसंद है?
5: खाना बनाना।
0: खाना बनाना, ओ वाओ। तो सबसे ज्यादा खाने में आपको क्या बनाना पसंद है?
5: नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज।
0: अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आ गई है अर्णव की। अर्णव को क्या पसंद है?
6: मेरे को कीबोर्ड बजाना पसंद है।
0: अरे वाह। अर्णव, आप कीबोर्ड प्ले करते हो? कितना टाइम डिवोट करते हो कीबोर्ड प्ले करने में?
6: हाफ आवर एंड वन आवर।
0: अब हम आपके टैलेंट को भी देखेंगे। आप एक घंटा देते हो तो कितने टैलेंटेड हो ये भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप सबके टैलेंट को जाने, स्वर्णिम की बारी आ गई है। स्वर्णिम, आपको क्या पसंद है?
7: स्विमिंग करना और कीबोर्ड बजाना पसंद।
0: क्या बात है, स्विमिंग करना तो मुझे भी पसंद है। आप कितना स्विमिंग करते हो?
7: मैं एटलीस्ट 2 घंटे प्रैक्टिस में डालता
0: हूँ। वेरी नाइस। और कीबोर्ड कितने घंटे प्ले करते?
7: 1 घंटा।
0: 1 घंटा, दैट्स अमेजिंग। वेरी नाइस। अनन्या,
8: मैं आर्ट करती हूँ बहुत ज्यादा, तो उसी पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है।
0: लवली, तो आपने जान लिया कि हमारे बच्चों को क्या क्या पसंद है, कितने टैलेंटेड है ये। इनमें डेफिनेटली बहुत सारी स्किल्स भी है, पढ़ाई के साथ साथ एक अलग टैलेंट हर बच्चे में होता है। तो यहाँ पर भी हमारे स्किलफुल बच्चे आपके सामने हैं। इनकी स्किल्स के बारे में चलिए जानते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने क्या क्या और सीखा है, या किसमें इनकी एक्सपर्टीज है? बहुतों ने हमें बताया गिटार पसंद है, कीबोर्ड प्ले करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है। तो ऐसे में क्या क्या टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर भरा है, उस टैलेंट को सिर्फ जानना नहीं है, अब हम सुनेंगे भी, आपको सुनाएंगे भी।

अमेजिंग, ब्यूटीफुल, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। लवली परफॉर्मेंस, क्या बात है, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस बाय आर चिल्ड्रन। तो ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था जो हमने सुना और बहुत ही ब्यूटीफुली बच्चों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए। तो ये तो शुरुआत थी, कहते हैं ना, तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अभी बहुत सारे गाने सुनने बाकी है। बच्चों के टैलेंट को हम सुन रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं।

बचपन बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुहाना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लवली, और ऐसे में हम इन बच्चों की प्यारी प्यारी सी परफॉर्मेंसेस का आनंद ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस की ओर।

तो चलते चलते इनके प्यारे गीत याद रखना, इनकी प्यारी बातें याद रखना और साथ ही इनकी प्रतिभा को भी याद रखना। ये हमारे रेडियो किड्स हैं और हमारे रेडियो किड्स ने जो अपने जलवे दिखाए हैं, ये जलवे हमेशा याद रखने वाले हैं। आई एम श्योर आप

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। इसमें बाल प्रतिभागी थे राजवीर, विहान, अथर्व, सारांश, अर्णव, स्वर्णिम, क्षितिज और अनन्या। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्वरती जिंदल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तकनपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं, जिनमें 34 पुरुष

0: और 15 महिलाएं हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए डेटा आधारित स्केलेबल प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों में अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती पर श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. The government has withdrawn emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. The monsoon session of Parliament will commence from 20th of this month and continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said the government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to abusive material. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. The government is reviewing whether the platform has complied with India's intermediary safety guidelines. The Indian Council of Medical Research, ICMR's flagship initiative, ICMR Minds, has won gold medal at National Awards for e-governance 2026. The award was presented by Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh. The Ministry of Health and Family Welfare informed that ICMR Minds is an implementation research study on the integration of screening and management of mental and substance use disorders with other non-communicable diseases. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first

श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्मी तराना, फिल्म चुपके चुपके से। स्वर है लता मंगेशकर का और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे, तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: लीजिए सुनिए अगला नगमा, फिल्म परख से लता जी की आवाज में।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज, योर अल्टीमेट गेटवे टू करियर सक्सेस। आई एम लूसी गैब्रियल एंड आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स टू हेल्प यू नेविगेट द कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। We begin with the National Company Law Tribunal has invited applications to fill various existing and future vacancies on deputation or absorption basis across its benches nationwide. The recruitment covers posts such as Joint Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Programmer, Court Officer, Private Secretary, Senior Legal Assistant, Assistant Stenographer Grade 2, Personal Assistant, Cashier, Record Assistant, Upper Division Clerk and Staff Car Driver, in pay levels ranging from Level 2 to Level 13 as per the 7th CPC. Interested candidates must submit their applications within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed vacancy information, bench-wise posts and eligibility conditions are available on the official website. Kindly refer to www.nclt.gov.in. The Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Duhang, Arunachal Pradesh, an autonomous body under the Ministry of Culture, Government of India, has invited applications for 3 assistant professor posts, that is in Tibetan and English. The posts carry level 10 as per the 7th CPC and requires a postgraduate degree with at least 55% marks in the relevant subject. The vacancies include 1 unreserved post and 2 OBC posts. Eligible candidates must submit their applications by 6th August 2026. Detailed criteria and application forms available on the Institute's website. Kindly refer to www.cihcs.edu.in. Now repeat, it is www.cihcs.edu.in. The Union Public Service Commission is inviting applications till the 17th of July 2026 for recruitment to more than 450 vacancies across 54 categories of posts in various ministries and departments of Government of India. The recruitment includes major vacancy for Drug Inspector, 186 posts in Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO, Specialist Grade 2 and 3 assistant professors in various medical specialities, aeronautical officers, prosecutors, joint directors, assistant director in census operation technical, sub-regional employment officer, Rajbhasha Adhikari, civilian assistant security officer, assistant engineer civil, medical officers, scientific officers, consultants and several other technical, engineering, defense, shipping, archaeological, railway and administrative positions. The posts carry various pay scales ranging from level 7 to level 12 as per the 7th CPC. The upper age limit between 30 to 55 years depending on the post and category. Interested candidates should carefully check the detailed eligibility criteria, education qualifications, experience requirements and reservation details before applying online through the official UPSC recruitment portal at UPSC Online. Kindly go on to www.upsa.gov.in or you could also go on to www.narcoticsindia.nic.in. The Ministry of Law and Justice, through its legislative department, has invited applications for the engagement of 4 legal research associates on contract basis for 1 year. Selected candidates will receive a monthly remuneration of 45,000 rupees. Interested and eligible candidates should submit their applications in the prescribed format within 3 weeks from the date of publication of this advertisement. Detailed eligibility criteria and application format is available on the department's recruitment page. Kindly refer to www.legislative.gov.in. I repeat, it is www.legislative.gov.in. The Central Forensic Science Laboratory under the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, has invited applications to fill 3 upper division clerk UDC posts on deputation basis. Of these, 2 vacancies are at CFSL Chandigarh and 1 at Simla Unit. The posts are in pay matrix level 7 as per the 7 CPC. The applicants must not exceed 56 years of age as on the closing date of this advertisement. Eligible and willing officials should submit their applications through proper channel along with required RPARs and supporting documents within 2 months from the date of publication of this advertisement. Detailed eligibility conditions are available on the official website, that is at www.cfsl.delhi.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
3: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अनुसंधान सहायक 1 पद उपलब्ध है। मुख्य विषय के तौर पर मौसम विज्ञान या समतुल्य विषय के साथ मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भौतिकी अथवा अनुप्रयुक्त भौतिकी में PhD की उपाधि होनी चाहिए अथवा कम से कम 3 वर्ष का शोध अनुभव होना चाहिए। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.shar.gov.in अथवा apps.shar.gov.in। आवेदन किए जा सकते हैं 17 जुलाई 2026 तक। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना अधिकारी 1 पद तथा सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी 1 पद। पदों के संबंध में विवरण इस वेबसाइट पर उपलब्ध है www.dpl.gov.in। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान देव प्रकाश शास्त्री मार्ग पूसा नई दिल्ली में रिसर्च एसोसिएट का 1 पद उपलब्ध है और इसके लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.niap.res.in। मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। लाइब्रेरियन सह सूचना अधिकारी 1 पद, वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक 1 पद। पदों की विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि का विवरण उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.idsa.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कुल 8 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण, सामान्य शर्तें आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iisermohali.ac.in। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। उपनिदेशक चिकित्सा रिक्तियां हैं 2, कनिष्ठ प्रोग्रामर रिक्ति है 1, कनिष्ठ लेखाकार रिक्तियां हैं 4, आशुलिपिक 7 रिक्तियां उपलब्ध हैं और कनिष्ठ सहायक पद के लिए 39 रिक्तियां उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, अंतिम तिथि, पात्रता, आरक्षण, पाठ्यक्रम और अन्य नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट natboard.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
4: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे।
1: श्रोताओं, क्लास 12 के नतीजे आए हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में देश भर के लाखों छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने, काउंसलिंग सेशन में शामिल होने और अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की योजना बनाने में व्यस्त होंगे।
2: बट करिश्मा, फॉर मेनी फैमिलीज सिक्योरिंग एडमिशन इज ओनली हाफ द जर्नी। द बिगर चैलेंज इज अरेंजिंग द मनी टू पे फॉर इट। So listeners, what if there was one digital platform where you could apply for an education loan from the comfort of your home? Well, that's exactly what the PM Vidya Lakshmi scheme aims to make possible.
1: पीएम विद्या लक्ष्मी योजना भारत सरकार की एक पहल है जो कई बैंकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाती है ताकि छात्रों को एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक ना जाना पड़े। योग्य छात्र अपने परिवार की आय और अन्य शर्तों के आधार पर सरकार से ब्याज में मदद भी पा सकते हैं।
2: And this scheme is available for students admitted to eligible quality higher education institutions. And the process is actually very simple. First, you need to register on the PM Vidya Lakshmi portal using your basic details. Second one, filling one common education loan application form with information about yourself, your course, college fees and the required documents.
1: और इसके बाद तीसरे नंबर पे है, छात्रों को अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे सही बैंक चुनना होगा और अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। और नंबर चार, फिर बैंक आपके आवेदन की समीक्षा करता है, आपके दस्तावेजों की जांच करता है और सीधे पोर्टल पर स्टेटस अपडेट करता है। और आखिरी चरण में अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है तो आपको मंजूरी की जानकारी मिलेगी और बैंक की प्रक्रिया के अनुसार लोन की रकम जारी कर दी जाएगी।
2: एंड वी आर डन। सो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन आर नोटिफाइड आफ्टर लोन सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट टू क्लेम द बेनिफिट एंड टू नो मोर और अप्लाई काइंडली विजिट पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल एंड फॉर कंप्लीट स्कीम गाइडलाइंस रिव्यू द ऑफिशियल इन्वेस्ट इंडिया पीएम विद्यालक्ष्मी पीडीएफ और एक्सप्लोर द पीएम विद्यालक्ष्मी एफएक्यूज फॉर मोर स्पेसिफिक डिटेल्स। So listeners, as we have told you before, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India Now, reports and capsules, tributes, there is so much more that we will be unfolding over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first, shall we?
1: Bilkul.
2: Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following resumption of LNG shipments through Strait of Hormuz.
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की।
2: सेंटर ऑर्डर्स मेटा टू रिमूव चाइल्ड अब्यूज एड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, सीक्स रिप्लाई इन 7 days।
1: छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया।
2: IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today.
1: और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला।
2: Now we may proceed. This is our segment Dateline India. Well, we will talk about My Bharat or Mera Yuva Bharat initiative. Well, every young person dreams of making a difference. Some want to help their community, others to gain experience. And also, there are many who aspire to become better leaders. But the biggest challenge has always been knowing where to begin. Well, India now has an answer for it. It's called My Bharat or Mera Yuva Bharat, a platform where Digital India empowers Young India.
1: तो श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि लाखों युवाओं को सार्थक मौका कैसे मिला जाए और इससे कैसे जोड़ा जाए। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी ऊर्जा बर्बाद ना हो, और इसका जवाब है माई भारत पहल, जैसा कि शगुन ने अभी बताया।
2: So it was launched in October 2023 under the Ministry of Youth Affairs and Sports, and My Bharat is much more than a website or an app. Well, think of it as India's digital playground for young minds, a place where learning, volunteering, leadership and career opportunities, they all come together.
1: तो हो सकता है कि आपने लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पेड़ लगाते, बाढ़ के समय मदद करते, या फिर आस पड़ोस में सफाई अभियान में शामिल होते हुए देखा हो और सोचा हो कि काश मैं भी ऐसी ही किसी चीज का हिस्सा बन पाता, तो माई भारत ठीक यही मुमकिन बनाता है।
2: And Karishma, today the platform offers over 1.5 lakh volunteering opportunities across the country. And well, the best part is that everything is digital, from registration to attendance to geotagging, certificates and impact tracking, and no paperwork. Absolutely no paperwork at all, no running from one office to the other.
1: बिल्कुल, लेकिन volunteering कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मान लीजिए कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि क्लासरूम में सीखना जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉयर अक्सर प्रैक्टिकल अनुभव मांगते हैं, और ये अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा? यह भी आपको माय भारत फिर से यहाँ पर काम आएगा, जहाँ से आप अनुभव ले सकते हैं।
2: एंड द प्लेटफॉर्म ऑफर्स मोर देन 24,000 एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स अलोंग विद इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर।
1: तो अब युवा, आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके असल जिंदगी के स्किल सीखकर और अपने रिज्यूमे बनाकर अपनी गर्मियां बिता सकते हैं। कमाल की बात है ना शगुन?
2: वेल राइट, इफ वी स्पीक ऑफ रिज्यूमेस, दैट्स एक्चुअली लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। एंड वेल, हाउ मेनी ऑफ अस हैव स्टेयर्ड एट अ ब्लैंक स्क्रीन वंडरिंग व्हाट शुड आई इवन राइट इन माई सीवी, व्हाट शुड आई इवन बिगिन विद।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: Everyone has faced that.
1: जी। और माई भारत युवाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की तैयारी करने में मदद करने के लिए AI पावर्ड रिज्यूमे बिल्डर, मेंटरिंग सपोर्ट और करियर गाइडेंस जैसी सुविधाएं भी देता है।
2: And if we are being very honest, most people hear words like constitution or public policy and they immediately imagine long, boring lectures. But what if learning about these topics felt more like participating than memorizing? And that's exactly what My Bharat offers. And My Bharat offers this particular things and these initiatives like the Viksit Bharat Youth Parliament and engaging digital quizzes. Young Indians, they don't just learn about democracy. Well, Karishma, they experience it.
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही श्रोताओं, जरा सोचिए कि आप एक पोडियम के पीछे खड़े हैं और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा सिर्फ नेता ही करते हैं? खैर, अब ऐसा नहीं है। और क्या आपको पहली बार वोट देने का अनुभव याद है? वह उत्साह, वो उंगली पर लगी पहली बार स्याही और उसकी फोटो खींचना आजकल तो नया ही ट्रेंड है।
2: राइट, एंड दैट सुप्रीम फीलिंग दैट आवर वोट मैटर्स टू। And through the My Bharat, My Vote campaign, lakhs of first-time voters, they are actually learning about the constitution, democracy and informed voting. How great is that?
1: और इसके साथ ही शगुन, क्या आपको लगता है कि आपको हाल ही में जो हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो तो याद ही होगा। पूरे भारत में लाखों लोगों ने अपनी योग मैट बिछाई और साथ मिलकर सेहत और तंदुरुस्ती का जश्न मनाया। लेकिन इतने बड़े स्तर के आयोजन अपने आप नहीं होते हैं।
2: Right, and behind many of them were My Bharat volunteers coordinating, organizing and encouraging community participation. And this same platform also supports the Nasha Mukt Bharat campaign, cleanliness drives, padyatras and countless community initiatives where ordinary young people, they create extraordinary impact.
3: Or is India's youth today dream big and move fast? To transform this energy into purpose, the Government of India launched Mera Yuva Bharat or My Bharat on Rashtriya Ekta Divas in October 2023. My Bharat is a national movement providing tools and opportunities for young people to contribute through volunteering, skilling and leadership, turning ideas into impact. In 2 years, it has grown into India's largest youth engagement platform. Over 2 crore young Indians and 1.2 lakh organizations have joined, creating 14.5 lakh volunteering opportunities through 16,000 youth clubs and 60,000 institutions. The My Bharat mobile app, launched in 2025, makes participation easier with AI-based guidance, voice assist, smart CV builders and digital certificates. My Bharat 2.0 will enhance this with mentorship, entrepreneurship support and integration with Skill India, Digital India and Fit India.
1: तो भारत के युवा न सिर्फ देश के भीतर बदलाव ला रहे हैं बल्कि वे ग्लोबल मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माई भारत के जरिए युवा नेताओं ने यूनाइटेड नेशन ईसीओ एसओसी यूथ फोरम 2026 में हिस्सा लिया और दुनिया के साथ भारत के विचार साझा किए।
2: एंड अदर्स ट्रैवल टू इंडियाज बॉर्डर विलेजेस अंडर द विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट रिमोट रीजन्स एंड स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।
1: बिल्कुल सही। और असल में जब तक आप अपने आसपास के माहौल से बाहर निकलकर लोगों की जिंदगी और कहानियों को नहीं जानते तब तक आप अपने देश को सच में नहीं जान पाते।
2: आई वुड लाइक टू ऐड देयर दैट द मैप ऑफ इंडिया इजंट जस्ट मेंट टू बी सीन इट्स एक्चुअली मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड एन अमेजिंग फैक्ट फॉर आवर लिसनर्स दैट लास्ट मंथ माय भारत अर्नड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स टेकिंग एन ऑनलाइन क्विज विद इन 1 week. And that is close to 4 lakh verified participants. 4 lakh.
1: वाओ। और शगुन ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत के युवा कितने उत्साह के साथ डिजिटल भागीदारी को अपना रहे हैं। भारत में अनगिनत भाषाएं और संस्कृतियां हैं और माय भारत इसी विविधता का जश्न मनाता है। यह ऐप भारत की 22 भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं। मौके बस कुछ ही टैप से दूरी है।
2: And perhaps the most exciting part is the fact that My Bharat 2.0 is bringing artificial intelligence, multilingual technologies, open APIs and digital credentials together to create an even smarter platform. Now picture India a few years ago from now, over 100 million young Indians connected through one platform, learning, volunteering, leading and creating impact.
1: तो श्रोताओं, माय भारत का विजन ठीक यही है, युवाओं के लिए देश का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर।

0: बनाना। एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां युवा सिर्फ बदलाव की बातें नहीं करते बल्कि असल में उसका नेतृत्व करते हैं।
1: Absolutely, Karishma. A nation where technology isn't just about scrolling through feeds or ordering groceries, but also about learning, volunteering, innovating, and together building a stronger and bold India.
0: और श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और शगुन, सबसे पहले बात कहाँ की करेंगे?
1: Well, we will be heading to Leh. So, Karishma and our listeners, imagine driving through one of the world's most pristine landscapes, only to leave scars that could last for decades. So, to safeguard its unique and fragile ecosystem, Ladakh has launched a new environment protection force with ex-servicemen at its core. We'll gather more details from our correspondent.
2: For the first time in the history of Ladakh, army veterans have joined the civil administration to safeguard the ecological sensitive areas. Union Territory Administration has deployed 100 ex-servicemen in the Environment Protection Force with responsibility of checking incident of illegal off-road driving in ecological sensitive areas, protected wildlife areas and preserve pristine environment. They have been authorized to issue on-the-spot challan for any environmental violation within their designated areas. Environment Protection Force is set up to prevent wildlife violation inside the protected wildlife areas and harmful environment activities to strengthen the strict implementation of Solid Waste Management Rules 2026. Lieutenant Governor of Ladakh V.K. Saxena administered the oath to the newly appointed member of the Environment Protection Force yesterday. Environment Protection Force is a new initiative of UT Ladakh to curb the menace of wildlife environment violation. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
0: और इसके साथ ही अब चलते हैं बिहार। बिहार में एक कानून बन जाना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए। इसी दिशा में बिहार ने 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की बड़ी पहल की है। एक रिपोर्ट।
3: बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस सम्मेलन में राज्य भर के 250 से अधिक न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। यह सम्मेलन बिहार जुडिशियल एकेडमी और बिपार्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों को समझना और पुलिस व न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। उद्घाटन सत्र में पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय और अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। 3 नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता और मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए नए और कड़े प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें 0 FIR, EFIR और जांच में फॉरेंसिक साक्ष्य को अनिवार्य बनाए जैसे नियम शामिल हैं। वहीं तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता देना व उनकी सुरक्षा के नियम जोड़े गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
1: Well, let's talk about Goa. Goa is expanding entrepreneurship beyond cities. While rural communities are being trained in homestay tourism, Airbnb hosting and waste management, educational institutions are receiving support to transform student ideas into successful startups. More from our correspondent.
4: Goa is taking significant steps to promote entrepreneurship from villages to educational institutions. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, along with Tourism Minister Rohan Khamte, felicitated participants of the Rural Accelerator Program 2026 at Kala Academy in Panji. Supported by Airbnb and implemented by the Forum for Integrated Development and Research in collaboration with Goa Livelihood Forum, the program equipped participants with practical skills in homestay tourism and waste management, creating new livelihood opportunities in rural Goa. The state government has also sanctioned grants to 4 education institutions to establish startup incubation centers: Goa Engineering College, Government College at Kepe, Sri Damodar Srinivas Sinai Dempo College, and Parvati Bai Zogule College will nurture innovation and guide aspiring entrepreneurs. Aligned with Startup India mission and the Viksit Bharat 2047 vision, these initiatives aim to transform ideas into enterprises and strengthen Goa's innovative ecosystem. For Parikrama, Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 80th edition of the Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi. The event was organized in collaboration with the Sri Satya Sai Seva organizations to mark the 100th birth anniversary of spiritual leader Sri Satya Sai Baba. More than 9,000 people took part in the community run and cycle ride. Besides participating in Zumba and yoga sessions, the initiative aims to promote behavioral change and encourage a more physically active lifestyle. And this counters both. Speaking to the media, Dr. Mandaviya said cycling helps keep the heart, body and mind healthy, highlighting its health benefits. The minister also described cycling as a solution to pollution and traffic congestion in cities. He urged people to spend at least 1 hour away from mobile screens every day and devote that time to physical activity and sports for better health.
5: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है। आज देश में 4 में से 1 नागरिक ओवरवेटेज है, क्यों न हम प्रधानमंत्री जी की ओबेसिटी खिलाफ मूवमेंट के साथ जुड़ के अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
0: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।
1: एंड इन द फीफा वर्ल्ड कप, फ्रांस बुक देयर प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स विद अ हार्ड फॉट 1-0 विक्ट्री ओवर पैराग्वे इन द राउंड ऑफ 16 एट फिलाडेल्फिया। कैप्टन किलियन एम्बेपे स्कोर्ड द ओनली गोल फॉर द मैच फ्रॉम द पेनल्टी spot in the 70th minute after video assistant referee awarded France a spot kick. France will now face Morocco in the quarterfinals.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों के जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
6: आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज हम तारादास मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बंगाल में नादिया के निवासी थे। 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई।
7: जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली। धरती माँ के इस महान सपूत तारादास मुखर्जी को हमारा शत शत नमन।
6: आज हम दुर्गा मल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे ब्रिटिश भारत सेना की गोरखा राइफल्स में हवलदार थे। बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया।

0: गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गा मल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। अमर बलिदानी दुर्गा मल को हमारा शत शत नमन।
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने आज रायपुर के एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 70 वर्ष की आयु में अंतिम सांसें ली। तीजन बाई को उनकी जो कहानियां हैं महाभारत की कहानियों पर आधारित पंडवानी गायन शैली को वैश्विक स्तर पे पहुंचाने का श्रेय जाता है। तीजन बाई को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गानियारी गांव में हुआ था। उन्होंने अपने नाना ब्रजलाल पारधी से पंडवानी की प्रेरणा ली और बचपन से ही महाभारत के पात्रों को अपनी आवाज और अभिनय के माध्यम से मंच पर जीवंत करना शुरू कर दिया था।

0: निकले खबर नहीं पहुंची।
1: हाँ।
0: राजा दुर्गानी अपन भवन में बैठे रहे, देख के चारों तरफ सेना मल्ला कहे कि सब तो सही में आ गए हैं, पर हे कुरुपति द्वारका नाथ ले खबर दे गए नहीं।
1: हाँ।
0: तो आप एक काम करो, आज ही निकल जाओ।
1: हाँ।
0: और न्योता दे के बलराम कृष्ण ले आ जाओ।
1: हाँ।
0: तो राजा दुर्गन चल चल कर घोड़ा ले सजावे, घोड़ा रथ में बैठ कर बेग रथ दौड़ाते हुए द्वारका में जा पहुंचे तो सही।
2: Well, with her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Teerenbai gave Pandavani a new identity not only across India but also internationally.
3: तो तीजन बाई का जो गायन था वो वेदमती शैली यानी कि बैठ के गाने की परंपरा और कापालिक शैली यानी कि खड़े होकर अभिनय और गायन के साथ का अद्भुत मिश्रण रहा, और यही वजह है कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन उन्होंने किया और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया।
2: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग हैरी लिंक, सॉन्ग राइटर एंड एक्टर. He wrote and co-wrote several well-known jazz standards. The song that we chose is These Foolish Things.

और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के निर्माता और न्यू थिएटर्स के संस्थापक बीएन सरकार को आज हम याद कर रहे हैं। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आगे चलकर भारतीय फिल्म उद्योग को नई दिशा देने का फैसला किया। वर्ष 1931 में उन्होंने कोलकाता में न्यू थिएटर्स की स्थापना की। यह स्टूडियो भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर का प्रतीक बना और यहां देवदास, चंडीदास, मुक्ति, विद्यापति तथा भाग्य चक्र जैसी अनेक कालजयी फिल्मों का निर्माण हुआ। न्यू थिएटर्स ने भारतीय फिल्मों में तकनीकी नवाचार, उच्च गुणवत्ता और पार्श्व गायन यानी कि प्लेबैक सिंगिंग जैसी परंपराओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: तो बीएन सरकार ने अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों, निर्देशकों और संगीतकारों को मंच प्रदान किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 1970 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा वर्ष 1972 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जेमी रॉयल रॉबी रॉबर्टसन and the musician, composer and producer. Robertson was the one-time lead guitarist for Bob Dylan's backing band. He was also guitarist and primary songwriter of the band from its inception until his 1976 departure.

और इसके साथ ही आज भारतीय बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्मदिन है। सिंधु ने कम उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया और प्रसिद्ध कोच पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में अपने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इसके साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 2019 में पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतकर देश

0: पुरस्कार, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है।
1: टुडे इट्स अ बर्थडे, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट सिंधु हैज वन मेडल्स एट टूर्नामेंट्स एंड सो मेनी टूर्नामेंट्स, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड ऑन द वर्ल्ड टूर। शी इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बिकम द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन एंड ओनली द सेकंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया टू विन टू कंसेक्यूटिव मेडल्स एट द ओलंपिक गेम्स। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर। टुडे we're also remembering a trumpet playing band leader, musician, and who led a big band to great commercial success from 1939 to 1946. I am talking about Harry James. Well, he broke up with his band for a short period in 1947, but shortly after he reorganized, he was active again. He was especially known among musicians for his technical proficiency as well as his tone.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता।

दिया है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते इस सफर में आपके साथ एक बार फिर से मुखातिब हैं हम, लेकर गाते गुनगुनाते का ये अंक। और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, आप सभी का स्वागत, नमस्कार। आगाज इस नगमे से जो हमने लिया फिल्म नमक हलाल से, सितारे हैं शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश और रंजीत। एक सुपरहिट फिल्म, 1982 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में तीसरे पायदान पे इसी फिल्म का ये नगमा आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर

0: greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आपके साथ हूँ मैं शिव प्रकाश, लेकर गाते गुनगुनाते। और आप से जो बातें हमारी हो रही है, मौसम बदल रहा है। जी हाँ, बारिश शुरू हो चुकी है और हालांकि थोड़ी उमस है, लेकिन इस बारिश को देखकर मन खुश तो ज़रूर है। जी हाँ, और जब जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो ये उमस भी कम होगी और ठंडक बढ़ेगी मौसम में, निस्संदेह। और अगला जो नगमा हमने लिया है कुछ ऐसे ही मौसम पे, वो भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और वो जो फिल्म है, वो फिल्म है 1991 में बनी लम्हे, यशराज फिल्म्स की बहुत ही शानदार फिल्म। और इस फिल्म में अभिनय किया अनिल कपूर और श्रीदेवी ने। और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर कहा जाए कि नुकसान का सौदा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इस फिल्म को एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। लीक से हटकर ये फिल्म बनी थी, लोगों ने पसंद किया। और फिल्म को जो गहराई से देखने वाले हैं, फिल्म के जो समीक्षक हैं, जो फिल्म में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनको काफ़ी ये फिल्म पसंद आई। इस फिल्म का संगीत बहुत प्यारा था, शिवहरि का संगीत था। इसी फिल्म का एक नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सबके लिए।

जी हाँ, ये मधुर आवाज थी लता मंगेशकर की, और इनके साथ थी लोक गायिका, और बल्कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतों में उन्होंने अपनी आवाज दी, इला अरुण, राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं आप। और अगला जो नगमा हमने लिया है वो भी बरसात से जुड़ा हुआ है और बहुत ही प्यारा नगमा है। फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी। विनोद चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को बनाया, और विधु विनोद चोपड़ा भी अपनी अलग ढंग की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। और इस फिल्म में जो मुख्य किरदार था वो अनिल कपूर का और मनीषा कोइराला का था। जैकी श्रॉफ, डैनी इस फिल्म में भूमिका अदा कर रहे थे। अनुपम खेर भी इस फिल्म में थे और प्राण ने भी इस फिल्म में भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ, और ये जो संगीत था इस फिल्म का, खास तौर पे आरडी बर्मन साहब का संगीत था। आरडी बर्मन इसी साल 1994 में 15 जुलाई को ये फिल्म प्रदर्शित की गई, और जनवरी में लगभग, मुझे लगता है 4 जनवरी को आरडी बर्मन साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये जो फिल्म थी, ये फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो आरडी बर्मन साहब इस फिल्म की संगीत की प्रसिद्धि को देखने के लिए नहीं थे, लेकिन बेहद लाजवाब फिल्म और संगीत लाजवाब। इसी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और आज इस कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा भी होगा। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की, और हम चलते चलते कहना चाहेंगे कि आप इस मौसम का पूरा मज़ा अपने खुद भी लें और अपनों के साथ लें, और जीवन में खुशियों को बनाए रखें।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर वापस लौटा 2026 में पहले जत्थे के अनुभवों से कर रहे हैं। अभी बीते बुधवार को ही पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके 2026 का पहला जत्था भारत वापस लौट आया और इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि यात्रियों का अनुभव कैसा रहा और हमारे संवाददाता दिल्लीराम दुलाल ने हमें विस्तार से इस संबंध में ये रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं।

0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे वर्ष के पहले जत्थे को रवाना करते हुए सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि उन्हें यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है और वे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 5 वर्षों तक स्थगित रही थी, लेकिन पिछले वर्ष फिर से शुरू हुई। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य बताया कि उन्हें पिछले वर्ष भी पहले जत्थे को रवाना करने का अवसर मिला था। राज्यपाल ने कहा कि पहले कुछ गलतफहमियां थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों ने संबंधों को सामान्य बनाने की आवश्यकता को समझा, जिसके बाद यात्रा फिर से शुरू हो सकी। उन्होंने इस पहल के लिए संबंधित पक्षों और सिक्किम सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की।
1: मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इन्होंने आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा प्राप्त की है। और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूँ। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है। कि देखिए, जब हम अड़िग रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामने वाले को भी सोचना पड़ता है। कुछ गलतफहमियां पहले हुई, उन्होंने 17 में जो कुछ किया उसके बाद उनको भी नॉर्मल सी ध्यान आई, उनको भी सारी बात ध्यान आई, यात्रा पुनः शुरू हुई। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ

0: जिन्होंने यात्रा के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की।
1: बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे श्रद्धालु नथुला सीमा पहुंचे, जहां एसटीडीसी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आव्रजन और सीमा शुल्क संबंधी औपचारिकताएं पूरा होने के बाद उन्हें सिक्किम के नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट अर्थात SNT की बसों से सुरक्षित गांतोक पहुंचाया गया। शाम को सिक्किम सरकार की ओर से एसटीडीसी ने एक सामान्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को यात्रा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु सर्वज्ञ मीना ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पूरी यात्रा बेहद सुचारू रही। उन्होंने सिक्किम सरकार और एसटीडीसी द्वारा पूरी यात्रा के दौरान उपलब्ध कराई गई उत्कृष्ट सुविधाओं और आतिथ्य की सराहना की।
2: दिस इज सर्वज्ञ मीना फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 फ्रॉम नाथुला पास रूट। ऑन 1st of July आवर एंटायर बैच ऑफ 48 यात्रीज इंक्लूसिव ऑफ 4 सपोर्टिंग स्टाफ रिटर्न बैक टू इंडिया वेयर नाथुला पास आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द होली कैलाश मानसरोवर परिक्रमा। द एंटायर अरेंजमेंट वेदर प्रोसीजरल और लॉजिस्टिकल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स एजेंसीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड सिक्किम गवर्नमेंट वॉज सीमलेस एंड हैसल फ्री एंड द सेम कंटिन्यूज इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर टू द चाइना वेयर इन इश्यूज लाइक स्टे ट्रेवल एंड फूड वर वेल टेकन केयर ऑफ बाय द गाइड्स अपॉइंटेड बाय द चाइनीज साइड दो सर्टेन इश्यूज लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक वॉशरूम्स ड्यूरिंग परिक्रमा मार्ग एंड few instances of undue restrictions imposed on Indian pilgrims warrants further government attention. But overall, the government of India in collaboration with UP government and Sikkim government did extraordinarily well in organizing this yatra. Moreover, I do feel fortunate enough to get selected in the batch first of the year 2026 for this holy journey and blessed enough to successfully complete it. Further, I extend my warm wishes towards all the fortunate people who have been selected for the yatra this year, especially because 2026 is the year of the fire horse according to the Chinese zodiac and as per the popular belief a single parikrama done during a horse year is accounted for 13 times. With this feeling of gratitude once again I extend my heartiest thanks to the Modi ji government of India on behalf of the entire batch 1 and upcoming batches undertaking this yatra of highest spiritual awakening.
1: Shradhalu aur sampark adhikariyon ne Nayi Delhi se Nathula aur wapasi tak STDC dwara kiye gaye samanvay parivahan awas swachh bhojan aur samarpit sevaon ki prashansa ki. उन्होंने सुरक्षित और सफल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सिक्किम सरकार विदेश मंत्रालय आईटीबीपी तथा सभी संबंधित विभागों का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं मोइनाक चटर्जी के साथ दिलीराम दुलाल।

श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत कला और संस्कृति का एक बहुत मिलाजुला रूप प्रस्तुत करता है और त्रिपुरा में भी कई सांस्कृतिक समारोहों का समय समय पर आयोजन होता रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के अवसर पर इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने हमें विशेष रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर किस तरह से सांस्कृतिक संस्थाएं विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।

अगरतला में रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती के आयोजन के बात हो तो सबसे पहले छंदनीर का नाम सामने आता है। कई दशकों से ये संस्था रविन्द्र शतवार्षिकी भवन परिसर में सुबह की काव्य और संगीत प्रस्तुतियों के जरिए शहर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनी हुई है। सत्तर के दशक के मध्य में कुछ युवा संस्कृति प्रेमियों ने इस संस्था की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक छंदनीर साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के साथ साथ अब संस्था ने महान कवि और संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम की रचनाओं को भी अपने कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया है। हर वर्ष आयोजित होने वाला सृजन छंद नजरुल कार्यक्रम अब नजरुल की रचनाओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस वर्ष उसकी खास बात रही प्रसिद्ध गायक राघव चटर्जी की मौजूदगी, जिन्होंने मुख्य अतिथि और कार्यशाला के मार्गदर्शक के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम के तहत दो दिन तक एक संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के नजरुल प्रेमियों ने भाग लिया।

0: कार्यशाला में नजरुल गीति की बारीकियों, सुर, ताल, भाव और प्रस्तुति की शैली पर विस्तार से चर्चा की गई। गीतों और संवाद के माध्यम से प्रतिभागियों को नजरुल के संगीत को गहराई से समझने का अवसर मिला।
1: We are incredibly grateful to Raghav Chattopadhyay for his sparing the time for this workshop and which was an exceptional one for the learners of our state. His profound knowledge, patience and masterful execution left an incredible mark on all the participants. Through his guidance, the attendees did not just learn the technical part of the songs, but also gained a deeper emotional connection to Qazi Nazrul Islam.
0: ये कार्यशाला मुख्य कार्यक्रम की एक सुंदर शुरुआत साबित हुई। नजरुल की गीतों से सजे इस आयोजन में सीखने और प्रस्तुति का सुंदर मेल देखने को मिला। प्रतिभागी नए अनुभव, नई प्रेरणा और नजरुल के संगीत से और अधिक जुड़ाव के साथ लौटे। प्रसिद्ध गायक और कार्यशाला के मार्गदर्शक राघव चटर्जी ने भी अगरतला आकर प्रतिभागियों के साथ समय बिताने को एक यादगार अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि नजरुल के संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उसकी विरासत को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।
2: This time I came from for a workshop on Qazi Nazrul Islam and also a performance. This is for the one organization called Chandoni. Amazing institution along with all young, mid-age and also aged senior artists are there. And Chandoni is basically always organize a different kind of musical workshop. Maybe with Rabindranath Tagore, maybe with Qazi Nazrul Islam, maybe with Sahil Chaudhary, maybe with modern songs or Indian classical music. So Chandoni is a very year-old organization and very quality organization, and a lot of good people, good listeners, good musicians, good singers is associated with Chandoni.
0: रविन्द्रनाथ ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम बंगाली और भारतीय साहित्य तथा संगीत के दो महान स्तंभ हैं। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और समय की सीमाओं से परे अपने पहचान बनाए हुए हैं। इन दोनों महान साहित्यकारों और संगीतकारों की रचनाओं से प्रेरणा लेकर छंदनी लगातार अपनी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ा रही है। सृजन छंद नजरुल जैसे कार्यक्रम के माध्यम से संस्था न केवल महान कवि को श्रद्धांजलि देती है बल्कि कला सीखने और सांस्कृतिक संवाद का एक सशक्त मंच भी तैयार करती है। गर्मी के मौसम में ऐसे सांस्कृतिक आयोजन ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस होते हैं। इनमें संगीत, कविता, लय और रचनात्मकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यदि त्रिपुरा की सांस्कृतिक दुनिया में रविन्द्रनाथ ठाकुर उगते हुए सूरज की तरह है, तो काजी नजरुल इस्लाम पहली मानसूनी बारिश की तरह है जो अपने साथ संगीत, प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आते हैं। श्रोताओं और प्रतिभागियों के लिए सृजन छंद नजरुल ये संदेश देता है कि महान कला केवल किताबों और गीतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि लोगों की साझी सांस्कृतिक चेतना और परंपरा में हमेशा जीवित रहती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला।
3: हाल ही में मन की बात के संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में महिलाओं की खेल प्रतिभाओं की सराहना की और विशेष तौर पर फुटबॉल की दो विशेष लीग का उन्होंने उल्लेख किया जिसमें महिलाएं फुटबॉल में अपनी प्रतिभा दर्शा रही हैं। और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ये भी कहा कि दूसरे राज्यों को भी नागालैंड की तरह जिस तरह से महिलाएं खेलों में अपना प्रतिभाग निभा रही हैं उस तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आइए, हमारे संवाददाता असुनो ने इस संबंध में ये रिपोर्ट भेजी है, सुनते हैं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून को प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें एपिसोड में नागालैंड की दो महत्वपूर्ण फुटबॉल पहलों नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों पहले बच्चों में खेल प्रतिभा को निखारने और महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नागालैंड में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के प्रयासों को राष्ट्र स्तर पर पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में

0: नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागालैंड बेबी लीग केवल एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। ये लीग 5 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रखना, टीम भावना विकसित करना और फुटबॉल में बेहतर प्रशिक्षण देना है। पिछले 3 वर्षों में इस लीग ने राज्य के कई लड़के लड़कियों को अपनी फुटबॉल प्रतिभा दिखाने और बेहतर कोचिंग पाने का अवसर दिया है।
1: मुझे नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड महिला फुटसल लीग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये लीग महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अच्छा मंच दे रही है। उन्होंने बताया कि फुटसल फुटबॉल का 5 खिलाड़ियों वाला तेज गति से खेला जाने वाला इंडोर खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को तेजी से फैसले लेने और बेहतर तकनीकी कौशल की जरूरत होती है। ये लीग युवा महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दे रही है।
1: साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूँ, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूँ। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं।
0: प्रधानमंत्री की सराहना से नागालैंड में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे राज्य के अधिक से अधिक युवा खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से आसुनियो की रिपोर्ट के साथ शक्ति सिंह।

0: श्रोताओं, मेघालय में नशा मुक्ति की एक विशेष पहल से बहुत सी जिंदगियां संवर रही हैं। ड्रीम मिशन के तहत कई समुदाय, सरकारी विभाग और गैर सरकारी संगठन और नशे की लत से मुक्त हो चुके लोग मिलकर इस विशेष अभियान को चला रहे हैं, जिसमें नशा मुक्ति पर विशेष जोर है और नशा मुक्त होने के बाद सामाजिक पुनर्वास पर इसमें खास जोर दिया गया है। तो हमारे शिलांग संवाददाता की इस रिपोर्ट में ड्रीम मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं।
1: मेघालय में नशे की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया गया ड्रीम मिशन अब एक सफल पहल के रूप में उभर रहा है। इस अभियान में स्थानीय समुदाय, सरकारी विभाग और नशे की लत से बाहर आ चुके लोग मिलकर नशे के सेवन और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाल ही में शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी निषेध दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इस अवसर पर ड्रीम मिशन के सकारात्मक परिणामों को सामने रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि ड्रीम मिशन की शुरुआत सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर नशे के खिलाफ संयुक्त प्रयास करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मिशन ने साबित किया है कि जब समुदाय नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास में सक्रिय भागीदारी करता है तो स्थायी और सकारात्मक बदलाव संभव होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रीम मिशन ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे राज्य भी अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल सरकार के प्रयासों से नशे की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसके लिए समाज और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने मिशन के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र लोगों में सकारात्मक व्यवहार विकसित करने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से बाहर निकल रहे लोगों को सामान्य जीवन में लौटने में सहायता कर रहा है। सामाजिक कल्याण सलाहकार पॉल लिंगदोह ने कहा कि ड्रीम मिशन ने मेघालय को नशे की समस्या से निपटने के लिए स्पष्ट योजना और दिशा दी है। उन्होंने बताया कि इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक विभिन्न विभागों जैसे सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और गृह विभाग, पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इससे नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रॉस रूट्स म्यूजिक प्रोग्राम और राज्य भर में फुटसल मैदानों, युवाओं को खेल तथा संगीत जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने में मदद की है। पॉल लिंगदोह ने बताया कि जो इलाके पहले मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावित थे, वहां अब गांवों की सुरक्षा समितियां और स्थानीय लोग पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने लोअर मॉप्रेम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कई ऐसे युवा जो पहले नशे और उससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे, वे अब खेल और अन्य रचनात्मक कार्यों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव ड्रीम मिशन के लगातार प्रयासों और सामुदायिक प्रयासों का परिणाम है। नशे की लत से उबर चुके लोगों के प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मेघालय ड्रग यूजर्स फोरम के अध्यक्ष बैरी एल खार मालकी ने कहा कि ड्रीम मिशन ने नशा छोड़ चुके लोगों को नई उम्मीद, सम्मान और दोबारा बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया है। उन्होंने नशे से उबर रहे लोगों के लिए प्रस्तावित हाफ वे होम को सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे HIV, ट्यूबरक्लोसिस, TB, हेपेटाइटिस सी के इलाज तथा हार्म रिडक्शन के उपायों पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बैरी खार मालकी ने कहा कि ड्रीम मिशन के तहत मेघालय के प्रयासों को अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है और यह देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है। आज मेघालय में स्थानीय समुदाय नशे के खिलाफ अभियान में पहले से अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ड्रीम मिशन के कारण बड़ी संख्या में लोग नशे की लत से बाहर निकल रहे हैं और अधिक से अधिक गांव तथा समुदाय इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसी वजह से यह मिशन एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभर रहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।

0: श्रोताओं, इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत कार्य चल रहा है और इसी सिलसिले में हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक विशेष दौरा किया जिसमें बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल लिया गया। तो आइए हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा की इस रिपोर्ट में इस संबंध में विस्तार से जानते हैं।
1: केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर और ईस्ट सियांग जिलों के बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। प्रतिनिधि मंडल ने कई पान्योर जिले के निपको क्षेत्र तथा ईस्ट सियांग जिले के बोइंग गाँव सहित सबसे अधिक प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि भूमि और निजी संपत्तियों का निरीक्षण किया तथा घर, पशुधन और आजीविका खो चुके प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि केंद्र और राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ा है तथा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। दौरे के दौरान मंत्रियों ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित राहत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री का वितरण, आपातकालीन चिकित्सा शिविरों की स्थापना, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही आवासों की पुनर्निर्माण सहायता तथा किसानों का मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए नुकसान का विस्तृत आकलन भी किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि सरकार की तत्काल प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक जरूरतों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। श्री रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्य असम में इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण व्यापक तबाही हुई है। उन्होंने पुनर्वास और क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राहत कार्यों में केंद्र सरकार की त्वरित पहल के लिए आभार व्यक्त

0: सर्वे कहा है कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने, क्षतिग्रस्त अवसंरचना को बहाल करने और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: त्रिपुरा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि त्रिपुरा हमारे देश का किस तरह से एक अभिन्न राज्य है और यहाँ की संस्कृति, परंपरा, कला, खान पान और यहाँ की जीवन शैली किस तरह की है। तो आइए सुनते हैं त्रिपुरा के बारे में ये खास विवरण।
2: त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा सबसे छोटा राज्य, अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य विविधता और परंपराओं का एक ऐसा मेल है जो हर किसी को आकर्षित करता है। त्रिपुरा का नाम संस्कृत के त्रिपुर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीन शहरों का राज्य। ये राज्य कभी त्रिपुरी राजवंश का हिस्सा था, जिन्होंने लगभग 500 वर्षों तक यहाँ शासन किया। सन 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और तब से ये अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।

त्रिपुरा की पहचान यहाँ की आदिवासी जनजातियों से भी जुड़ी है। यहाँ कुल 19 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियांग, जामतिया और चकमा प्रमुख हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, पोशाक और जीवन शैली है, जो राज्य को एक सांस्कृतिक रंगमंच बनाती है। इन जनजातियों के त्योहार, नृत्य और संगीत त्रिपुरा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। त्रिपुरा की कला और हस्तशिल्प भारत भर में अपनी अनूठी शैली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बांस और बेत से बने उत्पाद जैसे टोकरियाँ, फर्नीचर और सजावट का सामान त्रिपुरा की शिल्प कला की अनमोल धरोहर है। यहाँ के कारीगर अपनी कला में माहिर हैं और हर वस्तु को हाथ से बनाते हैं, जो इसे खास बनाता है। त्रिपुरा का हथकरघा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की रेशमी और सूती साड़ियाँ, खासकर रिसा और रिगनाई, न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय है। त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। यहाँ का होजागिरी नृत्य रियांग जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे मिट्टी के बर्तन और दिए लेकर अद्भुत संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य फसल कटाई के बाद खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। गौरिया नृत्य भी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इन नृत्यों में दिखने वाली ऊर्जा और जीवंतता त्रिपुरा की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्रिपुरा का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और स्मारकों में भी झलकता है। उज्जयंत महल, जो अगरतला में स्थित है, त्रिपुरा के राजाओं का शाही निवास था। इस महल की वास्तुकला, बगीचे और भव्यता इसे त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नीर महल, जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है, राज्य का एकमात्र महल है। ये महल त्रिपुरा के शाही वैभव और संस्कृति की झलक देता है। त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य इसे स्वर्ग के समान बना देता है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और झरने प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अभयारण्यों में पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ऊनाकोटी एक रहस्यमय स्थल है, जहाँ पहाड़ियों पर विशाल शिव मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। इनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और ये स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए खास है। त्रिपुरा के खानपान में भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ का मोस्टिंग सेबा, जो टमाटर की चटनी है, बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा बांस के अंकुर की करी और बांगुई चावल त्रिपुरा के पारंपरिक व्यंजन हैं। रियांग जनजाति की पोर्क डिशेस और फिश स्टू भी यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में शामिल हैं। यहाँ के खाने में ताजगी और स्थानीय मसालों का खास स्वाद होता है, जो हर किसी को पसंद भी आता है। त्रिपुरा के त्योहार और मेले यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। खारची पूजा, जो 14 देवताओं की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गरिया पूजा, जो आदिवासी जनजातियों के फसल कटाई से जुड़ा त्योहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।

0: जरूर आएं और इसकी खूबसूरती और संस्कृति को करीब से महसूस करें। ये राज्य न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो इसे जानने और देखने की चाहत रखता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची प्रिया।
1: श्रोताओं, आपको उम्मीद है आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा पता है airnsgtalks@gmail.com और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। पूर्वोत्तर डायरी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले सप्ताह फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें अनुमति दें। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। संकलन व आलेख कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम में हम भारत के सहकारी क्षेत्र में आ रहे परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे। श्रोताओं, देश में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का समापन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के साथ होगा। इन कार्यक्रमों में सहकारिता क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए प्रमुख सुधारों, गतिविधियों और भविष्य की दिशा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सहकार से समृद्धि का विजन क्या है, पिछले 5 वर्षों में भारत के सहकारी क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव आए हैं और इन सुधारों का लाभ किसानों, महिलाओं, युवाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक किस प्रकार पहुंचा है। श्रोताओं, महात्मा गांधी का सपना था कि भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बने और विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उनका मानना था कि ग्राम स्वराज की इस सोच का सबसे मजबूत आधार सहकारिता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं, संसाधनों को साझा करते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं, तभी सामूहिक समृद्धि का रास्ता खुलता है। आज भी सहकारिता की यही भावना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण सामर्थ्य मानी जाती है। पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और नई पहल की गयी। आइए समझते हैं कि सहकार से समृद्धि के इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए।
2: सहकारिता आंदोलन भारत में नया नहीं है। देश में इसकी शुरुआत एक सदी से भी पहले हुई थी और आज लाखों सहकारी समितियां कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, बैंकिंग और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। इसी आवश्यकता को देखते हुए 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य था देश के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को जमीन पर उतारना। केंद्र सरकार की वर्ष 2025 की उपलब्धियों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 114 प्रमुख पहल शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य सहकारी समितियों को केवल ऋण देने वाली संस्थाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुउद्देश्यीय केंद्र बनाना है। इसी सोच के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के मॉडल उपनियमों में बदलाव किया गया ताकि वे कृषि के साथ साथ डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण और अन्य गतिविधियों में भी काम कर सकें। सरकार के अनुसार अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन नए उपनियमों को अपनाया है। सहकारिता क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई नई संस्थाओं का भी गठन किया गया। इनमें नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से सहकारी उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के जरिए गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल शामिल है। सहकारिता को नए क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में सरकार ने भारत टैक्सी जैसी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां टैक्सी और बाइक चालक स्वयं सहकारी संस्था के सदस्य हों। इससे उन्हें कम कमीशन देना पड़े और उनकी आय का बड़ा हिस्सा सीधे उनके पास तक पहुंचे।
1: श्रोताओं, सहकार से समृद्धि की सोच अब केवल कृषि या

0: बैंकों तक सीमित नहीं है, इसका दायरा तकनीक, डिजिटल सेवाओं, निर्यात, जैविक खेती और नए रोजगार के अवसरों तक बढ़ाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार ने सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ उदय भान सिंह जी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट गांधीनगर के पूर्व निदेशक डॉक्टर ए के अस्थाना से इन्हीं विषयों पर विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड।
2: भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। दुनिया की कुल सहकारी समितियों में से लगभग 25% भारत में है। आज देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनसे करीब 30 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। सहकारिता देश में लगभग 30 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और इसका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। इसलिए सहकारिता केवल एक संगठन या व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक जीवंत हिस्सा है। सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता महसूस की गई। इसी सोच के तहत जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, तब प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया और आज यही मंत्र देश की सहकारिता नीति का मूलाधार बन गया है।
1: सहकार से समृद्धि।
0: श्रोताओं, किसी भी व्यवस्था को समय के साथ प्रभावी बनाए रखने के लिए उसका आधुनिक होना आवश्यक है। आज जब देश तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब सहकारिता क्षेत्र भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ रही है, सेवाएं तेज हो रही है और गाँवों तक नई सुविधाएं पहुँच रही है। यही डिजिटल बदलाव किस तरह ग्रामीण भारत को नई ताकत दे रहा है, सुनिए हमारी अगली रिपोर्ट।
3: पिछले कुछ वर्षों में सहकारी संस्थाओं व ग्रामीण आजीविका को डिजिटल तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल कामकाज को आसान बनाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं को नए अवसर देना और गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना भी है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के कंप्यूटरीकरण का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। हजारों PACS को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। इससे रिकॉर्ड रखना आसान हुआ है, सेवाएं तेज हुई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, डिजिटल भुगतान तथा कई सरकारी सेवाओं की पहुँच भी बढ़ी है। अब इसी दिशा में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लोक ओएस नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। ये मंच स्वयं सहायता समूहों और उनके संगठनों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की बचत, ऋण भुगतान, आजीविका और अन्य वित्तीय गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे कागजी काम कम होता है, लेन देन पर नजर रखना आसान होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। हर वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी इसी प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाता है। लोक ओएस की पहुंच आज 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 762 जिलों, 7241 विकास खंडों, 2,57,000 ग्राम पंचायतों और 5,92,000 गांवों तक हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 94 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह और लगभग 10 करोड़ सदस्य जुड़े हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए हाल ही में शी लिप्स नाम का एक डिजिटल मंच भी शुरू किया गया। ये महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने, उसे आगे बढ़ाने और उसकी प्रगति पर नजर रखने में मदद करेगा। कृषि और गैर कृषि दोनों तरह के ग्रामीण उद्यमों को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से लखपति दीदी अभियान को भी मजबूती मिल रही है। इस प्लेटफॉर्म पर 3,87,00,000 संभावित लखपति दीदियों की प्रगति की डिजिटल निगरानी की जा रही है। इससे योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और उनकी प्रगति पर लगातार नजर रखने में सहायता मिल रही है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सहकारिता के इन प्रयासों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी संस्थाएं लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर ये बदलाव किस तरह दिखाई दे रहा है और सहकारिता कैसे लोगों के जीवन को बदल रही है, आइए इस विषय पर सुनते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट मदुरई के डॉक्टर ए मयिल मुरुगन को।
2: पहले अधिकांश सहकारी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तो थीं, लेकिन गांव के लोगों को अपनी कई आवश्यक सेवाओं के लिए शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। अब सहकारिता के माध्यम से अनेक बुनियादी सुविधाएं गांवों तक पहुंच रही हैं। आज महिलाएं और युवा सहकारिता से मिलने वाले विभिन्न लाभों के प्रति अधिक जागरूक हैं। सहकारी मेडिकल स्टोर से लेकर गोल्ड लोन जैसी सुविधाएं भी अब उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हमारी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के माध्यम से ऋण मिल रहा है। इसके साथ ही वे किसी भी समय, चाहे 1 रुपया हो या उससे अधिक राशि, आसानी से जमा या हस्तांतरित कर सकती हैं। इन सुविधाओं से ग्रामीण

0: इन लोगों को विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और उन्हें सहकारिता का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। जब महिलाएं और युवा सहकारिता की अवधारणा और उसके लाभों को समझते हैं तो वे अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं सहकारिता एक बेहतर दुनिया के निर्माण का आधार है।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए सुधारों ने पारदर्शिता, तकनीक और जन भागीदारी को नई दिशा दी है। सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों तक नए अवसर पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत की समृद्धि का रास्ता उसके गांवों से होकर जाता है। उनका ग्राम स्वराज का विचार आत्मनिर्भर, सहभागी और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना करता था। आज सहकार से समृद्धि का मंत्र उसी सोच को नए समय की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग मोहित सिंह।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मू जलडमरू मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्तीकृताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केंद्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मंचात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते, कोंकणे, गोवायां, मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्तसंचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिलावर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अन्तिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्यां स्पर्धायां इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरू मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्येन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायाम् उक्तं यत् 26,000-2,000 प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिकवायोः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिकवायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरू मध्यात् द्रवीय प्राकृतिकवायोः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरम् आवश्यकवस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियमः सफलतया प्रभावशीलः अभवत्। मन्त्रिणा अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटिरूप्यकाधिक धनं च प्रदत्तम्। श्रीचौहानेन सर्वेषां राज्यानां, केन्द्रशासितप्रदेशानां च ग्रामीणविकासमन्त्रिभिः साकं वीबीजी रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षा अपि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांशधनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्तनिधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानाम् अभ्यन्तरे एव प्रदातुं शक्येत।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित

यो द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढसम्बन्धाः आर्थिकसहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। तेनग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचारभिन्नता नास्ति, अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इण्डोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिकसहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिला वर्गस्य 20-20 क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले संपूर्ण स्पर्धायाम् अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपान्त्य स्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन वेस्टइंडीज दलं पराजित्य अपि च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं पराजित्य अंतिम स्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं। होर्मुज जल डमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another information-packed edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To walk you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, बहुत धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त. इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स. एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीस अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स.
1: ओपेक प्लस ने अगस्त से कच्चे तेल के दैनिक उत्पादन में 1,88,000 बैरल्स की वृद्धि करने की घोषणा की. सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त. और एफपीआईज ने जून में रुख पलटा. भारतीय पूंजी बाजार में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश.
0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, let's look at the first big story of the day. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after a meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman said the decision is aimed at supporting market stability.

0: also reaffirmed their commitment to a cautious and flexible approach with the option to increase, pause or reverse production adjustments depending on market conditions. The oil producing group said it will continue to monitor the global oil market and ensure compliance with agreed production targets. The next meeting of the participating countries is scheduled for the 2nd of August.
1: हम एक बार फिर से श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करेंगे. हम रविवार के हर रविवार की तरह जैसे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता. और अगर श्रोताओं के पास कोई सवाल हैं तो आप 2331-4444 2371-0481 और 2371-7106 पर फ़ोन कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर. और अगली खबर पर चलते हैं सरबजीत. हम पीएनजी पर जो कुछ पाबंदियां लगाई थी सरकार ने अभी पिछले दिनों जो संकट था पश्चिम एशिया का उसको देखते हुए वो हटा ली गई हैं. सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं. ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से फिर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी. हॉर्मुज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था. आशुतोष, अभी दो खबरें जो एक कवि सरबजीत ने पढ़ी हैं और दूसरी ये है वो ओपेक प्लस ने कहा है कि हम अब रोज़ उत्पादन बढ़ा रहे हैं डेली का अपना, और पीएनजी पर जो हमारे यहाँ पाबंदियाँ लगी थी वो भी हटा ली गई हैं. अब कुल मिलाकर लग रहा है कि जिस तरह के संकट के बादल छा रहे थे वो कुछ हद तक छट गए हैं. थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रहे हो क्या? बाज़ार भी लगेगा आश्वस्त, जो हम महसूस कर रहे हैं बाज़ार पर भी दिखाई देगा?
2: जी बिल्कुल, जो पिछले एक दो हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं वो एक राहत का माहौल है, और वो ही देखा गया है कि किस तरह इक्विटी मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया है इस इन इन न्यूज़ को लेके. अच्छा खासा एक जंप एक शॉर्ट पीरियड में इस दौरान मार्केट्स में देखा गया है. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक मेरे ख्याल एक सीख छुपी है सारे इन्वेस्टर्स के लिए कि मैं काफ़ी सारे ऐसे निवेशकों को जानता हूँ जिन्होंने ये लगभग तय कर लिया था कि ये तो लड़ाई लंबी चलने वाली है और मार्केट्स में तनाव का माहौल बना रहेगा, मार्केट्स और नीचे जाएंगी, और काफ़ी पैसा उन्होंने मार्केट से विड्रॉ किया. और उसके बाद अचानक मार्केट में ये पलटफेर आया पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, और जो एक 4-5% का गेन एक जो काफ़ी लंप में मार्केट में देखा गया है, तो उन्होंने लॉस में पार्टिसिपेट किया, गेन से वो वंचित रह गए. तो उनके पोर्टफोलियोज में ये बढ़त नहीं दिखती है जो कि मार्केट में दिख रही है. तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये माहौल, ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, तो कुछ कुछ न्यूज़ आती रहेगी, हो सकता है संधि होगी, यूएस ईरान के बीच में संधि ना हो पाए. आपको अपने गोल्स अपने सर्कमस्टांसेस पर फोकस करके निवेश का निर्णय लेने हैं, ना कि यूएस ईरान में क्या चल रहा है उस पर. तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और मार्केट्स में थोड़ी राहत का माहौल है उससे प्रोत्साहन प्राप्त करें.
0: All right. So as you know, Subodh, you know, he raised hopes. He said that the clouds are looking just better now, little bright and blue. And you spoke about categories of funds. So all said and done, let's just revise our basics of investing in mutual funds. When it comes to choosing the category of fund, how important is the criteria of investment goals, risk appetite? What do you have to say to our listeners on this?
2: Very important. In fact, more important than choosing the right fund, people पीपल ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट पिकिंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड, बट इवन बिफोर दैट there is no definition of a best mutual fund. Nobody knows which is going to be the best. Often people mistake best mutual fund with the top performing mutual fund. They want to be in the fund which will give best returns in the next 1 year.
0: Correct.
2: And that is a wrong

0: pursuit, in my opinion. The definition of best fund starts from what is the most suitable investment fund for you. And as you rightly said, that one has to focus on one's risk appetite, one's investment objectives, one's time horizon, and accordingly pick the right one. If you have at least 5-7 years or more of investment horizon, you can look at flexicap funds, value-oriented funds, all the mainstream diversified equity funds, they can be suitable. If you have 3 to 5 years of investment horizon, look at hybrid funds. You have funds like balance advantage funds, which optimize, which give you a fair mix of equity and debt, and those could be your choice. Anything below 3 years, you have to have you have to play caution. You don't have to maximize returns and focus more on debt oriented investment products. So broadly, that is the main thumb rule that should guide anybody's asset allocation.
1: We'll come back to you on that, Ashutosh. Meanwhile, let's connect with our first caller from Jaipur. Jitinder ji, swagat hai, sawal pooch.
2: हाँ सर, ये जैसे काफी दिन से मार्केट डाउन हुआ, अभी थोड़ा सा उठा है, तो हम आपसे एक दो प्रश्न है। एक तो कौन सा सेक्टर सस्ता है सेक्टोरियल फंड में, ठीक है, कौन सा सेक्टर सस्ता? आईटी तो है ही है, तो और एक दूसरा कौन सा है? और दूसरा सर की वो एक क्लीन एनर्जी फंड आया था मोतीलाल ओसवाल में, क्लीन एनर्जी, तो किस टाइप का फंड है उसको, मतलब उसमें कौन सा किस टाइप का स्टॉक रहेगा क्लीन एनर्जी?
0: देखिए, पहला आपने बोला कि कौन से सेक्टर में, मेरे लिहाज में आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप यही एक निर्णय है जो कि आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आप इस बात की इतनी बहुत चिंता ना करें कि कौन सा सेक्टर सस्ता है। आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए। एक अगर आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, तो ये निर्णय फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, उनका दैट इज़ देयर डे जॉब, वो यही उनका काम है। तो आप अगर सेक्टर्स का चुनाव करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो फंड मैनेजर का काम है, आधा काम फंड मैनेजर का आप अपने जिम्मे ले रहे हैं, तो उससे बचिए। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव के अलग अलग टाइम पीरियड्स में अच्छे रिटर्न देने का जिनका अनुभव है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करिए, और बाकी डिसीजंस आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्लीन एनर्जी, देखिए आजकल काफ़ी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, इस टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज हैं, उनके लिए माना जाता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये जितने भी क्लीन एनर्जी थीम पे निर्धारित इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इस टाइप के एवेन्यूज में देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि सोलर, विंड, रिन्यूएबल, इस टाइप के एनर्जी सोर्सेज से बेनिफिट प्राप्त कर सकती हैं, और वो उनमें निवेश करते हैं।
3: जी आशुतोष, आपने अभी जैसा बताया कि सेक्टर्स पर गौर ना करें आप ज़्यादा, ये आप फंड मैनेजर पर छोड़ दें, लेकिन हर छोटे बड़े हर निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि भाई जब म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो सेक्टोरल फंड्स बना रही हैं, तो नेचुरली जिज्ञासा रहती है लोगों की, अच्छा हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई, तो आखिर ऐसे फंड्स हैं तो लोग उन पर जाएंगे भी, किनको बचना चाहिए और किनको उन पर जाना चाहिए, लेकिन इस पर चलिए हम आगे बात करेंगे। अभी सोनीपत से दीपक दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार सर।
3: नमस्कार
4: सर, मुझे एक इसके बारे में पूछना है, सेबी का कोई नया फंड आया था SIF करके, और दूसरा एक क्वेश्चन है जीरोधा का एक लाइफ साइकिल फंड आया 2041, दोनों के बारे में बता दीजिए सर, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे क्या होगा, ये क्या प्लान है इनका?
0: जी, SIF जो आपने कहा, ये एक नए टाइप के फंड्स हैं। आप ये मानिए कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में है। 10 लाख का इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, और ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स नहीं यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर्स में ज़्यादा एक्सपोजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी हाई रिस्क स्ट्रेटजीज ये लोग यूज़ कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए निषेध हैं बाय रेगुलेशन। हाई मिनिमम टिकट साइज इनका काफ़ी हाई है, इनको माना जाता है कि उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो इस टाइप के थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उनके रिस्क को समझते हैं।

0: और उस रिस्क के लिए उनमें एपिटाइट है। तो SIF को कुल मिलाकर मैं कहूँगा बहुत नए प्रोडक्ट हैं, इनको थोड़ा समय दीजिए। कुछ नोवेल्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने में सक्षम है कि नहीं है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्या ये कुछ ऐसी आपकी निवेश की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है जो कि एक साधारण लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं होती है, ये अभी ओपन क्वेश्चंस हैं, इनका कोई बहुत डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इन फंड्स को थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए, इनमें निवेश करने की जल्दी में न रहें, कुछ ऐसा आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो बिल्कुल कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे फोमो कहते हैं उसमें पढ़कर इनमें इन्वेस्ट ना करें, इनको अपने आप को प्रूफ करने दीजिए उसके बाद निर्णय लीजिए। दूसरा आपने पूछा लाइफ साइकिल फंड, जी ये भी एक नए प्रकार के फंड्स हैं, ज़ीरोधा ने पहला फंड अभी लॉन्च किया है, NFO पीरियड शेयर उसका अभी ऑन है। ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि अगर आपका मानिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शुरू में ज़्यादा इक्विटी में एलोकेट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती जाएगी, जैसे जैसे निवेश के इनके इन फंड्स की अवधि समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे ये इक्विटी से थोड़ा सेफ डेट में ऑटोमेटिकली आपका पैसा मूव करते जाएंगे। तो ये काफ़ी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जिसमें आपको एसेट रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो की नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वो फंड हाई रिस्क से थोड़ा मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क की तरफ बढ़ता चलेगा जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अगेन मैं यही कहूँगा कि नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो पहला प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह निवेश करते हैं, क्या ये आपको अच्छा एक्सपोजर और ओवरऑल टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, इनका खर्चा कैसा होता है। हाइब्रिड्स में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनमें कुछ कॉम्पोनेंट डेट होता है, कुछ इक्विटी होता है, एक मिश्रित ये प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी तौर पर देखा गया है कि इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इक्विटी के नज़दीक होता है, इक्विटी के बराबर होता है, तो उस सेंस में ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन सकते हैं। हाँ, टैक्स में ज़रूर ये टैक्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि रीबैलेंसिंग आपके लिए टैक्स फ्री हो जाती है, फंड करता है, आपको नहीं करनी होती। तो कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ शायद इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, समय दीजिए इनको, इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए।
1: ऑलराइट, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, केशव जी अपना सवाल पूछें। जी
2: सर, प्राइवेट और गवर्नमेंट हो जाएगी, तो वहाँ हमारे को एक सजेशन देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं एजेंट के द्वारा, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जो एजेंट हमसे जो फंड बताएगा वो किस ढंग के तरीके से हम समझे कि ये सही हमें रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एफडी है और एफडी 2 महीने बाद मैच्योर हो जाएगी, तो सही सिचुएशन क्या है कि आपको ये एफडी के बराबर कोई म्यूचुअल फंड है?
0: जी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपका शायद कुछ FD में निवेश है जो आप म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हो, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपको सलाह दे रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड में जाने की, वो कैसे आप पता करें कि वो सलाह सही है कि नहीं। तो देखिए दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको यूलिप से बचना है, काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब आप कोई किसी बैंक के थ्रू किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करने जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड बताकर यूलिप बेच दी जाती है। पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यूलिप ना बेची जाए। अगर किसी भी निवेश प्रोडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि उसमें कुछ इंश्योरेंस भी आपको साथ में मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि एक निवेश के साथ अगर इंश्योरेंस मिश्रित है तो एक यूलिप प्रोडक्ट है, आप उनसे बचें। पहला तो ये। दूसरा ये कि आप नए इन्वेस्टर हैं, मेरी राय में किसी भी नए इन्वेस्टर को आप सारा अपना पैसा जितना भी आपका FD में है उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। आप एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में आप मात्र 500 रुपये 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बहुत छोटी रकम म्यूचुअल फंड में लगाएं, 2-3 महीने उसमें निवेशित रहें, फिर उसको रिडीम करिए, पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप ये फुल साइकिल करके देखिए, आपको फर्स्ट हैंड थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। उसके बाद थोड़े बड़ी मात्रा में थोड़े बड़े अमाउंट का निवेश प्लान करें, और शुरुआती निवेशकों के लिए अगर आपके पास लंबा टाइम होराइजन है तो मेरा ख्याल एक Nifty 50 बेस्ड इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। उसमें सारे ही फंड लगभग एक जैसे होते हैं, फंड का चुनाव करना बहुत आसान होता है। किसी भी निफ्टी 50 फंड में एक छोटी रकम से शुरुआत करिए, उसमें कुछ 2-4 महीने बने रहिए, उसको देखिए, उसको ट्रैक करिए, और उसमें से पैसा रिडीम भी करिए। जब आप ये फुल साइकिल कर लेंगे अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बड़ा निवेश करने के लिए।
3: जी, और हम लौटे अपने सवाल पर कि सेक्टर्स हैं तो क्यों ना हम उनको भी एक्सप्लोर करें।
0: जी, तो देखिए मेरी

0: राय में आम तौर पर ज़्यादातर निवेशकों को सेक्टर फंड से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सेक्टर लेंगे आपको पहले ये देखना होगा कि क्या वो सेक्टर का आपका अपना एक्सपोजर उस सेक्टर में आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कितना है। अब जैसे बैंकिंग फंड की आप बात करते हैं तो बैंकिंग फंड के बहुत सारे सेक्टर फंड्स आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स फंड्स भी बैंकिंग के आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना आम तौर पर किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो 25 से 30% या उससे भी ज़्यादा मात्रा में उनका पैसा बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी लगा होता है। तो अगर आप ये नॉलेज के साथ किसी सेक्टर फंड का चुनाव नहीं करेंगे तो आप बहुत ओवर एक्सपोजर शायद ले लेंगे किसी भी सेक्टर में। तो पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड्स बनाए ही निवेशकों के लिए एक बहुत ही आसान, सुगम, हैंड्स फ्री एक्सपोजर के लिए गए थे। अगर आपको फिर भी किसी सेक्टर पे कोई खास कन्विक्शन है, कुछ खास जानकारी है जिसके बलबूते पर आप उस सेक्टर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेना ही चाहते हैं तो 5-7%, 10%, उससे ज़्यादा मेरे राय में आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
1: जी,
2: एंड लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर वांट्स टू आस्क। मिस्टर रामाकांत, प्लीज पोज योर क्वेश्चन। रामाकांत जी, सवाल पूछें।
3: जी नमस्कार, मैं कोलकाता से रामाकांत सिंह बोल रहा हूँ।
2: जी,
3: मैंने लास्ट 5-6 महीने में थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है एमएस में। ये हमको कितने दिन तक चलाना चाहिए और इसे रिलेटेड इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा कुछ जानकारी दें प्लीज।
0: जी, तो पहला सवाल, कितने दिन तक? देखिए, म्यूचुअल फंड्स के कोई निश्चित अवधि के प्रोडक्ट्स नहीं है। आप जब तक इसमें निवेशित रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, आपके पास फुल लिक्विडिटी होती है, आप जब भी पैसा निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं। तो ये एफडी की तरह कोई फिक्स्ड टेन्योर वाले फंड्स नहीं होते हैं। आपकी मर्जी है, ये आप पे निर्धारित करता है कि आपको कब पैसे की ज़रूरत है, आप तब इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका लंबे समय का निवेश है, आपने इक्विटी में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने पैसे की बढ़ोतरी के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो इसमें बने रहिए। कम से कम इक्विटी फंड्स के निवेश को 5-7 साल आपको कम से कम देने होते हैं जिससे कि उसका कुछ बेनिफिट आपको प्राप्त हो पाए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक पेड़ लगाने की तरह है जिसमें आपको कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, नहीं सालों में आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो आप इसमें बने रहिए और इसकी एनएवी जो आपको मिली होगी उसकी ग्रोथ होती है। आप अगर उसकी एनएवी ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे एनएवी बढ़ेगी वो आपका गेन है। तो जब आप बेचेंगे, बढ़ी हुई एनएवी पे बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका गेन है म्यूचुअल फंड से।
1: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से, शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
4: मेरा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड में, ICICI के, तो उनमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। क्या आर्बिट्राज फंड कंसिडर किया जाए या डेट फंड के रिटर्न इतने कम क्यों हुए हैं रिसेंट टाइम्स? बिकॉज एफडी में तो वी हैव टू पे टैक्स और टीडीएस वगैरह एवरी ईयर, एंड डेट फंड में वी आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स अंटिल अनलेस वी रिडीम। सर, दूसरा सवाल है, इफ वी मर्ज टू फ्लेक्सी कैप स्कीम और सिमिलर इक्विटी स्कीम, तो क्या एक मर्ज मतलब एक से निकल के दूसरे में जाए तो क्या रिडेम्पशन माना जाएगा, या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जिसमें हमें टैक्स ना लगे, हम दो फंड को एक मर्ज कर दे एक ही फंड में, एक ही फंड है उसके, एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिडेम्पशन, और देयर इज नो सच स्कीम एंड वी हैव टू गो वाया रिडेम्पशन स्कीम? थैंक यू।
0: श्योर। पहला सवाल आपका शॉर्ट टर्म फंड को लेकर, देखिए हाल फिलहाल में जैसे ये ग्लोबल सिचुएशन जो रहा है, वॉर का सिचुएशन रहा है, तो यील्ड्स बॉन्ड मार्केट में बढ़ी हैं। जब भी यील्ड बढ़ती हैं तो बॉन्ड फंड्स के रिटर्न गिरते हैं, बॉन्ड्स के रिटर्न गिरते हैं, और उसी लाइन पर बॉन्ड फंड्स के रिटर्न भी गिरते हैं। तो कुछ हाल फिलहाल के 2-3 महीने बॉन्ड फंड्स के लिए मुश्किल रहे हैं और वही उनके रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। फंड का चुनाव आपका अच्छा है, आप बने रह सकते हैं इस फंड में, और आपका एनीवेज शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो एफडी के आसपास या एफडी से शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे पाए। तो उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप उम्मीद रखते हैं तो शायद आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। उतने रिटर्न देने में फंड सक्षम है। हाँ, पिछले 2-3 महीने डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे माहौल बदलेगा तो इनके रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। आर्बिट्राज फंड्स आपने कहा, देखिए वही 5-6% रिटर्न की अगर आपकी अभिलाषा है तो आर्बिट्राज फंड्स आपको मेरा ख्याल निराश नहीं करेंगे। डेट फंड से थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन उनका बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स एडवांटेज। डेट फंड्स आपकी स्लैब रेट पर, अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो आपको उतना टैक्स देना पड़ जाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। आर्बिट्राज फंड्स वहीं इक्विटी के तरह टैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड्स का थोड़ा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आप उस लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न

0: एक्सपेक्टेशन, फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप 6% के दायरे में आसपास अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप तो आर्बिट्राज फंड्स को देख सकते हैं। इक्विटी से फिर आपने तीसरा सवाल पूछा, स्विच आप करना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो देखिए टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आप अगर सेम फंड हाउस के भी दूसरे फंड में आप मूव करते हैं, यहाँ आप सेम फंड के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में मूव करते हैं, तो भी उसे रिडम्पशन एंड बाय ट्रीट किया जाता है और उस पर टैक्स लगेगा। तो देखिए ऐसा कोई भी तिलिस्म नहीं है जिससे आप उससे बच पाएं। तो सोच समझ कर, आपका इन्वेस्टर के लिए लेसन यही है कि आप सोच समझ कर अपने रिडम्पशंस प्लान करें, बहुत रेकलेसली एक फंड से दूसरे में जल्दी जल्दी चर्न ना करें।
1: और अमित जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, सवाल पूछें।
2: थैंक यू सर। सर दो सवाल थे कि मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड में क्या फर्क है, और लिक्विड फंड और ओवरनाइट में क्या डिफरेंस हो, ये जानना था। मैं फोन पे आपका आंसर सुनता हूँ। थैंक यू
0: जी। योर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कैप और मल्टी एसेट, फर्क ये है कि मल्टी एसेट फंड्स एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं। इनमें इनके मैंडेट में इन्हें कम से कम तीन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। टिपिकली इन फंड्स में देखा गया है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या सिल्वर, और कुछ फंड्स थोड़ा सा रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट फंड्स में मिलता है। अब इस कैटेगरी के अलग अलग फंड्स काफ़ी अलग अलग तरीके से मैनेज होते हैं, तो ये बहुत कंपेरेबल एक दूसरे से शायद नहीं होते। कोई इक्विटी में बहुत ज़्यादा रखता है, कोई इक्विटी में बहुत कम रखता है, तो डिफरेंट फंड्स कैन हैव अ वेरी डिफरेंट एसेट एलोकेशन दैट दे फॉलो, बट द ब्रॉड प्रिमाइस इज एज पर द रेगुलेटरी मैंडेट दे हैव टू इन्वेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन एटलीस्ट थ्री एसेट क्लासेस। सो दैट इज मल्टी एसेट फॉर यू। मल्टी कैप फंड्स आर प्योर इक्विटी फंड्स विच इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड ईच ऑफ दीज थ्री मार्केट कैप सेगमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 25% ईच। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट।
3: जी अगले कॉलर है दिल्ली से, राजीव स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: मार्केट मंत्रा जी, जैसे मेरे को SIP करनी है, तो मैं PSE इक्विटी फंड मेरे लिए ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि स्मॉल कैप जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके?
0: देखिए अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों से ही बचें, PSU और स्मॉल कैप। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें और उससे शुरुआत करें, क्योंकि बाकी दोनों काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हाई रिस्क हो सकते हैं। तो शुरुआती इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन कैटेगरीज में से कोई एक या दो फंड्स का चुनाव करें और उसमें अपना SIP शुरू करें।
1: और BT पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पुणे से, सवाल पूछें।
5: हाँ गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग।
5: मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने बात की थी कि यूलिप में ना करे, यूलिप लिंक्ड जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी रहता है इन्वेस्टमेंट, और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड, और यूलिप में बताया जाता है कि उसमें टैक्स फ्री इनकम रहता है और एडिशनल उसमें इंश्योरेंस भी रहता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या यूलिप लिंक्ड जो रहता है प्लान उसमें इन्वेस्ट करें प्लीज?
0: देखिए मेरी राय में जैसे मैंने पहले कहा था, आप यूलिप से बचें। यूलिप्स एक क्योंकि वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि ना आपको इंश्योरेंस पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट एक एफिशिएंट तरीके से काम करती है। थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन्स उनमें ज़्यादा होते हैं, शुरू के ही एक दो साल में काफ़ी कमीशन्स में आपका पैसा कट जाता है, तो कंपाउंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जितना पैसा बचता है, तो आपको शुरू में ही जो सेटबैक लगता है, योर रिटर्न्स आर ऑलवेज कैचिंग अप। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के लिए यही रहती है कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, अपनी इंश्योरेंस नीड के लिए एक सस्ता साधारण टर्म प्लान लें जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में समय शोर्ड लीजिए और कम प्रीमियम में, और बचा हुआ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में निवेश करें।
3: जी, और कीमती धातुओं के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मई के बाद पहली बार साप्ताहिक बढ़त देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.2% की बढ़त हुई और ये 147,378 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% बढ़कर 237,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। और FPI का हाल ये रहा कि जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में लिवाली का रुख बनाए रखा FPIs ने, और इस महीने अब तक उन्होंने 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे हैं। जून में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अब ये रुख उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय ऋण बाजार में एफपीआई ने पिछले महीने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। जनरल लिमिट के तहत उन्होंने 30,620 करोड़ रुपए

0: 4,600 crore rupees across all segments. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी, शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे उस क्षेत्र की जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाला है, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई के उद्घाटन के बाद ये विषय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: सुबिमल जी, हमारे कई श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और आज की डिजिटल दुनिया में इनका इतना महत्व क्यों है?
3: देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये आज के डेट में एक एसेंशियल ड्राइवर बन गए कि स्मार्टफोन से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे जिस तरीका से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आगे आ रहा है, तो हर काम में आज में ये चिप्स की महत्व इतने बढ़ गए है, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ गए है। और इसके जो बेस होते हैं ये होते हैं कि ये सिलिकॉन की एकदम पतला सा स्लाइसेस होते हैं जिसको वेफर्स कहा जाता है, और ये स्लाइस ये प्यूरिफाइड क्वार्ट्ज से बनता है और इसके बाद फैब्रिकेशन के माध्यम से ये जितने जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो सर्किट्स होते हैं उसको रेगुलरली एच किया जाता है ये इसी वेफर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। और हम सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो फ्लैट है, लेकिन एक कॉमन चिप जो हमारे सामने होते हैं जो एक मिलीमीटर थिकनेस जिसके होते हैं इसमें करीब 30 माइक्रोस्कोपिक लेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने दिखने में छोटा सा और आसान सा लगता है उसके अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। और इसी से हर तरीका की आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स और हमारे घर के किचन के भी इक्विपमेंट्स को यही चिप्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं और इससे काम करते हैं वो।
2: जी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में एक नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उसकी परिकल्पना से निर्माण तक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली, कुछ कंपनियों से बातचीत भी की और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों से साझेदारी भी हो रही है।
4: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है

0: ट्रैक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।
1: सुबिमल जी, पीएम ने अभी जिस साझेदारी की बात की है, कुछ देशों के नाम लिए उन्होंने, उससे सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत को किस तरह का लाभ होगा उस साझेदारी से?
2: देखिए, प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शिता है, इसीलिए उन्होंने उसी समय 20 साल पहले ये सोचा था कि किस तरीका से ये चिप्स की महत्व रहेगा। और आज जब देश में इनकी सरकार ने 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रखे हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में है, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कई सारे कंपनीज कई सारे देशों से इसमें जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि भारत, जापान, थाईलैंड ये सीजी सेमी की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक पहलू था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो साझेदारी है, ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग देशों की, इससे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होते हैं, देखिए हम तो काफी देर से शुरू किए हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में जितने सारे चीज है, जैसे लिथोग्राफी, इसके साथ सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से ये चिप्स की फैब्रिकेशन होते हैं, और इसके बाद जो पैकेजिंग होते हैं उसमें और किसी कंपनी की और किसी देश की कैपेबिलिटीज होते हैं। तो ये जो होल ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जो प्रयास है, उसमें हमें कोऑपरेशन की माध्यम से चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसमें लगे हुए हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ महीना पहले आपने देखा था कि नेदरलैंड्स की कंपनी ASML, जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये चिप्स बनाने के लिए, उन्होंने भी टाटा के साथ एग्रीमेंट की कि ये हमारे साथ इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी देंगे। तो मुझे लगता है कि यही माध्यम से ये कोऑपरेशन जो है, ये साझेदारी, ये कई सारे देशों का बीच में भारत के साथ चलेगा। और ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है कि आप किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सस्टेन करें, और उसको सिक्योरिटी की तरफ से भी अगर देखा जाए, उसके क्रिटिकलिटी की तरफ से भी देखा जाए, तो ये पार्टनरशिप में भारत एक देश बन रहा है पूरे दुनिया के सामने कि हम भी इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़ गए।
1: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सेबी कंडक्टर का उत्पादन हमारे देश को कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है।
0: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
1: सुबिमल जी, क्या लगता है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इस परिवर्तन के लिए देश को किन नीतिगत और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता होगी?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम समय में भारत ये जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन होते हैं एडवांस फैब्रिकेशन की तरह, उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि अब हम इस वक्त सीजी सेमी ओसेट की बात कर रहा है सनाट गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल इनोग्रेट किया, लेकिन इसके अलावा एक टाटा का प्लांट भी ओसेट की आसाम की जगीरोड में, इसमें भी काम हो रहा है, और इस साल के अंत तक इसका भी चिप प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री जिस अप्रोच से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिशा दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी और फंडिंग की तरफ से भी काफी अच्छा स्केलिंग अप हुआ है। अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया था कुछ महीना पहले, और जिसमें से हमारी जो

0: 2026-27 की बजट में 8,000 करोड़ रुपया की बात आई थी ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। तो ये मुझे लगता है कि पॉलिसी की सपोर्ट या जितने सेमीकंडक्टर सेटअप्स आए उसमें और पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके से सरकार की तरफ से दिया जाए और फंडिंग अवेलेबल रहे चाहे सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। बहुत सारे संस्था इस और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आज ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने आप खुद इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इकोसिस्टम जो शुरुआत में एक क्रिएशन की तरफ थे आज वो कंसोलिडेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें से ये ISM 2.0 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आपके महत्व दिया गया है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी प्लस एक सोवरेन चिप आईपी की जो प्रयास हो रही है मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डिजाइन टैलेंट हमारे देश में है, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिंक्स ये सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो चिप्स में काम कर रहे हैं ग्लोबली उनकी R&D सेंटर्स हमारे देश में जैसे इंटेल क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। और इस सब को देखते हुए नीति आयोग के जो 10 साल के एक रोड मैप रखा गया है कि 120 से 150 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हमारा 2035 होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिसी सपोर्ट जिस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री का खुद का इस क्षेत्र को पर नजर है और इसके साथ साथ जो फंडिंग अवेलेबिलिटी हो रहा है ये पूरे वैल्यू चेन में मुझे लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं। तो ये सस्टेन तरीका से ये सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में रहना चाहिए।
1: जी, आपने जैसे बताया कि ये चिप डिजाइन में भारतीय प्रतिभाएं काफी समय से जानी जाती हैं, विख्यात हैं, और अब इसके निर्माण में भी कदम बढ़ाने से हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें कोई स्थान मिल सकता है। अगर आगे हम देखें, तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है भारत में।
0: यह जरूर सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा कहा गया है कि आप इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, लेकिन अगर देर से भी आए लेकिन स्टेडीली जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हाथ दी है जिस तरीके से इसको डिफ्यूजन की तरह सारे देश में लेके गए और जो डिजाइन की तरफ में जो हमारा एक प्रयास रहा है, अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी एक गोल दिया गया है कि 100 से ज्यादा एडवांस डिजाइन आईपीस इस देश में अगले कुछ साल में करना है। तो मुझे लगता है ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च जापान और EU के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्षेत्र में बहुत मैं समझता हूँ कि चेंजेस आएंगे बड़े कम समय में क्योंकि इस पर फोकस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी बात रह जाती है कि हमारी जो स्किलिंग है इस देश में और हम किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेन मैन पावर उसी स्किल सेट के हिसाब से हम प्रयास करें और उसमें भी कई सारे संस्था आज कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो यंग फोर्स है जो अपने हो सकता है पढ़ाई दूसरा क्षेत्र में कर रहा है लेकिन इसमें जो स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनको दे और वो भी एम्प्लॉयबल रहे ये सारे प्रयास में। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच और होल ऑफ द सेक्टर अप्रोच से जो किया जा रहा है मुझे लगता है कि हमारी एक अर्ली स्टेज एफोर्ट बहुत अच्छा रहे और उससे कंसोलिडेट करते करते आके हम इस क्षेत्र में अपना नेसेसिटी के अलावा भी ग्लोबली हम एक सिक्योर सप्लायर भी चिप्स के लिए बन सकता है।
1: जी, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश और नवाचार करते रहेंगे। सुविमल जी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को सरल और सारगर्भित ढंग से आपने समझाया। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com।

0: gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमा शमी और प्रोग्राम शुरू हो चुका है सांझ ढले। जी हां, सांझ ढल चुकी है, मौसम बाहर सुहाना है। भाई दिल्ली एनसीआर में तो मौसम काफ़ी सुहाना है, हल्के बादल छाए हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, तो इस खूबसूरत मौसम में हम आपके साथ हैं। खूबसूरत मौसम है तो खूबसूरत गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो जो गीत हम अब तक पहुँचाने वाले हैं, जो प्रोग्राम की शुरुआत हम जिस गीत के साथ करने वाले हैं, वो भविष्य की चिंता मत करो, अतीत में मत उलझो, जो भी है बस यही एक क्षण है। भाई साहिल लुधियानवी ने जीवन के दर्शन को बहुत ही सरल शब्दों में पिरोया है, इसलिए ये गाना जितना भाई उस टाइम पे खूबसूरत था जब ये 1965 में आया था, ये गीत उस टाइम पे जितना खूबसूरत था, आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो मन को उतना ही सुकून पहुंचता है। तो चलिए पहुंचा रहे हैं आप तक ये गीत।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

समय हुआ है 7:34 और पूरे 23 सेकंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम सांझ ढले, और मैं हूं आपके साथ हेमा शमी। वैसे जो गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो तीसरी मंजिल का है। मोहम्मद रफी की दमदार और जोशीली आवाज ने भाई सबको अपना कायल कर दिया। आरडी बर्मन का आधुनिक और वेस्टर्न स्टाइल संगीत जो उस दौर में काफी नया माना गया। शमी कपूर की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और डांस ने इस गीत को और भी ज्यादा यादगार बना दिया। आज भी ये गीत 1960 के दशक का सबसे ज्यादा रोमांटिक गीतों में से एक माना जाता है। तो बिल्कुल अभी पहुंच रहा है आपके पास ये गीत।

समय हुआ है 7:38 और पूरे लीजिए 38 सेकंड हो गए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर सांझ ढले और आज मैं हूं आपके साथ हेमा शमी। वैसे बाहर का मौसम है बेहद खूबसूरत और हम आना थोड़ी उमस है लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से राहत है और इस मौसम का आप और हम लुत्फ उठा रहे हैं। यहां पर मैं स्टूडियो में आप तक गीत पहुँचवा रही हूँ और आप वहाँ पर। वैसे समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि आपसे इजाजत ले ली जाए, तो अभी के लिए हेमा शमी को दीजिए इजाजत। पर 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, फिर आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, फिर आप

इंग्लिश में समाचार सुनेंगे और आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी 8:10 पर प्रोग्राम मधुरिमा में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपको छोड़े जा रही हूँ इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।

0: ब्रेक
1: दी। हाँ, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में चयनित सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
10: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प को जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सहयोग देने वाली संस्थाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदाय के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकारी संसाधनों के साथ साथ समाज की भागीदारी से स्कूलों में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी का एक प्रभावी उदाहरण है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मिशन कायाकल्प के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में जिससे बदलाव दिखाई देने लगे हैं। दक्षिण जिले के रामानुजन सर्वोदय कन्या विद्यालय महरौली में लगभग 48 लाख रुपए और सर्वोदय क्वेट सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में करीब 58 लाख रुपए की लागत से बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। वहीं पश्चिम जिले के मोहन गार्डन के सरकारी विद्यालयों में लगभग 77 लाख रुपए की लागत से व्यापक आधारभूत ढांचा सुधार कार्य और जनकपुरी में स्थित GSKV में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से आधारभूत मजबूती को बल दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के गोकुल और शाहदरा के विद्यालयों में भी बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प केवल रंग रोगन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी स्कूलों के समग्र रूपांतरण का अभियान है। इसके अंतर्गत स्कूल भवनों की मरम्मत, दीवालों की पेंटिंग और व्हाइट वॉशिंग, जजा शौचालयों का नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल के लिए RO पॉइंट,

0: और वाटर कूलर की स्थापना की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 1,00,000 रुपए से अधिक की संयुक्त सब्सिडी देकर रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पालम विधानसभा के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स एन्क्लेव में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस योजना को केंद्र सरकार से 90,00,000 रुपए और दिल्ली सरकार से 10,00,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ विकसित भारत जी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी रामजी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने 1 वर्ष का ग्रीन कैलेंडर तैयार किया है, जिसके अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। श्री चहल ने यह बात आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के 31वें संस्करण पर बीबी के दत्त कॉलोनी में सामूहिक वृक्षारोपण के आयोजन के दौरान कही। एक पेड़ माँ के नाम पहल पर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक उत्तरदायित्व का जन आंदोलन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आगामी वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम स्थल के तैयारियों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को करेंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक ग्रीन, क्लीन और स्वस्थ बनाना है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय और पश्चिम दिल्ली के बीच जुड़ाव को अधिक बेहतर बनाने के लिए आज मोरी गेट टर्मिनल से खेड़ी बाबा पुल के बीच नई बस सेवा रूट 753 एक्सटेंशन की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट।
3: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ये रूट जनकपुरी, विकासपुरी, हस्तसाल, शिव विहार, उत्तम नगर, हरिनगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सेंट्रल दिल्ली और मोरी गेट तक सीधा, किफायती और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन उपलब्ध कराकर आवागमन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस मार्ग का निर्धारण राजधानी में दफ्तर जाने वालों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वालों की सुविधा को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये रूट दिल्ली के सबसे व्यस्त अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्ट हब में से एक, मोरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डा और कश्मीरी गेट जैसे राजधानी के प्रमुख अंतरराज्यीय परिवहन केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा ये रूट अंतरराज्यीय बस सेवाओं और दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सुविधाजनक और किफायती कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन के रखरखाव कार्य के कारण कल कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जल बोर्ड ने बताया कि इन इलाकों में कल सुबह 10 बजे से लेकर अगले 8 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर और संपर्क करने की सलाह दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आज संसद भवन में देश की विभिन्न रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महामंत्री सुभाष गोयल भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने आने वाले मॉनसून सत्र के लिए सभी जरूरी इंतजाम और तैयारियां कर ली हैं। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत पूरी तरह से तैयार है।
4: एनडीएमसी की तो अपनी सत्र की तैयारी से पहले जो भी रखरखाव व्यवस्था सब चीजें हमारी पूरी तरह तैयार है। माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली हर चीजों के लिए तैयार है। मानसून की भी तैयारी हमने पूरी तरह कर रखी।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की गति और व्यापकता को नई परिभाषा दी है और जन कल्याण को सुशासन का केंद्र बिंदु बनाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात आज रोहिणी सेक्टर 10 स्थित सांवरिया से टेंट में आयोजित सांस्कृतिक संध्या को संबोधित करते हुए कही। उत्तर स्वामी मलाई मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह श्री कांची कामकोटी पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन और उपस्थिति में आयोजित किया गया था। समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने अपनी प्रतिभा और आजीवन साधना से भारतीय लोक परंपरा को नई प्रतिष्ठा दिलाई। साथ ही उनकी कला ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और अनगिनत कलाकारों को प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जाना भारतीय लोक कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
5: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज केशवपुरम जोन के गुजरावाला टाउन स्थित एक पार्क का नामकरण प्रख्यात समाजसेवी और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक स्वर्गीय डीजे सचदेवा की स्मृति में किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज बारिश हुई जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। और इसके साथ ही

0: आई नो ना।
1: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी वक्तव्य में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन साझा करने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। UKMTO ने बताया कि जहाज के होदेइदा से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अज्ञात सशस्त्र हमलावरों द्वारा हमले की सूचना दी है। मामले की जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। क्या प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपका, मधुरिमा और मैं हूँ आपके साथ हेमा शमी। समय मिलाइए, समय हुआ है 8:11 और पूरे 7 सेकेंड। भाई ये जो शो होता है वो होता है रागों पर आधारित गीतों पर। तो अभी जो गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं भाई बहुत ही खूबसूरत है। बहुत से लोग इस गीत को सिर्फ एक फिल्मी गाना मानते हैं, लेकिन संगीत प्रेमियों के लिए ये राग भैरवी और उर्दू गजल का एक शानदार संगम है। यही कारण है कि 40 से अधिक वर्षों बाद भी ये गीत महफिलों, गजल कार्यक्रम और संगीत समारोह में उतनी ही शिद्दत से सुना जाता है। तो आज ये गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं।

0: हवा हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।

किशोरदा की आवाज में बेहद खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, और ये जो गीत है वो राग यमन कल्याण पर आधारित था, और जो अब गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो फिल्म जंगली का है, और ये गीत भी राग यमन कल्याण पर आधारित है, और रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ है। रफ़ी साहब और लता जी की जो संगीतकार हैं वो शंकर जयकिशन है, और गीतकार हैं हसरत जयपुरी। तो चलिए इस गीत को बिल्कुल अभी आप तक पहुँचाते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मधुरिमा, मैं हूं आपके साथ हेमा शमी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

समय कह रहा है कि आपसे इजाजत ले ली जाए, तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पर 8:30 बजे आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, फिर 8:45 पर समाचार संध्या। फिलहाल आपको छोड़े जा रहे हैं हम दोनों फिल्म के एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर और हर लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से। फ्रांस और मैक्सिको विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। विंबलडन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हुए। भारत ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 10 पदकों के साथ विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना अभियान संपन्न किया और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 80वां संस्करण आज देश भर में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिकेट के रोमांच के साथ आज के कार्यक्रम को, जहां लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इस समय महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और इस मैच की और क्रिकेट के मैदान की ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, इस समय फाइनल मुकाबले में क्या ताज़ा अपडेट है?
1: शक्ति, पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और एमी जोन्स और डेनियल वायट होज ये दोनों ही अपना विकेट गंवाकर वापस जा चुकी हैं पवेलियन। तो इंग्लैंड जो है 36 रन पर 2 विकेट गंवा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो दोनों विकेट हैं वो किम गार्थ और एनेबल सदरलैंड ने लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना 9वां फाइनल आज खेल रही है और 6 बार इससे पहले विजेता बन चुकी है। और इंग्लैंड की जो टीम है वो अभी तक अपनी धरती पर T20 विश्व कप का कोई भी मुकाबला नहीं हारी है। इसी के साथ अगर हम इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 45 मुकाबले दोनों के बीच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 22 और इंग्लैंड ने 20 मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ अभी ऑस्ट्रेलिया की नज़रें अपने 7वें खिताब जीतने पर होंगी, वहीं इंग्लैंड जो है वो 2017 के बाद एक और ICC ट्रॉफी जीतने पर जोर कसेगा।
0: जी बिल्कुल, अपनी नज़रें रखेगा एक और ट्रॉफी पर, लेकिन कह सकते हैं कि आज के इस रात में किसी एक टीम का रिकॉर्ड टूटना जरूर तय है। इससे पहले भारत को कल इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन का योगदान दिया। 191 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने जैकब बेथल के 46 गेंद पर नाबाद 76 रन की पारी की बदौलत एक ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। बेथल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे आ गया है और अगला मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंगम में खेला जाना है। हालांकि इस मैच की सबसे खास बात रही युवा वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। महज 15 वर्ष 99 दिन की आयु में डेब्यू करते हुए वैभव ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का कीर्तिमान अपने नाम किया। वैभव ने खुद अपने अनुभव कैसे साझा किए सुनते हैं।
2: काफी अच्छा लग रहा है, ड्रीम ही था किसी के लिए भी इंडिया खेलना ही सबसे बड़ी बात होती थी। कि सबसे पहले मैंने अपने फादर को जाके रूम में बताया और किसी से मैंने बात नहीं की, और जो भी मेरे सर है जो भी मतलब मेरे जो साथ रहते हैं उन सबों को बताया। पापा खुश हुए और बोले बस कि जो करते आ रहे अभी तक वही करना है, प्रेशर नहीं है, बस अपने गेम को बैक करना है।
0: विशेष, जब भी वैभव मैदान पे उतरते हैं उनकी नजरों में कोई रिकॉर्ड होता है या कोई कीर्तिमान होता है, डेब्यू के साथ इस खिलाड़ी ने कितने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए?
1: देखिए शक्ति, वैभव जब भी मैदान पर उतरते हैं अपने खेल से सभी को प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स और आंकड़ों की बात करें तो वैभव 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में विजय हजारे ट्रॉफी में भी डेब्यू कर लिया था। उसके साथ भारतीय खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वो IPL में, 35 गेंदों में उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। उसके बाद 2008 में, दिलचस्प बात यह है कि 2008 में IPL जो है शुरू हुआ और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का जन्म हुआ, तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। और अभी उन्होंने अंडर 19 विश्व कप फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन की पारी खेलकर सभी को बहुत प्रभावित किया और इसी के साथ उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और उनको सचिन से बहुत रिलेट किया जाता है शक्ति, तो इसमें बताना चाहूंगा कि सचिन और वैभव की उम्र में, डेब्यू की उम्र में 1 साल का अंतर है और जो पहला स्कोर दोनों ने बनाया था उसमें भी सिर्फ 1 रन का ही अंतर है।
0: जी बिल्कुल, सचिन ने अपने पहले मुकाबले में 15 रन बनाए थे और वैभव 14 रन बना सके, लेकिन एक बहुत बेहतरीन ट्रेलर दुनिया के क्रिकेट जगत के लिए। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में होगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इससे पहले फ्रांस और मोरक्को ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं कल खेले गए मैच का हाल।
3: फ्रांस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के इस जीत के नायक किलियन एम्बापे रहे, जिन्होंने 69वें मिनट में मैच का एकमात्र गोल किया। फ्रांस को मिली पेनाल्टी का फायदा उठाते हुए एम्बापे ने बिना कोई गलती किए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। ये एम्बापे का इस विश्व कप में 7वां गोल है। हालांकि फ्रांस के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं रहा। पराग्वे ने पूरे मैच में मजबूत डिफेंस के बल पर फ्रांस को ज्यादा मौके नहीं दिए। पहले हाफ में फ्रांस के ज्यादातर शॉट का गोलकीपर ऑरलैंडो गिल ने आसानी से बचाव किया। दूसरे हाफ में लगातार बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार 69वें मिनट में फ्रांस को पेनाल्टी मिली और एम्बापे ने उसे गोल में बदलकर टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। इसके बाद फ्रांस ने बढ़त को अंत तक कायम रखा और 1-0 की जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
4: The French machine does indeed march on.
3: इससे पहले कल रात राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में मोरक्को ने सह मेजबान कनाडा को 3-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मैच की शुरुआत में कनाडा ने आक्रामक खेल दिखाया और कई अच्छे मौके बनाए, पर टीम इन मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही। इसके बाद 50वें मिनट में फ्री किक पर हकीमी के पास को अजेदीन ओनाही ने शानदार गोल में बदलकर मोरक्को को 1-0 की बढ़त दिला दी। 82वें मिनट में ओनाही ने एक और गोल करते हुए मोरक्को की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में सोफियाने रहीमी ने तीसरा गोल दागकर टीम की जीत पर मोहर लगा दी।
5: ब्राहिम डियास एंड नाउ रहीमी टू पुट द ग्लॉस ऑन इट।
6: यू गॉट प्लेयर्स ऑफ दिस क्वालिटी, द गोल्स कैन कम एट एनी मोमेंट।
5: द एटलस लायंस द फर्स्ट टीम टू बुक देयर प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप।
3: अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का मुकाबला फ्रांस से होगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: और फीफा के रोमांच के बाद अब बात विंबलडन के ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट की, जहां राउंड ऑफ 16 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में नोवाक जोकोविच का मुकाबला रोमान के साथ जारी है। वहीं यानिक सोनर का मुकाबला आपसे कुछ देर बाद जापान के शिंतारो मोचीजुकी से होगा। इसके अलावा 2 अन्य मुकाबले खेले जाने हैं, जहाँ महिला सिंगल्स में जेसिका पेगुला ने ईवा जोविका को हरा दिया है, जबकि आर्यना सबालेंका और कोको गौफ भी अब से कुछ देर बाद अपने मैच खेलेंगी। तो आइए जानते हैं किन किन खिलाड़ियों ने इस दौर में अपनी जगह बना ली है।
7: फ्रेंच ओपन चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विंबलडन प्रतियोगिता के तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं इटली के माटेओ बेरेटी ने और मेजबान ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर का टिकट हासिल किया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 2 घंटे 4 मिनट तक चले मुकाबले में फ्रांस के वैलेंटिन रॉयर को सीधे सेटों में 6-1, 6-3, 7-6 से हराया। ज्वेरेव ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले 2 सेट आसानी से अपने नाम कर लिए। तीसरे सेट में रॉयर ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन टाई ब्रेक में ज्वेरेव ने बेहतर खेल दिखाया और मैच अपने नाम कर लिया। मेजबान ब्रिटेन के 23 वर्षीय आर्थर फेरी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने फिनलैंड के ओटो विल्टानेन को 5-7, 7-6, 6-3, 6-3 से हराया। पहले सेट में हारने के बाद फेरी ने शानदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वे वर्ष 2000 के बाद विंबलडन मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचने वाले केवल 4थे ब्रिटिश वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भावना ने फाइनल्स में अपनी ही देश की पूजा को शूटआउट में हराकर महिलाओं का पैरा रिकर्व का खिताब जीता। इसके साथ ही भारत का यादगार अभियान 10 पदकों के साथ समाप्त हो गया।
8: चेक गणराज्य के नोवे मेस्टो में विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत की भावना ने फाइनल में अपने ही देश की पूजा जथ्यान पर एक शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में भारतीय अभियान का समापन किया। पूरी तरह से भारतीयों के बीच हुए इस फाइनल मुकाबले में भावना ने निर्णायक दौर में संयम बनाए रखा और टूर्नामेंट में अपना लगातार

0: और दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। वहीं पूजा जथ्यान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने इस प्रतियोगिता का समापन 10 पदक के साथ किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। भारत के स्वर्ण पदक की सूची में दोनों मिक्स टीम स्पर्धाओं की जीत भी शामिल थी। शीतल देवी और श्याम सुंदर स्वामी ने फाइनल में इंडोनेशिया को 147-143 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम का खिताब जीता, जबकि भावना और हरविंदर सिंह ने इंडोनेशिया पर 6-2 से जीत हासिल कर रिकर्व मिक्स टीम का खिताब अपने नाम किया। हरविंदर सिंह और सुंडी विजय ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स तथा भावना और पूजे जथ्यान ने पैरा रिकर्व महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब चलते हैं स्क्वाश की तरफ, जहां तन्वी खन्ना ने SRFI PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा करके ये खिताब जीता।
2: थर्ड सीड तन्वी खन्ना स्टेज अ रिमार्केबल कमबैक टू डिफीट इजिप्ट सेकंड सीडेड फरीदा वालिद आफ्टर बीइंग 2 गेम्स डाउन, द स्कोर लाइन रीडिंग 8-11, 2-11, 12-10, 11-9, 11-7 इन तन्वीज फेवर, क्लिंच द विमेंस टाइटल एट द HCL SRFI PSA चैलेंजर टूर्नामेंट एट मुंबई। तन्वी लुक्ड हेडेड फॉर ए स्ट्रेट गेम्स डिफीट आफ्टर ट्रेलिंग 4-8 इन द थर्ड गेम, बट फॉट बैक ब्रिलियंटली टू टर्न द कॉन्टेस्ट अराउंड इन 45 मिनट्स। इन द मेन्स फाइनल मलेशियाज एम साइफिक कमल रिकॉर्ड from 2 games down to beat Egypt's Yasin Shodi 6-11, 9-11, 11-8, 14-12, 11-8. The tournament witnessed high quality competition throughout the week. For Sports Scan, S. Kishore from Mumbai.
1: तन्वी शर्मा ने इस जीत के साथ बाद अपने अनुभव स्पोर्ट्स कैन की टीम के साथ साझा किए, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: Now I'm just very speechless because it's a long time since I won such a big tournament, and she's a really good player. She's been winning everything, and the last time we played, she won the match 3-2. It was very close. Just wasn't playing my best in the beginning of the match, and somehow at 8-4 something in me just turned, got my confidence back, and from there I found my length, I found my drops, saw that she was getting tired, and I just held on to that and I kept pushing till the end.
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल केवल एक फिटनेस गतिविधि नहीं, बल्कि देश के स्वास्थ्य और जागरूक करने के लिए विकसित भारत बनाने का एक जन आंदोलन है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज 80वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
4: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
1: तो कई समाधान लेकर के आती है इस फिटनेस वाली साइकिल, और इस अवसर पर मॉडल और अभिनेता नासिर अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह जल्दी उठना उनके लिए बेहद सुखद अनुभव रहा।
5: A pleasure to wake up at 4:15 in the morning to be able to make it here. So the energy was wonderful and itne sare log aaye the participate in this beautiful Fit India running for fitness. The minister of the sports as well to give us added encouragement about it. So it's wonderful. Cycling is a very simple exercise.
1: अब बात करते हैं बैडमिंटन की, क्योंकि आज पूरी दुनिया विश्व बैडमिंटन दिवस बना रही है। ये दिन हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा 2022 में की गई थी, जो 5 जुलाई 1934 को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना की याद दिलाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दिन कुछ और भी खास हो जाता है, क्योंकि आज ही भारत की सबसे सफलतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक पीवी सिंधु का जन्मदिन है, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 2 पदक और विश्व चैंपियनशिप जैसे कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं।
6: She becomes the first player from India ever to win gold at the World Badminton Championships.
1: तो एक बहुत शानदार खिलाड़ी पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स कैन की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने भारत में बैडमिंटन की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी है। और अब अंत में चलते चलते वापस एक बार लॉर्ड्स में खेले जा रहे T20 विश्व कप महिला विश्व कप के फाइनल के स्कोर पर नजर डाल लेते हैं, जहां 8 ओवर हो चुके हैं और इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 48 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए,

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र

0: कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और

0: शिक्षक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण

0: व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल

में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं।

0: था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेदजी नसरवानजी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स है, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहाँ इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1,000-1,200 crores every year to bring it to level where people even at 500 meters. अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा फिफ्थ जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप्स है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे। बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ

0: के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
1: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती हैं कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
1: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार

0: लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
1: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कंपटीशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग ईवी, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पति, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन

0: को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉरपोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है, जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए, हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग SHG ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गाँव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे, करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल के दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है, ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्री हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ो मादर की थाप गुजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों के बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हें को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर

0: है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती है।
1: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
1: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है। और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहते हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी एकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था, तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में, काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो एक कोशिश यही है कि हम

0: यूथ को प्रमोट करे, यूथ को एनकरेज करे और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दे।
1: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
2: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है, तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है, तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
2: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस RDC लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
3: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आँखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही

0: जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
1: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग

0: पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह फैसला बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। ये संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए से निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 2 ओवर में 1 विकेट खोकर 17 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की यात्रा पर दोहा के कतर में प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत। भारत कल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। अब समझ

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की।
1: दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उसके आकलन साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमरीका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहाँ वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 14 और 15 तारीख को ब्रसेल्स में आयोजित होने वाली तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। बैठक के बाद जारी बयान में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्य देशों में कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। तेल उत्पादक समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा कल से 8 जुलाई के बीच आयोजित किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति में उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाया जाएगा। अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर सहयोग और संवाद के लिए प्रमुख अंतर सरकारी मंच हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे सत्र की अध्यक्षता करेंगी। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। सरकारी टेलीविजन के अनुसार ग्रैंड मोसाला में आयोजित प्रार्थना सभा में खामनेई के तीनों पुत्रों के साथ राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हालांकि उनके उत्तराधिकारी मोजतबा खामनेई इस सभा में शामिल नहीं थे। 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई, उनके परिवार के कई सदस्यों और अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत के बाद से मोजतबा खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। मोजतबा खामनेई ने अपने पिता का स्थान लिया है, लेकिन उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने ईरान के नए नेता के ठिकाने के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा 9 जुलाई को मशहद में होगी। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों

0: में लगातार मजबूत हो रहे हैं।
1: मेरा
0: मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: एंड ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
3: इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां के ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की कथित गोलीबारी के बाद से तनाव और बढ़ गया है। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर क्षेत्र में हो रहे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों के बाद 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आज लंदन में विरोध प्रदर्शन किया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 5 ओवर में एक विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत। भारत कल से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार आपके साथ। मैं विकास, स्वागत आप सबका।

फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55 और गीता जी की आवाज थी। प्रोग्राम चल रहा है हरसिंगार, और हरसिंगार में बात आज करेंगे उस शख्स की जिसने 24 साल की उम्र में ही अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर ली। हालांकि कॉमर्शियल लेवल पर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव को इसके सराहा गया। कौन थे ये 24 साल के शख्स जिन्होंने 1948 में बनाई थी अपनी ये पहली फिल्म, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था राम गांगुली ने। जी, ये वही राम गांगुली है जिनके असिस्टेंट के तौर पर लंबा वक्त गुजारा शंकर जयकिशन ने। जी, आप उस तरफ तब तक सोचिए कि कौन था ये 24 साल का बांका नौजवान जिसने आते ही बना दी थी अपनी पहली फिल्म।

प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार, और हर श्रृंगार के इस प्रोग्राम में मैं आप तक कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे गीत भी लाने की जो हमारे दिल के बहुत करीब रहते हैं। बहरहाल, गीत से पहले मैंने आपसे एक शख्स के बारे में पूछा था जिन्होंने 24 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि यह फिल्म ज़्यादा चली नहीं थी, और लेकिन इसके आगे की फिल्में उनके कई कह सकते हैं कि उनके नाम को आगे बढ़ाने में, उनकी अदा को आगे बढ़ाने में बहुत कामयाब रहे। जिन लोगों ने गेस सही सही कर लिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने इस 24 साल के बाके नौजवान को नहीं पहचाना, उनके लिए बता दूं कि ये कोई और नहीं, राज कपूर रहे, जिनकी पहली फिल्म आग। टिकट खिड़की पर कोई आग नहीं लगा पाई, लेकिन अगली जो फिल्म थी बरसात, इस बरसात ने नाम और दाम की बरसात कर दी। संगीतकार के तौर पर भी मैंने नाम लिया था राम गांगुली का, और कहा था कि शंकर जयकिशन इनके असिस्टेंट के रूप में देखे जाते हैं। संगीतकार राम गांगुली पृथ्वीराज कपूर के नज़दीक आए न्यू थिएटर्स के जरिए, और जल्द ही पृथ्वी थिएटर के साथ जुड़ गए। संगीतकार होने के अलावा उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाने की कोशिश की, और इसका नाम रखा राम गांगुली प्रोडक्शंस। इस प्रोडक्शन हाउस के तहत उन्होंने 1951 में दीपक इस फिल्म का निर्माण भी किया।

10:50 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, और आपके साथ मैं हूं विकास। इन गीतों को सुनते हुए लगता है कि समय जैसे थम सा गया है। अगर इन गानों की सीडी या फिर अगर आप एलपी या ईपी पे इन गानों को सुनना पसंद करते हैं तो जब आप इनके कवर पर देखेंगे ना, एक साल दर्ज होगा। कोई हो सकता है 1954 बता रहा हो, कोई 1957, कोई 60, लेकिन हम जी रहे हैं 2026 में। और देखिए, ये गीत आज भी उतने ही सदाबहार हमें सुनाई देते हैं, और यही इन गीतों की खूबसूरती है जो आपको अपने साथ झूमने पर मजबूर कर देती है। हिंदी सिनेमा में बहुत से ऐसे नाम हुए जिन्होंने अपना योगदान अलग अलग तरीके से दिया। इनमें से एक नाम रहा फिल्मकार महबूब खान का। काफी उत्साही और महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे। पर्दे के पीछे अपनी डायरेक्शन का हुनर दिखाने से पहले उन्होंने पर्दे के आगे भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। अलीबाबा और 40 चोर में उन्होंने अभिनय छोटा सा किया और इस फिल्म के जरिए उन्हें मौका मिला अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन करने का। इनकी फिल्म रही आन, और आन के बाद अमर। ये फिल्म बनाकर महबूब खान ने अपनी पुरानी कृति औरत को मदर इंडिया की शक्ल दी। आज भी मदर इंडिया सदाबहार फिल्म मानी जाती है, और उसमें नरगिस की वो भूमिका कौन भुला सकता है।

रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ और साथ में लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है कोहिनूर और 1960 की ये फिल्म है। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप बने रहिएगा FM गोल्ड के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन

0: से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas, as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather.

0: Good evening, listeners, and welcome to this yet another information-packed edition of Market Mantra, the program in which we bring to you all the important economic news of the day. And besides news, today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To walk you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and myself, Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481.

0: और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: जी, बहुत धन्यवाद।
0: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
2: ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीस अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स।
0: ओपेक प्लस ने अगस्त से कच्चे तेल के दैनिक उत्पादन में 1,88,000 बैरल्स की वृद्धि करने की घोषणा की। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त और एफपीआईज ने जून में रुख पलटा। भारतीय पूंजी बाजार में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश।
2: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, let's look at the first big story of the day. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after a meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman said the decision is aimed at supporting market stability. They also reaffirmed their commitment to a cautious and flexible approach with the option to increase, pause or reverse production adjustments depending on market conditions. The oil producing group said it will continue to monitor the global oil market and ensure compliance with agreed production targets. The next meeting of the participating countries is scheduled for the 2nd of August.
0: हम एक बार फिर से श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करेंगे। हम रविवार के हर रविवार की तरह जैसे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता। और अगर श्रोताओं के पास कोई सवाल है तो आप 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर। और अगली खबर पर चलते हैं सरबजीत। हम पीएनजी पर जो कुछ पाबंदियां लगाई थी सरकार ने अभी पिछले दिनों, जो संकट था पश्चिम एशिया का उसको देखते हुए, वो हटा ली गई हैं। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से फिर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। आशुतोष, अभी दो खबरें जो एक कवि सरबजीत ने पढ़ी हैं और दूसरी ये है, वो ओपेक प्लस ने कहा है कि हम अब रोज उत्पादन बढ़ा रहे हैं डेली का अपना, और पीएनजी पर जो हमारे यहाँ पाबंदियां लगी थी वो भी हटा ली गई है। अब कुल मिलाकर लग रहा है कि जिस तरह के संकट के बादल छा रहे थे वो कुछ हद तक छट गए हैं। थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं, और क्या बाजार भी लगेगा आश्वस्त जो हम महसूस कर रहे हैं बाजार पर भी दिखाई देगा?
1: जी बिल्कुल, जो पिछले एक दो हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं वो एक राहत का माहौल है, और वो ही देखा गया है कि किस तरह इक्विटी मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया है इस इन इन न्यूज़

0: लेके अच्छा खासा एक जंप एक शॉर्ट पीरियड में इस दौरान मार्केट्स में देखा गया है. लेकिन बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक मेरे ख्याल एक सीख छुपी है सारे इन्वेस्टर्स के लिए कि मैं काफी सारे ऐसे निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने ये लगभग तय कर लिया था कि ये तो लड़ाई लंबी चलने वाली है और मार्केट्स में तनाव का माहौल बना रहेगा, मार्केट्स और नीचे जाएंगी, और काफी पैसा उन्होंने मार्केट से विड्रॉ किया और उसके बाद अचानक मार्केट में ये पलटफेर आया पिछले एक डेढ़ हफ्ते में और जो एक 4-5% का गेन एक जो काफी लंप में मार्केट में देखा गया है तो उन्होंने लॉस में पार्टिसिपेट किया, गेन से वो वंचित रह गए. तो उनके पोर्टफोलियोज में ये बढ़त नहीं दिखती है जो कि मार्केट में दिख रही है. तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी जरूरी है कि ये माहौल ये न्यूज ड्रिवन मार्केट है तो कुछ कुछ न्यूज आती रहेगी, हो सकता है संधि होगी, यूएस ईरान के बीच में संधि ना हो पाए. आपको अपने गोल्स अपने सर्कमस्टांसेस पर फोकस करके निवेश का निर्णय लेने हैं, ना कि यूएस ईरान में क्या चल रहा है उस पर. तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और मार्केट्स में थोड़ी राहत का माहौल है उससे प्रोत्साहन प्राप्त करें.
1: All right. So as you know, Subodh, you know, he raised hopes. He said that the clouds are looking just better now, a little bright and blue. And you spoke about categories of funds. So all said and done, let's just revise our basics of investing in mutual funds. When it comes to choosing the category of fund, how important is the criteria of investment goals, risk appetite? What do you have to say to our listeners on this?
0: Very important. In fact, more important than choosing the right fund, people often spend a lot of time thinking about picking the best mutual fund. But even before that, there is no definition of a best mutual fund. Nobody knows which is going to be the best. Often people mistake best mutual fund with the top performing mutual fund. They want to be in the fund which will give best returns in the next 1 year.
1: Correct.
0: And that is a wrong pursuit, in my opinion. The definition of best fund starts from what is the most suitable investment fund for you. And as you rightly said, that one has to focus on one's risk appetite, one's investment objectives, one's time horizon, and accordingly pick the right one. If you have at least 5-7 years or more of investment horizon, you can look at flexicap funds, value-oriented funds, all the mainstream diversified equity funds, they can be suitable. If you have 3 to 5 years of investment horizon, look at hybrid funds. You have funds like balanced advantage funds, which optimize, which give you a fair mix of equity and debt, and those could be your choice. Anything below 3 years, you have to have, you have to play caution. You don't have to maximize returns and focus more on debt-oriented investment products. So broadly, that is the main thumb rule that should guide anybody's asset allocation.
1: We'll come back to you on that, Ashutosh. Meanwhile, let's connect with our first caller from Jaipur. जितेंद्र जी स्वागत है, सवाल पूछे.
2: हाँ सर, ये जैसे काफी दिन से मार्केट डाउन हुआ, अभी थोड़ा सा उठा है, तो हम आपसे एक दो प्रश्न है. एक तो कौन सा सेक्टर सस्ता है सेक्टोरियल फंड में, ठीक है, कौन सा सेक्टर सस्ता, आईटी तो है ही है, तो और एक दूसरा कौन सा है. और दूसरा सर की वो एक क्लीन एनर्जी फंड आया था मोतीलाल ओसवाल में, क्लीन एनर्जी, तो किस टाइप का फंड है उसको, मतलब उसमें कौन सा किस टाइप का स्टॉक रहेगा क्लीन एनर्जी.
0: देखिए, पहला आपने बोला कि कौन से सेक्टर में, मेरे लिहाज में आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप यही एक निर्णय है जो कि आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए. तो आप इस बात की इतनी बहुत चिंता ना करें कि कौन सा सेक्टर सस्ता है. आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए. एक अगर आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है तो ये निर्णय फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए. उनका दैट इज देयर डे जॉब, वो यही उनका काम है. तो आप अगर सेक्टर्स का चुनाव करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो फंड मैनेजर का काम है, आधा काम फंड मैनेजर का आप अपने जिम्मे ले रहे हैं. तो उससे बचिए. आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव के अलग अलग टाइम पीरियड्स में अच्छे रिटर्न देने का जिनका अनुभव है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करिए और बाकी डिसीजंस आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्लीन एनर्जी देखिए, आजकल काफी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, इस टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके लिए माना जाता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये जितने भी क्लीन एनर्जी थीम पे निर्धारित इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इस टाइप के एवेन्यूज में देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि सोलर, विंड, रिन्यूएबल, इस टाइप के एनर्जी सोर्सेज से बेनिफिट प्राप्त कर सकती हैं और वो उनमें निवेश करते हैं।
3: जी आशुतोष, आपने अभी जैसा बताया कि सेक्टर्स पर गौर ना करें आप ज्यादा, ये आप फंड मैनेजर पर छोड़ दें, लेकिन हर छोटे बड़े हर निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि भाई जब म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो सेक्टोरल फंड्स बना रही हैं तो नेचुरली जिज्ञासा रहती है लोगों की, अच्छा हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई, तो आखिर ऐसे फंड्स हैं तो लोग उन पर जाएंगे भी, किनको बचना चाहिए और किनको उन पे जाना चाहिए, लेकिन इस पर चलिए हम आगे बात करेंगे। अभी सोनीपत से दीपक दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार सर।
3: नमस्कार
4: सर, मुझे इसके बारे में पूछना है, सेबी का कोई नया फंड आया था SIF करके, और दूसरा एक क्वेश्चन है जीरोधा का एक लाइफ साइकिल फंड आया 2041, दोनों के बारे में बता दीजिए सर, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे क्या होगा, ये क्या प्लान है इनका।
0: जी SIF जो आपने कहा ये एक नए टाइप के फंड्स हैं, आप ये मानिए कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में है। 10 लाख का इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स नहीं यूज करते हैं। ये फ्यूचर्स में ज्यादा एक्सपोजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजिशंस भी ले सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी हाई रिस्क स्ट्रेटजीज ये लोग यूज कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए निषेध हैं बाय रेगुलेशन। हाई मिनिमम टिकट साइज इनका काफी हाई है, इनको माना जाता है कि उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो इस टाइप के थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उनके रिस्क को समझते हैं और उस रिस्क के लिए उनमें एपिटाइट है। तो SIF को कुल मिलाकर मैं कहूंगा बहुत नए प्रोडक्ट है, इनको थोड़ा समय दीजिए, कुछ ये नोवेल्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने में सक्षम है कि नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्या ये कुछ ऐसी आपकी निवेश की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है जो कि एक साधारण लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं होती है, ये अभी ओपन क्वेश्चंस हैं, इनका कोई बहुत डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इन फंड्स को थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए, इनमें निवेश करने की जल्दी में न रहें, कुछ ऐसा आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो बिल्कुल कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे फोमो कहते हैं उसमें पढ़कर इनमें इन्वेस्ट ना करें, इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए उसके बाद निर्णय लीजिए। दूसरा आपने पूछा लाइफ साइकिल फंड, जी ये भी एक नए प्रकार के फंड्स हैं, जीरोधा ने पहला फंड अभी लॉन्च किया है, NFO पीरियड शेयर उसका अभी ऑन है। ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि अगर आपका मानिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शुरू में ज्यादा इक्विटी में एलोकेट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती जाएगी, जैसे जैसे निवेश के इनके इन फंड्स की अवधि समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे ये इक्विटी से थोड़ा सेफ डेट में ऑटोमेटिकली आपका पैसा मूव करते जाएंगे। तो ये काफी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जिसमें आपको एसेट रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो की नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वो फंड हाई रिस्क से थोड़ा मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क की तरफ बढ़ता चलेगा जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अगेन मैं यही कहूंगा कि नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो पहला प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह निवेश करते हैं, क्या ये आपको अच्छा एक्सपोजर और ओवरऑल टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, इनका खर्चा कैसा होता है। हाइब्रिड्स में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनमें कुछ कंपोनेंट डेट होता है, कुछ इक्विटी होता है, एक मिश्रित ये प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन काफी तौर पर देखा गया है कि इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इक्विटी के नजदीक होता है, इक्विटी के बराबर होता है, तो उस सेंस में ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन सकते हैं। हाँ टैक्स में जरूर ये टैक्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि रीबैलेंसिंग आपके लिए टैक्स फ्री हो जाती है, फंड करता है आपको नहीं करनी होती, तो कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ शायद इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, समय दीजिए इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए।
1: ऑलराइट, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, केशव जी अपना सवाल पूछें। जी
5: सर हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट जो सब्जी से मशहूर हो जाएगी, तो वहाँ हमारे को एक सजेशन देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं एजेंट के द्वारा, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जो एजेंट हमसे जो फंड बताएगा वो किस ढंग के तरीके से हम समझे कि ये सही हमें रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एफडी है और एफडी 2 महीने बाद मैच्योर हो

0: तो सही सिचुएशन क्या है कि आपको ये एफडी के बराबर कोई म्यूचुअल फंड है?
1: जी जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूँ आपका शायद कुछ एफडी में निवेश है जो आप म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपको सलाह दे रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड में जाने की, वो कैसे आप पता करें कि वो सलाह सही है कि नहीं। तो देखिए, दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको यूलिप से बचना है। काफी बार ये देखा गया है कि जब आप कोई किसी बैंक के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करने जाते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड बताकर यूलिप बेच दी जाती है। पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यूलिप ना बेची जाए। अगर किसी भी निवेश प्रोडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि उसमें कुछ इंश्योरेंस भी आपको साथ में मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि एक निवेश के साथ अगर इंश्योरेंस मिश्रित है तो एक यूलिप प्रोडक्ट है, आप उनसे बचें। पहला तो ये। दूसरा ये कि आप नए इन्वेस्टर हैं, मेरी राय में किसी भी नए इन्वेस्टर को आप सारा अपना पैसा, जितना भी आपका एफडी में है, उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। आप एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में, आप मात्र 500 रुपए, 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बहुत छोटी रकम म्यूचुअल फंड में लगाएं, 2-3 महीने उसमें निवेशित रहे, फिर उसको रिडीम करिए, पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप ये फुल साइकिल करके देखिए, आपको फर्स्ट हैंड थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। उसके बाद थोड़े बड़ी मात्रा में, थोड़े बड़े अमाउंट का निवेश प्लान करें। और शुरुआती निवेशकों के लिए अगर आपके पास लंबा टाइम होराइजन है, तो मेरा ख्याल एक निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। उसमें सारे ही फंड लगभग एक जैसे होते हैं, फंड का चुनाव करना बहुत आसान होता है। किसी भी निफ्टी 50 फंड में एक छोटी रकम से शुरुआत करिए, उसमें कुछ 2-4 महीने बने रहिए, उसको देखिए, उसको ट्रैक करिए, और उसमें से पैसा रिडीम भी करिए। जब आप ये फुल साइकिल कर लेंगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बड़ा निवेश करने के लिए।
2: जी, और हम लौटे अपने सवाल पर कि सेक्टर्स हैं तो क्यों ना हम उनको भी एक्सप्लोर करें।
1: जी, तो देखिए, मेरी राय में आम तौर पर ज्यादातर निवेशकों को सेक्टर फंड से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सेक्टर लेंगे, आपको पहले ये देखना होगा कि क्या वो सेक्टर का आपका अपना एक्सपोजर उस सेक्टर में आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कितना है। अब जैसे बैंकिंग फंड की आप बात करते हैं, तो बैंकिंग फंड के बहुत सारे सेक्टर फंड्स आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स फंड्स भी बैंकिंग के आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना आम तौर पर किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे, तो 25-30% या उससे भी ज्यादा मात्रा में उनका पैसा बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी लगा होता है। तो अगर आप ये नॉलेज के साथ किसी सेक्टर फंड का चुनाव नहीं करेंगे, तो आप बहुत ओवर एक्सपोजर शायद ले लेंगे किसी भी सेक्टर में। तो पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड्स बनाए ही निवेशकों के लिए एक बहुत ही आसान, सुगम, हैंड्स फ्री एक्सपोजर के लिए गए थे। अगर आपको फिर भी किसी सेक्टर पे कोई खास कन्विक्शन है, कुछ खास जानकारी है जिसके बलबूते पर आप उस सेक्टर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेना ही चाहते हैं, तो 5-7%, 10%, उससे ज्यादा मेरे राय में आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
2: जी,
3: एंड लेट्स हियर व्हाट आवर नेक्स्ट कॉलर वांट्स टू आस्क। मिस्टर रामाकांत, प्लीज पोज योर क्वेश्चन। रामाकांत जी, सवाल पूछें।
4: जी नमस्कार, मैं कोलकाता से रामाकांत सिंह बोल रहा हूँ।
3: जी,
4: मैंने लास्ट 5-6 महीने में थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू किया है एमएस में। ये हमको कितने दिन तक चलाना चाहिए और इसे रिलेटेड इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा कुछ जानकारी दें प्लीज।
1: जी, तो पहला सवाल, कितने दिन तक? देखिए, म्यूचुअल फंड्स की कोई निश्चित अवधि के प्रोडक्ट्स नहीं है। आप जब तक इसमें निवेशित रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, आपके पास फुल लिक्विडिटी होती है, आप जब भी पैसा निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं। तो ये एफडी की तरह कोई फिक्स्ड टेन्योर वाले फंड्स नहीं होते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप पे निर्धारित करता है कि आपको कब पैसे की जरूरत है, आप तब इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका लंबे समय का निवेश है, आपने इक्विटी में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने पैसे की बढ़ोतरी के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो इसमें बने रहिए। कम से कम इक्विटी फंड्स के निवेश को 5-7 साल आपको कम से कम देने होते हैं, जिससे कि उसका कुछ बेनिफिट आपको प्राप्त हो पाए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक पेड़ लगाने की तरह है, जिसमें आपको कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, नहीं सालों में आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो आप इसमें बने रहिए, और इसकी एनएवी जो आपको मिली होगी उसकी ग्रोथ होती है। आप अगर उसकी एनएवी ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे एनएवी बढ़ेगी वो आपका गेन है। तो जब आप बेचेंगे, बड़ी हुई एनएवी पे बेचेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका गेन है म्यूचुअल फंड से।
2: जी, अगले कॉलर है भोपाल से, शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: नमस्ते सर।
2: नमस्कार।
5: मेरा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड में, आईसीआईसीआई की, तो उनमें

0: इतना अच्छा रिटर्न नहीं है, क्या आर्बिट्राज फंड कंसिडर किया जाए या डेट फंड के रिटर्न इतने कम क्यों हुए हैं रिसेंट टाइम्स? बिकॉज एफडी में तो वी हैव टू पे टैक्स और टीडीएस वगैरह एवरी ईयर, एंड डेट फंड में वी आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स अनलेस वी रिडीम। सो दूसरा सवाल है, इफ वी मर्ज टू फ्लेक्सी कैप स्कीम और सिमिलर इक्विटी स्कीम, तो क्या एक मर्ज मतलब एक से निकल के दूसरे में जाए तो क्या रिडेम्पशन माना जाएगा, या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जिसमें हमें टैक्स ना लगे, हम दो फंड को एक मर्ज कर दे एक ही फंड में, एक ही फंड है उसके, एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिडेम्पशन और देयर इज नो सच स्कीम एंड वी हैव टू गो वाय रिडेम्पशन स्कीम? थैंक यू।
1: श्योर। पहला सवाल आपका शॉर्ट टर्म फंड को लेकर, देखिए हाल फिलहाल में जैसे ये ग्लोबल सिचुएशन जो रहा है, वॉर का सिचुएशन रहा है, तो यील्ड्स बॉन्ड मार्केट में बढ़ी हैं। जब भी यील्ड बढ़ती हैं तो बॉन्ड फंड्स के रिटर्न गिरते हैं, बॉन्ड्स के रिटर्न गिरते हैं और उसी लाइन पर बॉन्ड फंड्स के रिटर्न भी गिरते हैं। तो कुछ हाल फिलहाल के दो तीन महीने बॉन्ड फंड्स के लिए मुश्किल रहे हैं और वही उनके रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। फंड का चुनाव आपका अच्छा है, आप बने रह सकते हैं इस फंड में और आपका एनीवेज शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो एफडी के आसपास या एफडी से शायद थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे पाए, तो उससे ज्यादा रिटर्न अगर आप उम्मीद रखते हैं तो शायद आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। उतने रिटर्न देने में फंड सक्षम है, हाँ पिछले दो तीन महीने डिसअपॉइंटिंग रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल में जैसे माहौल बदलेगा तो इनके रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। आर्बिट्राज फंड्स आपने कहा, देखिए वही 5-6% रिटर्न की अगर आपकी अभिलाषा है तो आर्बिट्राज फंड्स आपको मेरा ख्याल निराश नहीं करेंगे। डेट फंड से थोड़े से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं लेकिन उनका बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स एडवांटेज। डेट फंड्स आपकी स्लैब रेट पर अगर आप 30% ब्रैकेट में है तो आपको उतना टैक्स देना पड़ जाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी कम हो जाता है। आर्बिट्राज फंड्स वही इक्विटी के तरह टैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड्स का थोड़ा बढ़ जाता है, तो बिल्कुल आप उस लिहाज से देख सकते हैं। लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप 6% के दायरे में आसपास अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप तो आर्बिट्राज फंड्स को देख सकते हैं। इक्विटी से फिर आपने तीसरा सवाल पूछा, स्विच आप करना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो देखिए टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आप अगर सेम फंड हाउस के भी दूसरे फंड में आप मूव करते हैं, यहां आप सेम फंड के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में मूव करते हैं तो भी उसे रिडम्पशन एंड बाय ट्रीट किया जाता है और उस पर टैक्स लगेगा। तो देखिए ऐसा कोई भी तिलिस्म नहीं है जिससे आप उससे बच पाए, तो सोच समझकर आपका इन्वेस्टर के लिए लेसन यही है कि आप सोच समझकर अपने रिडम्पशन प्लान करें, बहुत रेकलेसली एक फंड से दूसरे में जल्दी जल्दी चर्न ना करें।
2: और अमित जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, सवाल पूछें।
3: थैंक यू सर। सर दो सवाल थे कि मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड में क्या फर्क है और लिक्विड फंड और ओवरनाइट में क्या डिफरेंस है, ये जानना था। मैं फोन से आपका आंसर सुनूंगा। थैंक यू
1: जी। योर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कैप और मल्टी एसेट, फर्क यह है कि मल्टी एसेट फंड्स एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं, इनमें इनके मैंडेट में इन्हें कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। टिपिकली इन फंड्स में देखा गया है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या सिल्वर, और कुछ फंड्स थोड़ा सा रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट फंड्स में मिलता है। अब इस कैटेगरी के अलग अलग फंड्स काफी अलग अलग तरीके से मैनेज होते हैं तो ये बहुत कंपेरेबल एक दूसरे से शायद नहीं होते, कोई इक्विटी में बहुत ज्यादा रखता है कोई इक्विटी में बहुत कम रखता है, तो डिफरेंट फंड्स कैन हैव अ वेरी डिफरेंट एसेट एलोकेशन दैट दे फॉलो, बट द ब्रॉड प्रिमाइस इज एज पर द रेगुलेटरी मैंडेट दे हैव टू इन्वेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस, सो दैट इज मल्टी एसेट फॉर यू। मल्टी कैप फंड्स आर प्योर इक्विटी फंड्स विच इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड ईच ऑफ दीज 3 मार्केट कैप सेगमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 25% ईच, सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट।
4: जी अगले कॉलर है दिल्ली से, राजीव स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
5: मार्केट मंत्रा जी, जैसे मेरे को SIP करनी है तो मैं PSU इक्विटी फंड मेरे लिए ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि स्मॉल कैप जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके?
1: देखिए अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों से ही बचें, PSU और स्मॉल कैप। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें और उससे शुरुआत करें क्योंकि बाकी दोनों काफी कॉन्सेंट्रेटेड हाई रिस्क हो सकते हैं। तो शुरुआती इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन कैटेगरीज में से कोई एक या दो फंड्स का चुनाव करें और उसमें अपना SIP शुरू करें।
2: और BT पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पुणे से, सवाल पूछें।
6: हाँ गुड इवनिंग मैम।
2: गुड इवनिंग।
6: मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने बात की थी

0: ना करे यूनिट लिंक्ड जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी रहता है इन्वेस्टमेंट, और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड और यूनिट में बताया जाता है कि उसमें टैक्स फ्री इनकम रहता है और एडिशनल उसमें इंश्योरेंस भी रहता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या यूनिट लिंक्ड जो रहता है प्लान उसमें इन्वेस्ट करे?
1: देखिए, मेरी राय में जैसे मैंने पहले कहा था, आप यूलिप से बचें। यूलिप्स एक क्योंकि वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि ना आपको इंश्योरेंस पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट एक एफिशिएंट तरीके से काम करती है। थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन उनमें ज्यादा होते हैं, शुरू के ही एक दो साल में काफी कमीशन में आपका पैसा कट जाता है, तो कंपाउंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जितना पैसा बचता है तो आपको शुरू में ही जो सेटबैक लगता है, योर रिटर्न्स आर ऑलवेज कैचिंग अप। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के लिए यही रहती है कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, अपने इंश्योरेंस नीड के लिए एक सस्ता साधारण टर्म प्लान लें जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में समय शोर्ड लीजिए और कम प्रीमियम में, और बचा हुआ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में निवेश करें।
2: जी, और कीमती धातुओं के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मई के बाद पहली बार साप्ताहिक बढ़त देखी गई। एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.2% की बढ़त हुई और ये 147,378 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% बढ़कर 2,37,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। और एफपीआई का हाल ये रहा कि जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में लिवाली का रुख बनाए रखा एफपीआई ने, और इस महीने अब तक उन्होंने 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे हैं। जून में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अब ये रुख उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय ऋण बाजार में एफपीआई ने पिछले महीने काफी दिलचस्पी दिखाई थी। जनरल लिमिट के तहत उन्होंने 30,620 करोड़ रुपए, एफएआर के जरिए 21,652 करोड़ रुपए और वीआरआर के तहत 3,246 करोड़ रुपए का निवेश किया। और आशुतोष, आज वक्त इतना ही है सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
3: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र। सी यू टुमारो, अंटिल देन गुड बाय।
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप प्रोग्राम आप ही का अपना पसंदीदा गीत मेरे मनमीत।

जी, हमें भी आपसे बहुत बहुत प्यार है और ये प्यार का ही एक रूप है जिसमें मिलना बिछड़ना बना रहता है। घड़ी की सुई बता रही है कि विकास, अब तुम्हारे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, इस वादे के साथ कि आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। लेकिन हाँ, एक बात और, ये जो गीत आप तक पहुँच रहा है, इस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी, और इस गीत की खासियत यह है कि इसमें ये तमाम नाम जिनकी आवाज़ें हम तक पहुंच रही हैं वो हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, और बहुत रेयर ओकेजन ऐसा रहा जहां पर ये सारी आवाज़ें एक गीत में हमें सुनाई देती हैं। तो आज के लिए बस विकास, अब चाहता है आपसे इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया

0: है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जल संबंधों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तनाव बढ़ गया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर जारी दमनकारी कार्रवाई के बीच हुई है। पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां जूनियर डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और अस्पताल की सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state, triggering rescue operations and rain-related incidents yesterday. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli for today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said that a new chapter is being written in Shivpuri's history.
2: यहाँ केवल मिसाइल का प्रोपेलेंट नहीं,
1: नॉट ओनली मिसाइल प्रोपेलेंट बट ऑल्सो एक्सप्लोजिव्स, मिसाइल असेंबली एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन शिवपुरी. दिस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन साउथ एशिया.

0: बड़ा निवेश निजी क्षेत्र की कोई कंपनी का है।
1: Mr. Sindhia said that the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister Modi's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashvani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar began his official visit to West Asia yesterday, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said, they explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. Home Minister Amit Shah and Coal and Mine Minister G. Kishan Reddy yesterday reviewed the situation of illegal coal mining and coal theft in a high-level meeting in New Delhi. During the meeting, the Home Minister expressed concern over the worsening situation of illegal coal mining and theft in Dhanbad and nearby areas. In cricket, Australia defeated England by 7 wickets to lift the ICC Women's T20 World Cup at Lord's Cricket Ground in London. Chasing a target of 151 runs set by England, Australia scored 153 runs for the loss of 3 wickets in 17.1 overs. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. Put into bat first, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही है, साथ ही देश को उन्होंने प्रेरणा दी है कि हम आत्मनिर्भर तो हों लेकिन अपनी सेनाओं के बारे में हम और अधिक जानें, उस कार्य प्रणाली को समझें और साथ ही जो हमारे मन में हमारी सेनाओं के लिए सम्मान है, हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान है, उसे हम गाढ़ा भी करते जाएं, क्योंकि ये काम आसान तो नहीं है जो हमारे बल, हमारी सेनाएं हमारे लिए करती हैं। हमारे हर पर्व पर एक एहसान हमारे फौजियों का है, वो सीमा पर तैनात है, इसलिए हम सीमा के भीतर सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, अभी तक हमारी उपलब्धियां क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके मन में भी हो। हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। इस समय स्टूडियो में हैं हमारे विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, भारतीय थल सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। एयर कमोडोर डॉक्टर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ हैं, वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी। कमांडर विक्रमजीत सिंह हैं, नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत।
5: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
6: जय हिंद।
4: जय हिंद सर। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे साथियों, आपको इनका जवाब आज मिलेगा, बहुत रोचक तरीके से मिलेगा और बेहद साधारण सी भाषा में मिलेगा जो आप और मैं यानी हम सिविलियन आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुनवा रही हूँ मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है, सुनिए।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में

0: शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: तो सुना आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमें प्रेरित किया है। आइए अब अपने सवाल हम सीधे अपने विशेषज्ञों तक लेकर जाते हैं और इनके जवाब जानते हैं। तो संजय मेस्टन सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये क्यों जरूरी है?
2: पहली बात धन्यवाद और जय हिंद। आपके इंट्रोडक्शन में दो मेरे को पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे। एक, आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि लोगों को फौज के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा आपने ये भी बोला कि हम सिविलियन को पता होना चाहिए। तो एज अ यूनिफॉर्म पर्सन मैं तीनों के बिहाव पे बोल सकता हूँ कि सिविल और यूनिफॉर्म की बात नहीं है
1: जी,
2: अमूमन तौर पे इट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म
1: जी,
2: क्योंकि घर वाले भी हमारे ना वो शब्द नहीं पसंद करते सिविल। एनीवे, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोला है, लोगों को भारतीय सेना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देश में तीन पिलर्स होते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इकोनॉमिक होता है और डिफेंस, ये सबसे जरूरी तीन चीजें हैं और इकोनॉमी और डिफेंस को रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ देशवासियों को पता होना चाहिए कि सेना क्या है। अब आत्मनिर्भरता भारत क्यों जरूरी है, देखिए आपने एक और अच्छा शब्द बोला, बहुत सीधी सरल भाषा में हमें बताना चाहिए, और वही मैं सोचता हूँ। देखिए आम जनता के लिए ये पता होना चाहिए कि एक डिपेंडेंसी होती है, जैसे कोविड के टाइम में आप देखिए
1: जी सर,
2: कि जो भी घर में कोई भी फार्मर था या कोई भी इंसान जिसने घर में सब्जियां उगा रखी थी, सब कुछ उगा रखा था, तो उसको क्या है कि कोविड के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दुकान पे, एक ही दुकान पे निर्भर है
1: जी,
2: और वो दुकान भी बंद हो जाती या वो दुकानदार बोलता है मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास स्टोर खत्म हो गया, तो आप सोचिए वो क्या हाल हो जाता है। तो ये छोटा सा मैं घरेलू एग्जांपल दे रहा हूँ। सेना में आत्मनिर्भरता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हमारे जवान और ऑफिसर्स वो इक्विपमेंट के साथ लड़ते हैं, और वो इक्विपमेंट में एक कॉन्फिडेंस, भरोसा जब आता है, जब हमें पता है ये हमारे द्वारा ही बनाया गया है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है, जिस टेरेन में हम लोग रहते हैं, जिन पहाड़ों में रहते हैं या जिन कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है, और आज जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहर देशों में ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है, और आज भारत सेल्फ रिलायंट देश है, जो खुद चाहे AI हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉकेट्स हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें एक दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर सेल्फ रिलायंस है और एक पावर है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देश में हमारी सेना को पूरा एक भरोसा होता है कि जो हमें लड़ाई के लिए चाहिए, लॉजिस्टिक्स से लेकर सब कुछ, वो हमें स्पेयर पार्ट से लेकर सब मिलता रहेगा। तो ये है आत्मनिर्भर भारत, और ये पिछले मैं बोलूंगा एक डिकेड के अंदर या 10 साल में इसमें बहुत तीव्रता हमने देखी है। तो छोटे से सारांश में ये है आत्मनिर्भर भारत,
1: यानी हमारे पास अपनी बनाई हुई अगर चीजें रहेंगी तो एक तो हमें भरोसा रहेगा कि हमारी जरूरत के हिसाब से है, दूसरा अगर हमें उसके कुछ पार्ट्स चाहिए तो वो हमें समय पर मिलेंगे, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर अश्मिंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम मॉडर्न एज में वॉरफेयर जो है उसमें काफी बदलाव देख रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से बताएं कि इन दिनों क्या नई तकनीक आ रही है और क्या भारत में वो उपलब्ध है या अभी भी हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं।
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और जो जनरल साहब ने बताया और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। 1991 में एक पिक्चर आई थी

0: सौदागर, उसमें एक बड़ा इंटेंस डायलॉग था
1: जी।
0: राजकुमार जी का और उनके साथ दिलीप कुमार जी,
1: जी।
0: तो उस डायलॉग को वो ऐसे शुरू करते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा
1: जी।
0: ये वो वक्त आ गया है जिसको मैं कहता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस वक्त के अंदर हम जिस तेजी से इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं उसका आने वाले 10 साल में बहुत फायदा होगा। आपने बताया जो युद्ध में टेक्निक्स चेंजेस आए हैं, सबसे पहला चेंज आया है कि अब जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गए हैं, यानी कि आमने सामने भी फौजें नहीं आती हैं, लेकिन इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि जिससे पूरी इकोनॉमी देश की हिल जाती है। आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने ईरान का देखा, आपने देखा कि पहले तो फाइटर जहाज टैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब ड्रोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ना केवल लंबी दूरी से अटैक लेकिन बहुत सस्ते सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए भी उतनी भारी इकोनॉमिक डैमेज, रिफाइनरीज पे आग, गैस के एरियाज, प्रोडक्शन साइट जैसे रास लाफान था उसके ऊपर हमला कतार के अंदर, तो उसका देखिए 3 से 8 साल लगेंगे उसको वापस 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी में आने के लिए, कितना बड़ा पूरे विश्व के लिए वो नुकसान है। तो ये जो छोटे छोटे सिस्टम भी है ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट कर सकते हैं। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है आज के जमाने के अंदर, हम जब इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है। अब देखिए हम रफाल जहाज लेना चाहते हैं 114, 3.25 लाख करोड़ के हैं ये, 3.25 लाख करोड़ के, कितना हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $40 बिलियन के करीब चला जाएगा दूसरे देश में फ्रांस के अंदर। तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन बढ़ाते हैं, आपको बड़ी अच्छी चीज में जनरल साहब ने जो इनकी आर्मी ने की है, 91% एम्युनिशन जो है आज इंडिजिनाइज हो गया है, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है 175 में से 159 डिफरेंट टाइप की एम्युनिशन वो आज भारत के अंदर ही बनती है। और पिछले अगर हम दशक में देखें उससे पहले, तो उस दशक के अंदर हम देखते थे कि हमारी जो इंपोर्ट थी वो 70% थी बाहर से, आज 62% हम भारत के अंदर ही प्रोक्योरमेंट जो है भारत के अंदर ही बनाते हैं। 1.54 लाख करोड़ पिछले साल का था डिफेंस प्रोडक्शन, इस साल का है 1.78 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़, यानी कि 63% बढ़ गया है और आने वाले समय में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ना केवल फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज बना भी रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट, सोचिए सैकड़ों आज इंडस्ट्रीज बन गई हैं, एमएसएमईज बन गई हैं जो गवर्नमेंट की अदिति पॉलिसीज हैं, आईडेक्स पॉलिसीज हैं या दूसरे जो प्रोत्साहन के मटेरियल हैं या जो हम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपने बताया ना प्रधानमंत्री जी कह रहे थे C295 एयरक्राफ्ट, उससे 15,000 जॉब्स बढ़े हैं, उसी तरीके से ब्रह्मस से 25,000 बढ़े हैं, दूसरे बड़े बड़े LCH प्रोजेक्ट है उससे भी 20,000-25,000 जॉब्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 1,10,000 जॉब्स हमको सिर्फ दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यूपी और तमिलनाडु है 2027 तक वहां पे बढ़ेंगे, तो पूरे देश के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला सकते हैं जब हम इंडिजिनाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को।
1: जी, यानी हम स्वदेशी को बढ़ावा तो दे रहे हैं हर फ्रंट में, लेकिन जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात करते हैं तब भी बहुत सारे फायदे उसके हैं और डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी लाभ मिलता है और पूरा एक इकोसिस्टम है जो मजबूत होता है। जी, अब मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह से जानना चाहूंगी, सर आप नौसेना में स्वदेशीकरण को किस तरह से देखते हैं और क्या इसका महत्व है?
2: पहली बात तो जय हिंद आपके सारे श्रोताओं को। नौसेना, मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, सबको बताना चाहूंगा कि नौसेना वॉज द फर्स्ट मूवर, यानी कि प्राथमिक जो कदम लिए गए वो नौसेना में लिए गए एज फार एज इंडिजनाइजेशन इज कंसर्न। देखिये हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे, जब हमें आजादी मिली थी 47 में, तो हम लोग ऑब्वियसली एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो उनके कुछ एसेट्स हमारे पास 30-35 जहाज उस टाइम भारतीय नौसेना को मिले, मोस्टली वो ब्रिटिश ओरिजिन ही जहाज थे। उधर से जो नेवी शुरू होकर आज अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 150 से ज्यादा जहाज हैं, जिसमें से आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 60-70% से ज्यादा हमारे जहाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड है।
1: जी।
2: तो अगर आप नेवी का रोल देखते हैं, आप हिस्ट्री देखेंगे, तो कैसे हमारे ऐसे

0: इट्स बड़े, मतलब 1960 में हमारे पास विक्रांत आया, पहले वो भी एक इंग्लिश ओरिजिन जहाज था।
1: जी
0: उसके बाद हमें रशियन से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई 60 के दशक में, उन्होंने हमें सबमरीन दिए, उन्होंने हमें कोई और वेसल्स दिए, लेकिन 70 और लेट पार्ट ऑफ 70s में हमने अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया था।
1: जी
0: हमने गिरी क्लास शिप्स बनाए, उदयगिरी क्लास जो थे, नीलगिरी क्लास शिप्स, लियांडर्स थे वो ब्रिटिश डिजाइन के, लेकिन वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने गोदावरी क्लास शिप बनाने शुरू किए, और धीरे धीरे धीरे हमारी जो डिजाइन कैपेबिलिटी है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे धीरे मच्योर होती रही। कि और आज ये हाल है कि आप हर एक 40 दिन में, आप मान के चलिए 6 से 7 हफ्ते में हम एक शिप लॉन्च कर रहे हैं इस स्पीड पे। और अभी आपने रिसेंटली देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 शिप एक दिन पे जो कमीशन किए हैं वो अपने आप में हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि 3 बड़े जहाज, छोटे जहाजों की बात नहीं हो रही है। दूनागिरी जो एक फ्रिगेट है खुद ही 7,000 टन के करीब उसकी डिस्प्लेसमेंट, संशोधक सर्वे वेसल लार्ज वो भी 2,500-3,000 की उसकी डिस्प्लेसमेंट, अग्रे मिसाइल जो हमारा शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। ये मैं आपको कहना चाहूंगा नीलम जी, जब हमने 1990 में जब हमने फौज ज्वाइन की थी तो सारे हमारे एसेट्स मोस्टली तो रशियन ओरिजिन थे या कुछ ब्रिटिश थे जो कि अपने लास्ट लेग ऑफ द सर्विस में थे, क्योंकि ये जो हमारे शिप्स होते हैं इसमें इसकी लाइफ करीब 25 से 30 साल आप मान के चलिए। लेकिन नेवी में एक और बड़ी खास चीज है कि वो सारी सर्विसेज की जो है उसका एक तरह से मिलन है या एक तरह से मिलोंजे है जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखिए लैंड यूनिट्स भी हैं, हमारे पास एयर यूनिट्स भी हैं, हमारे पास सरफेस यूनिट्स हैं
1: जी,
0: और हमारे पास सब सरफेस यूनिट्स हैं, यानी कि हम चारों डायमेंशन में नेवी जो है वो अब देश की सेवा में और देश की हिफाजत में जुट है। तो इसमें मैक्सिमम जो इंडिजनाइजेशन आप देख रहे हैं अभी वो हमारे सरफेस यूनिट्स में बहुत इंडिजनाइजेशन एडवांस हो गई है
1: जी।
0: जबकि यू नो आजकल तो ऐसा है कि आप 60 से 70% के बिना तो आप एक शिप बना ही नहीं सकते, वो आपका मैंडेटरी है, आपको उतना तो इंडिजनाइजेशन कंटेंट रखना ही रखना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा इसी सवाल के उसमें नीलम जी, के एक शिप में बनाने के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक हम कहते हैं फ्लोट, यानी शिप को तैरना होता है जरूरी, जो उसकी बॉडी होती है, हल होता है। दूसरा होता है उसका मूवमेंट, यानी शिप को आपने एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना
1: जी।
0: उसके लिए आपको इंजन चाहिए, प्रोपेलर चाहिए, इत्यादि जो भी इक्विपमेंट चाहिए। और तीसरा होता है लड़ना, कि आपने मिसाइल डालने हैं, गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयर कैपेबिलिटी क्या है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी क्या है। तो वो सबसे मुख्य पार्ट है
1: जी,
0: क्योंकि फाइनली ये सारे वॉरशिप हैं और इनका मेन काम है लड़ना। लेकिन इन सब में आज की डेट में जो हमारा फ्लोट में हमने करीब 90% इंडिजनाइजेशन हो गया है, और फाइट में हमारी थोड़ी कैपेबिलिटी अभी इस पे काम करना अभी बाकी है।
1: चोल साम्राज्य के समय से हम अपनी नौसेना पर गर्व करते आ रहे हैं, हमारे जल सीमाओं के प्रहरी और अलग अलग हिस्से हम उसके बारे में सुनते रहते हैं। INS विक्रांत पर तो पूरे देश को गर्व है ही। आपने बताया कि किस प्रकार से स्वदेशीकरण की शुरुआत हुई और लगातार बेहतर होता जा रहा है। तो संजय मेस्टन सर, एक बार फिर से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने क्योंकि सर्विस में रहते हुए बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं, वहां के कार्य प्रणाली को बहुत नजदीक से आपने देखा है, समझा है, आप ये बताएं कि जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं क्या इसका एक पहलू ये भी है कि जो हमारे ब्लूप्रिंट्स हैं या जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं वो हम ही तक रहे, हमें साझा ना करने पड़े किसी के साथ, और जब वो सिर्फ हम तक रहेंगे तो हम उसमें तेजी से बदलाव कर सकते हैं और हमारी क्या ताकत है उसे हम छिपा कर भी रख सकते हैं, क्या एक पहलू ये भी है इसका?
2: बिल्कुल नीलम, एक पहलू वो भी है। देखिए पहली बात, ये एक जो भी स्वदेशीकरण है ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। देखिए इकोसिस्टम में बहुत कुछ चाहिए होता है, किसी भी, चाहे एक एयरक्राफ्ट को बनाना हो, चाहे जहाज को बनाना पड़े, चाहे मिसाइल को बनाना पड़े, चाहे ड्रोन को बनाना पड़े, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, एक बैटरी चाहिए पावर, फिर चाहिए आपको सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में चाहिए है वो है आपको चाहिए है ये सेमीकंडक्टर्स, वो स्टार्ट पॉइंट हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, जो चिप्स होते हैं। और ये एक खुद बहुत बड़ा, इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक इकोसिस्टम है। आज कोई भी देश विश्व में ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है कि पूरा एक सेमीकंडक्टर चिप वहां पर बन जाए। उदाहरण के तौर पे जो डिजाइनिंग होती है AI, ये जो चिप डिजाइन, ये स्टार्ट कहाँ होते हैं? अमेरिका में। मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? ताइवान में। उसके पास जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं साउथ कोरिया में। जो चिप की काटना पड़ता है, जो लिथोग्राफी मशीन होती है, वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। तो ये आप देखिए कितनी इको डिपेंडेंट सिस्टम है। और आपने हाल ही में सुना होगा कि जो एंथ्रोपिक है, ये जो अभी

0: एआई का सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उसमें फेबल 5 और माइथो 5 वो किसी भी देश को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उनके 5-6 देश हैं। तो कुछ जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो हर कंट्री अपने देश में रखता है और वो हर देश को अधिकार है, और लेकिन कुछ चीजें जो ओपन डोमेन में है
1: जी,
0: वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पहले ही बात होती थी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनको अभी मिक्स करके 7 DPS यूज कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी चीज आई है कि हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी शामिल कर दिया है
1: जी,
0: और इस डिफेंस प्रोडक्शन में ये जो फिगर आई है 1.78 लाख करोड़ की इस साल, उसमें 24% है प्राइवेट इंडस्ट्री का
1: जी। ट्रिपल पी की हम बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
0: तो आप देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री, आप याद करिए अमेरिका जैसे है, वहाँ जी है या जितने भी इनके टॉप कंपनीज हैं सिलिकॉन वाली, वो सब मतलब प्राइवेट प्लेयर्स थे, गवर्नमेंट के तो वहाँ किसी का नाम ही नहीं पता थे। आज इंडिया में भी यही हो रहा है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक हैदराबाद में कंपनी है, उन्होंने नाग शस्त्र 150 ड्रोन बनाया है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, वो उसकी स्पीड मैक्सिमम है 3 to 3 km/h। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाग शस्त्र हमने जो ड्रोन बनाया 150, ये इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। और हाँ, दूसरा जो एक और अच्छा सवाल आपने उठाया था और इन्होंने भी बोला था, देखिए जहां तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सवाल है
1: जी,
0: वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हम उन्हीं चीजों का कर सकते हैं जो हम दे सकते हैं। लेकिन हर चीज को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे
1: जी।
0: और आपको पता होगा कि जो इस साल जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, जो टोटल फिगर्स हैं, वो है मतलब अगर मैं करोड़ में बोलूं तो 38423 करोड़, और ये एक टाइम पे 2000 करोड़ होता था, दैट मीन्स आज से एक डिकेड पहले, तो 19 times गुना बढ़ गया है
1: जी।
0: आपको अभी पता है एआई की अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एआई तो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में आ जाती है, उसमें क्या है कि एक हमारी खुद की ऑटोनोमी होनी चाहिए, मतलब टोटल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें हम सॉवरन एआई होना चाहिए, मतलब जो हमारे सर्वर्स, जो हमारे डाटा सेंटर्स
1: जी,
0: जो क्लाउड कंप्यूटिंग सब कुछ वो सॉवरन होना चाहिए
1: जी।
0: और उस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी अच्छी चीजें की हैं। देखिए मैंने सेमी कंडक्टर से स्टार्ट किया है, आज हमने माइक्रोन जो सिलिकॉन वैली से है $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात में, और ये सारी जो आपके चिप्स वो है उसमें जो उसकी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग यहाँ पर होगी, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैं बोलूंगा क्लीन फैक्ट्री होगी, और सबसे ज्यादा आई थिंक वो 5000 square feet का वो इलाका है, इतना वो बड़ा है।
1: यानी जब हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, MSME भी है, साथ ही FDI भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके थ्रू भी हम कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अश्मिंदर, हमने ये देखा कि बहुत सारी आपदाओं के समय भारत ने अपने पड़ोसी देश जो हैं उन्हें राहत सामग्री भेजी, मदद भेजी, और कोविड के समय भी हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, हमारे नर्सेज थी या और भी इस तरह के हमारे सिटीजन्स थे, उनकी भी मदद की, और हमारे बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके नागरिकों को भी अलग अलग देशों से निकाला। आपसे जानना चाहूंगी जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अगर हम वायुसेना की बात करें, तो एक आत्मनिर्भर देश एक मजबूत देश भी होता है, आप क्या समझते हैं इस नजरिए से, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है नीलम जी आपने, इसमें बड़ी सारी चीजें आती हैं। सब एक बात आपने मेंशन की, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, यानी कि जैसे नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो भारत ने उस समय बहुत जल्दी से उनकी मदद के लिए जहाजों में रिसोर्सेज और रसायन भेजे थे
1: जी।
2: आपको याद होगा तुर्की में हुआ था, तब भी हमने भेजे। आपको याद होगा भी वेनेजुएला में जो हुआ इतना बड़ा, उसमें भी हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जहाज 70 टन का करीब जो है रसायन को लेके गए थे इमीजिएट एड देने के लिए। अभी वहां भूकंप के झटके चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जहाज लैंड कर रहे हैं। हमारी देश के रसायनों को वहां ले जाके उनकी मदद करे दे रहे हैं, जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं देश का अपना स्टेटस जो होता है वो तभी उभरता है अगर आत्मनिर्भरता हो, तभी उभरता है अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी और एयरफोर्स हो, तभी उभरता है जब हमने 74% FDI बना दिया आज डिफेंस के अंदर, जो आप बात मेंशन कर रहे थे, उससे ये हो गया है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी है उसको जैसे अब हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि साफरान के साथ जो इंजन का हम बना रहे हैं 120 से 140 किलोटन न्यूटन। देखिए सबसे मुश्किल चीज जो है दुनिया के अंदर एरो इंजन बनाना है, वो बहुत कम देश है दुनिया के जो बना सकते हैं। हमारा भी कावेरी इंजन अब बना है जिसको हम अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स जैसे घाटक है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एक एरो इंजन फाइटर जहाज में खासकर फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन जहाज में इस्तेमाल होना है, वो जो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में डेवलप हो रही है, जापान में हो रही है और फ्रांस में हो रही है, वो मिलके भारत बनाएंगे तो इसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सोर्स कोड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बना हम मिल करके रहे हैं, को डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जैसे हमने ब्राह्मोस को डेवलप किया, को डेवलप किया। और एक और चीज आ जाती है, जब हम एक साउथ एशिया में या इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन के रीजन की हम जब बात करते हैं तो भारत को एक बहुत बड़ा देश का तरफ देखा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिको इकोनॉमिक वेट जो भारत का है वो सभी को मालूम है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, हम कहते थे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं वो, या फिर जो बलूचिस्तान में है वो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए पेरिस भारत है और कुछ नहीं है, वो फॉरेन नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारा इमेज है एज अ स्टेबलाइजर, वासुदेव कुटुंबकम, वैसे मेरे स्कूल का मोटो था ये, तो कहीं ना कहीं ये जो मोटो है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, भारत ने तो कब से बुद्धिज्म के टाइम से ये फॉलो करता आ रहा है, भारत हिंदुइज्म जब वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर भी ये चीजें की मेंशन होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी एयरफोर्स आर्मी और नेवी मजबूत रहती है और हम सहायता यमन में आपने देखा
1: जी,
0: सबसे पहले भारत पहुंचा था पाकिस्तानी सोल्जर्स को। अरे मेरे को आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गई, एक कहानी रह गई
1: जी।
0: ये है 2005 की, कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग स्टेबलाइजेशन मिशन चल रहा था, वहां पे पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। वैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो इन्हीं तीन देशों से आते हैं इस समय, सबसे ज्यादा 5600 जो है बांग्लादेश से हैं, 5200 से 500 भारत के हैं और 2600 के करीब हैं पाकिस्तान के। उस समय 5 बांग्लादेशी को मार दिया गया, उधर के जो मिलिशिया थी उन्होंने मार दिया था कांगो के अंदर, तो इस इतिहास करके एक जगह थी जहां मारा उनको। उस समय पाकिस्तान के सोल्जर्स को भेजा गया था कॉर्डन एंड सर्च करने के लिए गांव के अंदर, वो बेचारे फंस गए, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी थी और भारत के जो Mi-25/35 अटैक हेलीकॉप्टर है वो गए, उन्होंने सप्रेशन किया, 50 के करीब मिलिशिया के लोगों को मारा, फिर हमारे Mi-17 गए और उन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअल इवैक्यूटीज या जिनको वहां से इवैक्यूएट करना था उनको लेके आए ताकि उनको बचा सके। ये है भारत, हम ये नहीं देखते कि हमारा दुश्मन कौन है, मदद में जब भी कोई पुकार करता है सबसे पहले भारतीय और भारतीय वायुसेना के जहाज वहां लैंड कर रहे होते हैं, भारतीय सेना वहां पे कर रही होती है ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस और भारतीय नेवी के जो जहाज हैं वो लार्ज स्केल इवैक्यूएशन कर रहे होते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात आपने बताई और यही वजह है शायद कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर देशवासी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अपनी भूमिका निभाता रहे, और कहा भी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम जो है देश के लिए मरने का मौका सबको नहीं मिलता लेकिन देश के लिए जीने का जो अवसर मिलता है उसमें हम अपने देश पर गर्व करते हुए जिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमांडर विक्रमजीत सिंह, भारतीय नौसेना को तो बिल्डर्स नेवी कहा जाता है और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम जब इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं या हम बात करते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की, क्या उसमें भी स्वदेशीकरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इसे हम दो बिजनेस से जोड़कर देखते हैं, क्या उसमें भी लाभ होता है स्वदेशीकरण से?
2: बिल्कुल सही नीलम जी, देखिए हम जैसे मैंने आपको पहले हिस्ट्री बताई थी तो 60s, 70s और थोड़ा अर्ली 80s तक हम एक बायर्स नेवी थे, जो मैं अभी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ, और फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ टू बिल्डर्स नेवी जैसे आपने बताया, और इतना पूरा एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ शिप बिल्डिंग को लेके, क्योंकि शिप बिल्डिंग का एक अलग इकोसिस्टम रहता है, एक अलग टाइप के MSME सपोर्ट रहते हैं, एक अलग टाइप का क्लस्टर रहता है। आपने देखा होगा अभी जो हमारे कुछ मैरिटाइम क्लस्टर्स बन रहे हैं, डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, अगर आप वेस्ट में देखें महाराष्ट्र में, गुजरात में, नीचे आइए आप तो फिर ईस्ट में तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, ओडिशा
1: जी,
2: तो इन स्टेट्स में हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं जहाँ पे इंडिजनाइजेशन और शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे जो मेनली अभी हमारी जो वॉरशिप बिल्डिंग हो रही है वो हो रही है हमारे DPSUs में
1: जी,
2: यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड्स में, और एक ऑफकोर्स हमारा PSU शिपयार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है केरला में। तो 4 DPSU है, 1 PSU है, तो ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बना के चल रहे हैं। इस इकोसिस्टम को और इसका महत्व समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने जो एक क्लैरियन कॉल दिया था कि कमर्शियल शिपिंग में भी
1: जी
2: अब हमारा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। आपको डेफिनेटली याद होगा कि उन्होंने दो एक MIV दिया, एक विजन दिया है 2030 के लिए, यानी कि 2030 तक इंडिया को कमर्शियल शिपिंग में कहां पहुंचना है दुनिया में। आज हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हमारी प्रेजेंस है, 2030 तक हम चाह रहे थे कि हम टॉप 10 नेशंस में आ जाएं
1: जी।
2: तो ये उन्होंने एक लक्ष्य दिया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जिसको जो स्टीयर कर रही है, और 2047 जो हमारा अमृतकाल विजन दिया था उन्होंने 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के कि हम टॉप 5 नेशंस में आ जाएं। तो ये कहना बहुत ही सरल है और करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सारी एजेंसीज को इस तरह से मोटिवेट किया और इस तरह से चैनलाइज किया, कोऑर्डिनेट किया कि हम उस तरफ अभी हमें वो होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है
1: जी।
2: तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन भी दिए हैं, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, फाइनेंशियल एड्स दिए हैं जो कि आपको अगर आप शिप बिल्डिंग इंडिया में करवाते हैं तो आपको कुछ डायरेक्ट एड्स मिलती हैं, डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन मिलता है, और जो शिपयार्ड हैं जिनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे वो ब्राउन फील्ड हो, ग्रीन फील्ड हो, उनके लिए भी अलग जिसको मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड है, तो काफी पैसा सरकार ने ईयर मार्क किया और इसके ऊपर भी बहुत सारा थ्रस्ट है
1: जी।
2: किसी भी शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंटरनेट था वो बेसिकली पहले US मिलिट्री के यूज के लिए बनाया गया, और उसके बाद वो इंटरनेट अब देखिए अब किस स्तर पे पहुंच गया जब उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया और कहां वो पहुंच गया। सेम चीज मोबाइल के साथ हुई। तो इसी तरह से जब ये कमर्शियल शिप बिल्डिंग और नेवल शिप बिल्डिंग, वॉरशिप्स बिल्डिंग है, इसमें जब समन्वय होगा, थोड़ी कोऑर्डिनेशन होगी, तो कई इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे क्रॉस यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ शिप बिल्डिंग जो है वो ग्लोबली कम्पेटिटिव हो जाएगी। तो वो एक क्लैरियन कॉल दिया है अभी प्राइम मिनिस्टर ने और भारत सरकार ने, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जो कि हमारे जो मर्चेंट मरीनर्स थे जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे, महीनों महीनों घर से दूर रहते थे, किस कंडीशंस में उन्होंने शिप्स को लेके जाते थे, इतनी हाई सीज, रफ सीज, तो उनको कोई मतलब सब भूल गए थे जब तक कि ये हुआ। ये एक बात है, आज की डेट में करीब इंडिया में करीब 0.1% ग्लोबली शिपिंग हमारी इंडिया की है, इंडियन ओन्ड। तो इसको अब हमने बोला था टॉप 5 और टॉप 10 में लेके जाने के लिए, मतलब बहुत ही ये कठिन कार्य है, लेकिन ये तभी संभव है जबकि हम सारी शिप्स ओन करने लग पड़े
1: जी।
2: और सारी ये जो पॉलिसीज हैं, ये इंसेंटिव्स हैं, ये इसी की तरफ हैं कि इंडियन बिल्ट, इंडियन फ्लैग्ड एंड इंडियन ओन्ड वेसल्स को बढ़ाने के लिए इसका भी एक टारगेट दिया हुआ है कि इतने मिलियन टन्स जो है वो हमारी मतलब शिपिंग हमारी हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 2030 तक और 2047 तक। एंड जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं, नीलम जी मैं ये लास्ट चीज कहना चाहूंगा, जैसे इंजन, तो इंजन जो हवाई जहाज के भी बहुत ही स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, सिमिलरली जो इंजन जहाज के होते हैं वो भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों को इंडिजनाइज कर पाए क्योंकि उसका आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके उतने नंबर्स नहीं है। तो दुनिया में कई लोग ही हैं जो बनाते हैं, किंतु अगर हम ये चीजें कमर्शियल शिप में भी लगती हैं और कई ऐसी चीजें वॉरशिप्स में भी लगती हैं, तो ऐसे इक्विपमेंट हमें लेके मान के चलना पड़ेगा कि ये तो कई चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ेंगी। इसमें एक ही एडवांटेज है, जब आप बाहर के जो OEMs हैं आप इंडिया में उनको ला सकें, जो कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप यहां आके बनाइए, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उससे जो हम बोलते हैं स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स इकोनॉमी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका फायदा हमें हो सकता है
1: जी। बहुत अच्छा आपने बताया, और जैसा कि आपने कहा कि मरीनर्स आराम से काम करते रहते थे शांति से, ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां भी कितने कितने महीने पानी के अंदर ही काम कर रही हैं लगातार, लेकिन इन्हीं प्रयासों से हम सुरक्षित भी हैं। और हिंद महासागर में भारत की जो बढ़ती उपस्थिति है और दमदार होती उपस्थिति जो है वो भी हमारी नौसेना के बलबूते ही है। सर मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, संजय मेस्टन जी, जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कि हम अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले दिए और मोमबत्ती से लेकर अब हम अपने फाइटर जेट्स तक की बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कहीं हमारे शिक्षा जो है उसे भी प्रभावित करेगा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा विस्तार होगा इस बहाने?
3: बिल्कुल, शिक्षा में तो बहुत विस्तार होगा। देखिए, पहली बात, ये जो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है हर चीज में, ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में,
1: जी
3: हर भारतीय को फख्र होगा कि मैं भारत देश को बिलोंग करता हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चार लोग यहाँ बैठे हैं और हम चारों बाहर जा रहे हैं, कई देशों में जाते हैं, हमें बहुत फख्र होता है कि सब बोलते हैं आप इंडिया के हैं। तो इंडिया का जो आज एक ग्लोबल रीच बढ़ गई है,
1: जी,
3: जो उसके भी कई कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है, तीन फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीडरशिप, इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री ताकत। ये तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, ये देश की एक नेशनल पावर को डिफाइन करता है।
1: जी,
3: जब ये सब पावर मिलती है एक देश को, अपने आप दिखती है। और आपने देखा है G20 समिट में जिस प्रकार भारत ने लीडरशिप लेके अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसी G20 समिट में IMEC कॉरिडोर जो हमने अनाउंस करवाया, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन थे, और जिसमें आप देखिए मल्टीलेटरल कंट्रीज हैं, यूरोप, इसराइल, पूरा गल्फ कंट्रीज और भारत। तो आप ये देखिए कि ये मास्टर स्ट्रोक से, अब जब ये सब होता है तो भारत का जब एक आइडेंटिटी पूरे विश्व में बढ़ती है और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, एक राइजिंग पावर है। मैं तो बोलूंगा जो ग्लोबल साउथ के हम कैपिटल हैं इंडिया, अगर ये हो रहा है तो जाहिर है कि एडुकेशन का विस्तार बहुत होगा, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यू नो, एक कर्तव्य, एक प्राइड कि मैं भारतीय हूँ। कुछ साल पहले हमारे कई बच्चे बाहर जाना चाहते थे, अब वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया है, आज हमारी रोड्स देखिए फर्क पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, और आज की तारीख में टेक्नोक्रेट्स को ज्यादा वजूद दिया जा रहा है हमारे सिस्टम में। अगर वो दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया हमने, तो यंगस्टर्स आज उनको समझ में आ रहा है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ये प्रोग्राम में कि लोगों को पता होना चाहिए भारतीय सेना क्या है, और अब कैसे पता चल रहा है, भारतीय सेना जब ये सारी प्राइवेटाइज हो गई है ये आत्मनिर्भर भारत में, तो कितनी सारी MSMEs आ चुकी है, उसमें काम करने वाले कौन है, यूथ, हाईली टैलेंटेड यूथ, AI एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो वो जब देखेंगे तो फिर वे बाहर क्यों जाएंगे, और जब इंडिया में हम इतना प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे AI हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे सब कुछ हो, चाहे एयरक्राफ्ट इंजिन्स हो, सब कुछ अगर हम जब इंडिया में कर रहे हैं, तो जहाँ पर जॉब्स हैं और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जहाँ सैलरीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली लोग को फिर और बढ़ावा मिलेगा एडुकेशन की तरफ ध्यान देने को, जो हमारा पहले ब्रेन ड्रेन होता था ना, बाहर जाते थे। अब मेरे को लग रहा है अगले 10 साल के अंदर या 2047 तक मैं बोलूंगा, इंडियंस विल रिमेन इन इंडिया, और आप देखिएगा हमारा विस्तार बहुत होगा, तो एडुकेशन से इस पे प्रभाव पड़ेगा।
1: यानी जब हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इससे अपने आप रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, और शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हमें बताया डॉक्टर अश्विंदर ने कि जब सुरक्षित देश है तो मजबूत देश भी है, जरूरत पड़ने पर हम अपने जो पड़ोसी देश है उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, आप अपने अनुभव से बताएं, आपने इतने सारे देशों में देखा है, उनको काम करते हुए देखा है, कई यात्राएं आपने इस दौरान की हैं, जो भारतीय सेना है बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है भारतीय सेना को, और हमारे बहुत सारे इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें अन्य देशों की सेनाएं सब मिलकर काम करते हैं, वो एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। ऐसे में भारतीय सेना जो है उसकी स्थिति दुनिया में क्या मानी जाती है, और जो अगर मजबूती है तो क्यों मानी जाती है वो?
3: मैं बहुत घमंड के साथ बोल सकता हूँ नीलम, भारतीय सेना की जो छवि है वो विश्व में नंबर 1 है।
1: जी,
3: मैं कई कंट्रीज में गया हूँ, 23 कंट्रीज ऑफिशियली गया था ऑन ड्यूटी।
1: जी,
3: टॉप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, टर्की है, जापान है, फ्रांस है, मलेशिया है, मतलब चाइना है। चाइना में मैं खुद एज अ इंडियन डेलीगेशन लीडर गया था, जो चाइना में फर्स्ट SCO पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई थी 2005 में, मैं उसको विटनेस करने गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा तजुर्बा देखते हुए और हर कंट्रीज में, आज विश्व की सारी सेनाएं चाहती हैं कि भारत के साथ बाइलेटरल, मल्टीलेटरल ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस करना चाहती हैं, क्योंकि जो हमारी एक एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी में डील करने की, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन में डील करने के लिए, टेररिज्म को डील करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देने में, रिस्पांस सिस्टम में, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जो एक एक्सपर्टीज है। और भारतीय सेना एक वो सेना है जो ऐसी जगह डिप्लॉयड है सियाचिन ग्लेशियर से लेके नागालैंड तक, से लेके डेजर्ट तक, और नेवी के साथ भी हमने इतनी फंक्शनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ भी। तो कहने का मतलब है जो हमारी काबिलियत है, हमारी कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को देख के पूरा विश्व, मैं बोल सकता हूँ वी आर नंबर वन, पूरा विश्व आज चाहता है कि भारत सेना के साथ ट्रेनिंग करें।

0: और मैं क्योंकि अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल, वहाँ 53 कंट्रीज मैंने देखी थी अमेरिका द्वारा लेड किए हुए। मेरे को वो हर मीटिंग में बुलाते थे, चाहे वो नेटो सेक्रेटरी जनरल आता था, चाहे इनके आर्मी चीफ्स आते थे हर कंट्री के साथ। तो मेरे को तब इतना फख्र होता था कि इंडियन व्यू पॉइंट वो सुनना चाहते हैं, और इंडिया की जो छवि है इंडियन आर्म फोर्सेस की
1: जी।
0: बहुत ही सॉलिड है। और एक और चीज मैं इसमें बोल रहा हूँ, रेजिमेंटेशन, जितने फॉरेन चीफ्स आते थे इंडिया में वो बताऊं क्या बोलते थे, आपकी जो एक रेजिमेंटेशन स्पिरिट है
1: जी।
0: आज अगर मैं जाट रेजिमेंट का हूँ तो मेरे जो जाट रेजिमेंट वाले वो जवान है वो बिल्कुल मतलब अपनी रेजिमेंट के नाम पे मर जाएंगे। मैं वैसे महार रेजिमेंट का हूँ, तो महार रेजिमेंट वाले जो मेरे जवान है उनका एक अलग जज्बा होगा, डोगरा का अलग होगा, मराठा का अलग होगा
1: जी।
0: तो ये रेजिमेंटेशन है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में है, ये यूनिकनेस है। मैंने अमेरिकन फॉरेन चीफ जो यहाँ पर आए थे आर्मी चीफ, उनसे खुद सुना था कि दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट द इंडियन आर्मी। तो ये हमारी जो कामरेडरी है, भाईचारा है, आपसी संबंध है, जवान और ऑफिसर के जो रिश्ते हैं
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें ये विश्व वाले देखते हैं, इंक्लूडिंग चीनी, ये भी चाहते हैं हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और हमने किए हैं चीन के साथ भी, एससीओ के साथ एक्सरसाइज। तो मैं घमन के साथ बोल सकता हूँ, मेरे को इस पे कोई वो नहीं है, एज अ फौजी वी आर नंबर वन एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस, नॉट आर्मी, आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग नेवी, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। नेवी के साथ जो वाइजैक में शायद आपने भी कवरेज किया था उस एक्सरसाइज को,
1: इंटरनेशनल
0: उसमें ईरानियन शिप भी थी और यूनाइटेड स्टेट्स की शिप भी थी।
1: ऐसे में बताएं, बहुत रोचक बात आप बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नो फर्स्ट यूज हमारी पॉलिसी रही है, तो जब हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो थोड़े नाराज भी हो जाते हैं और बार बार ये बात लेकर आते हैं कि डिफेंस बजट क्यों बढ़ाया जा रहा है, और अब तो हम स्वदेशीकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मेरे ख्याल डिफेंस बजट तो और बढ़ना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक्स है, और देखिए अगर डिफेंस सॉलिड है तो इकोनॉमिक आपकी सॉलिड बढ़ेगी
1: जी।
0: ये बहुत कोरिलेटेड है, और चीन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। 2050 का उसका विजन था कि हम कोई लड़ाई वड़ाई में के पंगे नहीं फंसेंगे, हम मिलिट्री कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन। आज भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि मेरा तो इसमें विचार है डिफेंस बजट और बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट दे रही है, और कैपिटल एक्विजिशन पे भी हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि खासकर एयरफोर्स और नेवी के लिए ये जरूरी है। कैपिटल एक्विजिशन मतलब ये नहीं कि हमने बाहर से खरीदना है, उसको हम इंडिजिनाइज भी कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर अश्विंदर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे दूसरे देशों से सीखने की बात करें तो जापान में तो SDF अभी तक रहे, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रही, सिर्फ आत्मरक्षक बल थे, कहते हैं कि हमें कहीं आक्रमण नहीं करना, तो सेनाओं की हम क्या जरूरत है उतना बजट देने की। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये जो पॉलिसी होती है कि हमें क्योंकि लड़ाई नहीं लड़नी है इसलिए हम सेनाओं को मजबूत नहीं रखेंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए डिटरेंस का मतलब ही ये होता है कि आपकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश विश्व का सोच नहीं सकता आपके ऊपर हमला करना। अगर हम एक ऐसी सिक्योरिटी एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरी इकोनॉमी फ्लावर करती है हमारे देश की, तो वो सिक्योरिटी एनवायरमेंट देती है हमारी आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हम कह रहे थे ना कि हम दूसरों से क्या सीखते हैं। अभी आपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की बात करी, आपको पता है कि उनका डिफेंस बजट मल्टीफोल्ड हो गया जापान का। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनको अमेरिका की अम्ब्रेला नहीं मिलने वाली, और वो अपनी जो उनकी इंजिन्स की कैपेबिलिटी है, जो उनके जहाजों को बनाने की कैपेबिलिटी है, आपको ये भी मालूम होगा कि 6th जनरेशन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इटली और यूके के साथ मिलकर अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर शिप्स में देखें, वो कमांडर साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उसमें भी और जो इंजन्स है उसके अंदर तो उन्होंने बहुत अच्छी माहिरता प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज आ जाती है, अगर हम अपना एनवायरमेंट देखें आसपास का, हम लोग प्रेडेटरी नहीं है, हमें दूसरों की टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें दूसरों की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को और आसपास के एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो। अभी भी हमारी आर्मी 50,000 से ऊपर 3,488 किलोमीटर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, लद्दाख में है, दूसरी जगहों पे है, अरुणाचल प्रदेश, कितनी मुश्किल कंडीशंस में वो पूरे पूरे साल रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर -20-30 तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब गर्मी आती है तो फिर कहां, आपको पता है रेत में कहां पे इनके टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर। तो उसी तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो डिप्लॉयड है हर जगह, ये इसलिए डिप्लॉयड है ताकि दूसरा आंख उठाकर भी हमारी धरती पे ना देख सके। और अब आप देखिए यूक्रेन का हाल, उनकी सेनाएं

0: इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी इतनी बर्बादी हो चुकी है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होगी तब आप हर लड़ाई जीत लोगे
1: जी।
0: ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ देखा, उन्होंने उसके भी तोड़ देख लिए, वो सरवाइव कर रहे हैं अटैक्स के अंदर उन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए जिससे कॉस्ट इफेक्टिव रहे, चाहे वो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, या उनका ज्योग्राफिकल जो उनका पूरा का पूरा टेरिटरी है डिफेंस की ओरिएंटेड की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी होता है कि हमें तो नहीं किसी की टेरिटरी चाहिए, हमने कई बार बहुत क्लियरली किया, हाँ हमें सिर्फ अपना जो जेन्युइन लीगल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस चाहिए, आज नहीं तो वो खुद अपने आप, हमने तो कोई लड़ाई नहीं की अभी, हम तो अपने भेज नहीं रहे लोगों को, इसका मतलब है हमारी ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंसिव होने के लिए भी आपकी क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरा देश 10 बार सोचे कि वो आप पे हमला करे कि नहीं करे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें, एक चीज कहते हैं हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन, हम जो सीख सकते हैं दूसरों से, तो हम चीन से ये चीज सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, आप बात कर रहे थे ना एजुकेशन की, तो उनका एक है 7 Sons of National Defense, जैसे बीजिंग की यूनिवर्सिटी या बीजिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, या दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं जो बीजिंग के अंदर, कुछ ऐसी हैं जिनको वो फंड भी करते हैं ताकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो फोकस कर सकें। तो ये चीज हमने शुरू कर दी है। अब ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है जो आर्मी यूज करती है हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उसमें कहीं ना कहीं रोल रिसर्च का यूनिवर्सिटीज का भी रहा है, और ये इनोवेशन सेल्स जो बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन जिस संख्या में अगर हम इसको थोड़ा और तेज गति लेके आए, एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन हो, तो हमारा देश और भी स्ट्रांग बनेगा
1: जी। यही कामना सभी की। और मैं कमांडर विक्रमजीत सिंह, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका मैं जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल सही, अगर आप एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका अस्तित्व हमेशा खतरे में है। ये अभी बहुत क्लियरली विश्व में वापस लोगों को समझ में आने लगा है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद और कोल्ड वॉर के बाद बिल्कुल जिन्होंने बोला था नहीं हमें नहीं लड़ाई लड़नी, हमें नहीं करना, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए
1: जी।
2: अब आपने देखा सब लोग धीरे धीरे यू टर्न मार रहे हैं। जापान सबसे पहले उन्होंने अपनी एक नई फ्रिगेट लॉन्च कर दी है कि भाई ये प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं
1: जी।
2: फ्रांस बोल रहा है मैं न्यूक्लियर वेपन अपना फिर से प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होता जा रहा है, लोगों ने अपने अपने जो उनके डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सोवरेनिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन, तो वो उन्होंने बदले हैं बिल्कुल इसमें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि जब तक आपका स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा नीलम जी, आप एक स्ट्रांग मिलिट्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब है आपका खुद का स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होना
1: जी।
2: आज तक इंडिया ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा था सॉफ्ट सर्विसेज में, यानी कि सर्विसेज में, सॉफ्टवेयर में हम नंबर वन है, चिप डिजाइन में आप देखें अमेरिका में तो इंडियंस हैं उसमें
1: जी,
2: और एआई में भी ऑब्वियसली फिर इंडियंस हैं, बहुत आगे आगे हैं और बहुत वेल पेड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं जो हम थोड़ा पिछड़ गए थे, जिसकी इम्पोर्टेंस देश ने समझी है, और इसके ऊपर भी एक प्रधानमंत्री जी ने अलग से क्लैरियन कॉल दिया है कि हम अपने ब्लू कॉलर वर्कफोर्स को कैसे और स्ट्रेंथन करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्ट्रेंथन हो, ये सारे कॉरिडोर्स वगैरह उसी की ओर एक कदम थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी हो जाता है तो हम वाकई कह पाएंगे जी हाँ हम सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि पीछे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं कि पहले बात हो रही थी कोविड के बाद ये बात शुरू हो गई थी कि चाइना को आप सप्लाई चेन से हटा दीजिए, फिर आपने देखा होगा कि वो चाइना प्लस वन पॉलिसी आ गई वर्ल्ड में, चाइना को हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हर एक के मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में है। तो प्लस वन, तो प्लस वन में आज की डेट में अगर आप विश्व में देखें स्टेबिलिटी वाइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज, इंडिया इज द लीडिंग कंटेंडर, तो उससे क्या फायदा होगा, विश्व का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड।
1: बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हम ट्रेड बास्केट की बात जो कर रहे थे कि हमारे आत्मनिर्भर होने से उसमें भी संतुलन बना रहेगा, तो ये है भारत समुद्र से आकाश तक, सुरक्षित भी, आत्मनिर्भर भी। और जिनकी वजह से सुरक्षित है उनके लिए ये दो पंक्तियां, देश की मिट्टी माथे से लगा लेता हूँ मैं हर त्योहार कुछ इस तरह मना लेता हूँ। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने बात की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की, स्वदेशीकरण की, और हमारे विशेषज्ञ इसके लिए थे कार्यक्रम में मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारतीय थल सेना से आप हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ रहे एयर कमोडोर डॉक्टर

0: अश्मिंदर सिंह बहल वायुसेना से आप, आपने बहुत रोचक बातें हमें बताई। कमांडर विक्रमजीत सिंह नौसेना से आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों विशेषज्ञों का। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि INS विक्रांत हो, तेजस हो, प्रचंड हो, अर्जुन टैंक हो, पिनाका रॉकेट या ब्रह्मोस, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का गर्व है। और इस गर्व को और बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करके। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और तुषार पराशर के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: राइफल्स की सहायता से अभियान चलाकर 55,000 से अधिक शीशियों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य अभियान में अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी स्थित एक गोदाम की तलाशी में कोडीन आधारित कफ सीरप की 56,000 से अधिक शीशियां बरामद की। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अमरीका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह पोत यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हडसन नदी पर आयोजित परेड ऑफ सेल के दौरान 3 मस्तूलों वाले इस प्रतिष्ठित पोत ने गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। INS सुदर्शनी की यह यात्रा 10 महीने के ट्रांसोनिक अभियान लोकायन 2026 का हिस्सा है। यह समुद्री सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण करने और सहयोगी नौसेनाओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia.
1: Mr. Scindia said the project will connect the district to industrial development, defense production and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने प्रोग्राम यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं सदाबहार आवाज़ के साथ, यानी लता जी की आवाज़ के साथ।

अभी आप सुन रहे थे साल 1954 की सुपरहिट फिल्म नागिन से ये सदाबहार गीत, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, और इस खूबसूरत गाने को बेहतरीन संगीत से सजाया था हेमंत कुमार ने, और लाजवाब बोल लिखे थे गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने, और मुख्य भूमिका इस फिल्म में निभाई थी वैजयंती माला और प्रदीप कुमार ने। ये फिल्म अपने दौर की बेहद सफल फिल्म रही थी, और इस फिल्म के लिए हेमंत कुमार साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम पेइंग गेस्ट, और संगीत था एस जी बर्मन साहब का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1957 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था सुबोध मुखर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद नूतन और शुभा खोटे ने। एस डी बर्मन द्वारा तैयार संगीत को दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इस फिल्म के गाने लोगों द्वारा काफ़ी सराहे गए। और अब अगला गीत अब तक पहुंच रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में।

अगर दिलरुबा इतनी खूबसूरत है तो बार बार देखना तो बनता है। अब रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम था चाइना टाउन और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब और संगीत था रवि का। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म आई थी 1962 में और ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण किया था शक्ति सामंता ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी रंजन बोस ने। और ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर साहब ने दोहरी भूमिका निभाई थी। मुख्य भूमिका में अभिनेत्री थी शकीला और हेलेन सहायक भूमिका में थी। और अब अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म तुमसा नहीं देखा। संगीत है उपेन अय्यर साहब का।

101 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:41 और 12 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, एक ऐसा प्रोग्राम जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है। और अब जब आवाज़ देता है तो जाना तो पड़ेगा ही। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

आशा जी की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, और फिल्म का नाम था मेरा साया। गीतकार थे राजा मेहदी अली खान और संगीत था मदन मोहन साहब का। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1966 में, और इस फिल्म का निर्देशन किया था राज खोसला ने। फिल्म का संगीत मदन मोहन साहब का था और सभी गीत राजा मेहदी अली खान ने लिखे थे। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त और साधना। अगला गीत सुनते हैं रफी साहब और आशा जी की आवाज में, फिल्म मदर इंडिया से, मदर इंडिया नहीं, नया दौर से।

रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम नया दौर। गीतकार थे साहिर साहब और संगीत था ओपी नैयर का। ये फिल्म आई थी 1957 में और इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था बी आर चोपड़ा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था और ये फिल्म 1957 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। अगला गीत फिर से रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

रंगून जितना दूर तो नहीं, बस 10 मिनट की इजाज़त चाहिए। गीत सुहाने में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में कल डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। फोयबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सच कहूं, सच कहूं तो इतना सफर करते हुए थकने के बाद यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुंचना है तो केवल तुम तक।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 101.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी कि दर्द की कहानी को, पीड़ा की कहानी को हम गीतों से, बातों से समझने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

आपकी छोटी सी तो फिलॉसफी है इश्क, बस वही हमें समझ नहीं आती। जब ये समझ आती है तो इश्क करना, इश्क निभाना बहुत आसान हो जाता है। वाकई मैं तो इस गाने को बहुत इंजॉय कर रही थी और डांस भी कर रही थी, और उम्मीद है कि आप भी कर रहे होंगे। जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, उसके लिए जान भी हाजिर कर देते हैं। इससे खूबसूरत फीलिंग दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकती कि हम इश्क में किसी को अपनी जान से ज़्यादा कीमती नहीं समझते। अगला गीत फिर पहुंच जाए आपसे रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में।

अगर प्यार का इजहार इतना सुंदर हो सकता है तो फिर इकरार करने से मना कैसे हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ में ये सदाबहार गीत। प्यार में जो मीठी वाली जिद होती है ना, वो अपने आप तभी उसका कोई मायने रखती है जब उसको मानने वाला उसको दिल से निभाता है। उसका मजा कुछ और नहीं बल्कि उस गाने में तब आता है जब कही हुई बात, प्रियतम की कही हुई बात को दिल से निभाया जाए। अभी वक्त है आपकी जिद मानने का और सुनवाने का एक खूबसूरत गीत। अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में। इससे पहले जो आप गीत सुन रहे थे वो था रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, और अभी जो आप गीत सुन रहे हैं वो भी रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में।

इतनी शिद्दत के साथ हमें आप हमें याद करें और आप हम आए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। इस गाने को सुनते हुए ऐसा लगता है ना कि दुनिया चाहे कितनी भी रंग बिरंगी क्यों ना हो जाए, कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, लेकिन वो ख़ास इंसान अगर साथ ना हो, वो ख़ास इंसान जो हमें पसंद है, जो हमारा प्रिय है, वो हमारे साथ ना हो तो इस दुनिया के सारे रंग फीके लगते हैं, सारी सुंदरता बेमानी सी लगती है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

कितने गलत हैं वो लोग जिन्हें लगता है प्रेम जीवन में हासिल की जाने वाली कोई चीज है। कितने गलत हैं वो लोग जिन्हें लगता है प्रेम जीवन में हासिल की जाने वाली कोई चीज है, जबकि सत्य ये है कि प्रेम ही जीवन है। वक्त हुआ है 2:41 और 36 सेकंड। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

वाकई हमारी ज़िंदगी भी इस गाने की तरह होती है, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी में हरियाली होगी कि रास्ता होगा। लेकिन इस गाने की जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि हम सफ़र पर अटूट विश्वास जो होता है वो सफ़र को और ज़्यादा

यादगार बना देता है, भरोसेमंद बना देता है। जब जिंदगी के सफर में हाथ थामने वाला कोई ऐसा इंसान हमें मिल जाता है जिस पर हम भरोसा कर सके, तो यकीन मानिए जिंदगी आसान हो जाती है। अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल। मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोग

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, जहां बातें होती हैं दिल की, एहसासों की और उन रिश्तों की जो दूर रहकर भी कभी दूर नहीं होते। कभी कभी जिंदगी हमें अपनों से मीलों दूर कर देती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना दूरी कम कर पाती है और ना समय। आज का हमारा सफर उन सभी लोगों के नाम है जो किसी अपने को याद करते हैं, जो दूर रहकर भी हर पल उनके साथ होने का एहसास करते हैं। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी रात की हमसफर अर्चना गोयल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। तो आइए अगले 50 मिनट तक दिल से दिल की बातें करें।

उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत था फिल्म चित्रलेखा से। कहते हैं कि सच्चा रिश्ता आवाज़ का मोहताज नहीं होता, वो खामोशियों में भी धड़कता रहता है। कभी माँ की याद अचानक खाना खाने खाते वक्त आ जाती है, तो कभी पिता की सीख किसी मुश्किल मोड़ पर याद आती है, कभी दोस्त की हंसी बिना वजह मुस्कुराहट दे जाती है, और कभी कभी किसी खास इंसान की यादें रात को नींद नहीं आने देती। यही तो वो रिश्ता है जो दूरी से नहीं दिल से चलता है।

दूर हो तुम फिर भी हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है, हर शाम तुम्हारी याद की रोशनी में ढलती है। ना तुम्हारी आवाज़ हर दिन सुनाई देती है, ना तुम्हारा चेहरा हर पल दिखाई देता है, लेकिन दिल की दुनिया में तुम आज भी सबसे करीब हो, क्योंकि कुछ लोग साथ नहीं होते फिर भी हमेशा साथ रहते हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हर रिश्ता रोज़ मिलकर नहीं निभाया जा सकता। कुछ रिश्ते बातें विश्वास से चलते हैं। अगर आपका कोई अपना दूर है तो आज उसे सिर्फ इतना लिख दीजिए, अपना ख्याल रखना, तुम्हारी कमी महसूस होती है। यकीन मानिए, ये छोटे से शब्द किसी के पूरे दिन को खूबसूरत बना सकते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और हमराही में आप हैं आज अर्चना गोयल के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:32 और ठीक 35 सेकेंड। रात की इस खामोश महफिल में आपका फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि दिल लोगों से हमें मिलवाता है, लेकिन रात हमें खुद से मिलवाती है। दिल की हलचल थम जाती है, मगर दिल की आवाज़ें और सुनाई देने लगती हैं। यादें भी अजीब होती हैं, कभी मुस्कुराने की वजह बन जाती है तो कभी आँखों को नम कर देती हैं। और जब कोई अपना दूर हो तो हर रात थोड़ी लंबी, थोड़ी खामोश और थोड़ी अधूरी लगने लगती है।

कभी आपने महसूस किया है कि रात जितनी गहरी होती जाती है, यादें भी उतनी ही करीब आने लगती हैं। दिन में हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन रात दिल की डायरी के सारे पन्ने खोल देती है। फासले चाहे कितने भी हों दरमियान, यादों का सफर कभी रुकता नहीं। जो दिल में बस जाते हैं एक बार, वो रातों में कभी बिछड़ते नहीं।

दोस्तों, रात की खामोशी बहुत कुछ कहती है। अगर ध्यान से सुने तो हवा में भी किसी का नाम सुनाई देता है। चांद भी शायद इसी वजह से हर रात निकलता है कि ताकि दूर बैठे लोग एक ही आसमान देखकर एक दूसरे को महसूस कर सकें। कितना सुंदर है ना एक आसमान, एक चांद और अनगिनत यादें।

इंतज़ार आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे इंतज़ार को भी मोहब्बत का हिस्सा मान लेते हैं। कभी फ़ोन की घंटी का इंतज़ार, कभी एक संदेश का, और कभी सिर्फ इस उम्मीद का कि सामने वाला भी इसी वक्त हमें याद कर रहा होगा। कहते भी हैं कि दूर रहकर भी जो सबसे करीब हो वही रिश्ता सबसे खास होता है।

दोस्तों, आज की रात की महफिल यहीं तक। अगर आपका कोई अपना आपसे दूर है तो आज उसे दिल से एक दुआ ज़रूर दीजिए। हो सकता है आपकी दुआ उसकी रात को रोशन कर दे। याद रखिए, दूरियां रास्तों में होती हैं, रिश्तों में नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हेमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में ट्रस्ट को प्राप्त दान की गिनती की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहले यह बैठक आज दोपहर करीब 3 बजे मडराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह बैठक राम मंदिर परिसर में होगी। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम के साथ मैं आपकी होस्ट अर्चना गोयल। सुबह की इस पावन वेला में आपका हार्दिक स्वागत और नमस्कार। अरुणिमा एक ऐसा सफर जहां हर सुबह अपने साथ नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आती है। ऐसे ही सकारात्मक विचारों के साथ आइए इस नई सुबह की शुरुआत हम ईश्वर को याद करके करें।

आज का ये नया दिन आपकी अमूल्य दिन है। हमारे मन में अच्छे विचारों का प्रकाश है, हमारी वाणी में मधुरता, कर्मों में ईमानदारी और हृदय में प्रेम का संचार हो, ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सकें। जहां निराशा हो वहां आशा बने, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बने, और जहां दुख हो वहां मुस्कान बांटने का माध्यम बने।

कहते हैं कि हर सुबह ईश्वर हमें एक कोरा पन्ना सौंपते हैं। उस पन्ने पर क्या लिखना है ये हमारे हाथ पे होता है। अगर हम दिन की शुरुआत शिकायतों से करेंगे तो पूरा दिन बोझिल लगेगा, लेकिन यदि शुरुआत कृतज्ञता से होगी तो साधारण दिन भी सुंदर बन जाएगा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं कार्यक्रम अरुणिमा। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल। दोस्तों, आज उठते ही एक बार मन ही मन कहिए, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए आपका धन्यवाद। जो नहीं है उसे पाने का धैर्य भी मुझे दीजिए। बस यही भावना जीवन को हल्का और खुशहाल बना देती है।

सूरज हर सुबह बिना किसी उपेक्षा के उगता है, नदी बिना रुके बहती रहती है, वृक्ष बिना किसी भेदभाव के छाया देते हैं, और प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि देते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन का सबसे सुंदर नियम है।

एक बार एक संत से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो संत मुस्कुराए और बोले, संतोष। जिस दिन मन संतुष्ट होगा, सीख लेता है, उसी दिन से जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आज तुलना नहीं, आभार कीजिए, प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रगति कीजिए, और सबसे पहले स्वयं से प्यार करना सीखिए।

याद रखिए, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना आए, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो, और कोई भी इंसान इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो फिर से शुरुआत ना कर सके। आज का दिन आपको एक और अवसर दे रहा है, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई मुस्कान के साथ आगे बढ़िए।

स्वागत है एक बार फिर से अरुणिमा में। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने विचारों को सुंदर बनाइए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। हर सुबह अपने आप से केवल 3 बातें कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। इन 3 वाक्यों में पूरे दिन को बदल देने की शक्ति होती है।

चलते चलते आज का सुविचार। हर सुबह यहाँ एक संदेश लेकर आती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन फिर से मुस्कुराने का अवसर है। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी गीत की तरफ।

फिलहाल अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे आज 3 दिन की यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 4थी यात्रा होगी। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के अंतर्गत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टीसू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के 3रे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को मिले धन की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। असम मंत्रिमंडल ने आज राज्य विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। संस्कृति मंत्रालय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मंत्रालय ने पिछले वर्ष की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में देर रात भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज मुंबई समेत कई राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम भोर सुहानी। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम को लेकर मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर सुबह अपने साथ उम्मीदों की नई किरण लेकर आती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए अगले कुछ पलों तक हम सब साथ मिलकर इस खूबसूरत सुबह का स्वागत करें।

दोस्तों, सुबह की पहली किरण जब बादलों की ओर से झांकती है और बारिश की हल्की हल्की बूंदें धरती को प्यार से छूती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें ये संदेश दे रही है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर है।

बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, ये जीवन का एक खूबसूरत एहसास भी है। जैसे सूखी धरती पहली फुहार पाकर महक उठती है, वैसे ही हमारा मन भी अच्छे विचारों की बारिश में खिल उठता है। इसलिए आज का पहला विचार, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि सोच सकारात्मक है तो हर मुश्किल रास्ता भी मंजिल तक पहुंच जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। कभी कभी दोस्तों जीवन में परेशानी रूपी बादल घिरते हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन याद रखिए हर घने बादल के पीछे सूरज मुस्कुरा रहा होता है। बस थोड़ा धैर्य और थोड़ा विश्वास बनाए रखना होता है। आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने मन में एक छोटा सा संकल्प जरूर लें, मैं हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करूंगी, मुस्कुराऊंगी और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करूंगी।